0: मानो सारिया अपना थिया अपना आप ही कासवारी है
1: औड़ी आपे करना के उकला पे तारी है देखी किताब अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चालीसी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है साहेब मनम सारी है।

چودی حسوبه مبتیا و بیج بیخ منگای امرت بیخو ایو

ਪਾਰ ਖਸਮ ਲਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਏ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ।

0: आप साजे करें आप जाई तरखे आप इस विजन तू पाए कह देख था प्यू था किस नो कहिए लाल का सब कुछ आपे आप बोड़ी बटे क्या बढ़िया ही किस कहना कहने न जाए सुकता का दक्री देखिया रिजक समाए सायता कमावे छोटी इल्ले पाए नानके की बाहरी और तुझी ना ही जाए सोपरे दे वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: पौड़ी बड़े क्या बड़े यहाँ किस कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जी अर्जिक संभाहे साई कार कमावनी तुर छोटी इतने पाए नानके की बारी होर दूजी ना।

0: 남의 사랑아.
1: हम तो सही शीर्षक बार से हम सर तो शब्द कीर्तन दास सिद्ध प्रसारण सर्वन करें सी सुबह छह बज रहे आओ हम समाध फरमाने आ सुफियाना कलाम बस कुछ ही पल दे इंतजार तो बाद
2: पेशी खिदमत सुफियाना कलाम सुन दिया सईदा बेगम ने

500 स्मार्ट फरमारे से सुफियाना कलाम 103.6 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी दा अमृतसर केंद्र है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस टीम दी पंजाबी सेवा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहा 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु न तरह आहिनि। तव्हां हमेशह भगत कराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो, पोइ प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी, ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहो असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील, तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कराम साहब खे ॿुधूं।

खुदकाराम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम दिया या आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हिंसर पेश है तबसरो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 खां 29 जून 2026 दरमियान सेचल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिन के निंड ते सेचल्स की रस्म यात्रा कई सेचल्स के 50 आजादी के जश्न के मौके ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 जून 2026 ते उते मुख्य मेहमान तौर पर हिस्सो वरतो प्रधानमंत्री जी हा बो भेरों सेचल्स की यात्रा इन खाक में उन साल 2015 में सेचल्स की यात्रा कई हुई विक्टोरिया हवाई अड्डे ते माहे हवाई अड्डे पहुंचने शर्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुरजोश से सदर हर्मिन आजा कई घणा सेचल्स जा डिग्नेटरीज ए भारतीय कौम जा मेंबर पण संदस आजा लाइ उते आया जिते सकाफती रंग बिरंगी सकाफती प्रोग्राम कया हुआ तंहिंमां बिन मुल्कन मंझ मजबूत माण्हुनि जे माण्हुनि जे गांडापे जो पतो पवे थो प्रधानमंत्री जी रस्मी मुश्किलनि में सभ खां अवलो उते हिकु वण खे पोखण सेशन जे नेशनल बॉटनिकल गार्डन में जिते हुन हिकु अलादा ऐं आइकोनिक कोको दे मेर खजी जे वण खे पोखियो संदसि गॾु सदर हर्मिन पिण शुमार हो वण खे पोखण जी कार्यवाही भारत जे एक पेड़ माउ के नाम तहत कई वई सेचल्स के आजादी डी उत सावक के वधाने लाइ पई कई वई मुल्क की वचनबद्धता है कि बरकरार रहंदड़ तरक्की के हासिल किया वेंदो बाग में बिन्ही अगवान उते एल्डबरा कछु के टॉर्टस के पिण डिठो जो उते लंबे अरसे खां रही रहियो जंहिंजी चंगी लंबी उमिरि आहे हिन बाग में सेचल्स भारत खे पिण एल्डबरा कछुओ सौगात तौर बिन्ही मुल्कन मंझि दोस्ती जी सौगात तौर पिण पेश कयो आहे हिक खास प्रोग्राम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फास्ट पेट्रोल वेसल लेस्पेवार जंहिंजी माना आहे उमीद सां सदर हर्मिन खे भारतीय सरकार पारां सौगात तौर सौंपी इन खां अलावा 10 यूटिलिटी वाहन 5 लेज़र रेडिकल ॿेड़ियूं ऐं 6 एम्बुलेंस पिण सौंपियूं जंहिं सां सेचल्स जी सामूंडी सुरक्षा वधंदी बचाव कुवत पिण पुख़्ती थींदी प्रधानमंत्री जी आजा में सदर हर्मिन एक शाही दावत जो इंतजाम कर जै में बिन्ही अगवान इनके भारत ए सेचल्स मंझ भाईवारी के वधिक पुख्तो करण लाइ पंहिंजे वचनबद्धता के दोहरायो एक खास कार्यवाही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेचल्स जो खास सदर इनाम गार्डन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सां पिण नवाज़ियो वियो प्रधानमंत्री के पंहिंजे ग्रीन लीडरशिप लाइ खेसि इहो इनाम सां नवाज़ियो वियो आहे प्रधानमंत्री इन इनाम के जेके सावक लाइ माहौल लाइ मुल्क कम कर तिन के डेडिकेट कयो आहे सेचल्स जे आज़ादी जे 50 जश्न ते प्रधानमंत्री हिस्सो वरितो मुख्य मेहमान तौर हू पहिरियों भारतीय प्रधानमंत्री आहे जंहिं सेचल्स में आज़ादी जश्न में हिस्सो वरितो आहे इतफ़ाक़ जी ॻाल्हि आहे जो सेचल्स जो आज़ादी ॾींहुं तॾहिं थी रहियो आहे जॾहिं ॿिन्ही मुल्कनि मंझि भारत ऐं सेचल्स मंझि मदबर इलाइक़ा 50 साल पिण पूरा थी रहिया आहिनि इन मौके ते भारतीय हथियारबंद फौजन नेशनल परेड में हिस्सो वरितो भारतीय टीम में शुमार हुआ आसाम रेजिमेंट भारतीय नेवी ऐं इंडियन नेवी मार्चिंग बैंड जा अमलदार तंहिंमां ॿिन्ही मुल्कनि मंझि मज़बूत भाईवारी जो पतो पवे थो रवायत तौर इन जलसे में भारतीय बहरी बेड़ा INS तरकाश ऐं INS इशाक पिण विक्टोरिया बंदरगाह ते अची बीठा प्रोग्राम जे साइडलाइन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम सेम तोखे खबर कहिड़ी।

तोखे खबर कड़ी सामी प्रोग्राम खड़ी करे अवाजी के संबंध में एक दफो बीहर का हाजिर थे सिंध में पाड़ी से वाबस्ता जी हालतूं बदतर हैं ताई से लागापल एडिटोरियल सिंध एक्सप्रेस में शायद हुए जिनो टाइटल है सिंध में पानी चोरी जरई मईशत लाए संगीन खतरो। एडिटोरियल में लिखल है कि सिंध में पानी चोरी जो शिकायतों वडे वक्त का बुधण में भी अचन पर इन खिलाफ का कार्रवाई को थी रही है। पोछड़ जहा आबादगार हमेशा शिकायत कन तो मुंड जहा आबादगार पानी खड़ी था वन जैं कर खेन पानी को मिले पानी न मिलन सबब वक्त सिर पैंजा फसल को पोखे सकन जैं कर खेन माली नुकसान माशी नुकसान तो थे वहां बे तरफ सिंध की जरई मईशत के पण कापारी धक तो लगे। सिंध में पंजा पान जो नाले मात्र पानी छड़े तो वे सो तमाम घट है छोजो पंजाब तय करो है सिंध के संदस हिस्से जो पानी को डी। एडिटोरियल में अगत लिखल है कि सिंध में पानी की खोट बदण सबब आबादगार प्रोटेस्ट कर रहे हैं शाखन में वारी उडामी रही है पर आबादगार की कोई शिकायत बुधन लाय कोने। टंडो आदम ए गाजी खावर में आबादगार पानी की खोट खिलाफ प्रोटेस्ट कर छोजो पानी किथे विच में तो गायब थे बासर आबादगार लिफ्ट मशीन वसीले पानी खड़ी था वन एठ आबादगार से फकत प्रोटेस्ट कदा रही वन डो वे इखलाकी तौर पोछर से पानी से पैर पोछर के आबादगार टंडो आदम ए गाजी खावर समेत घणन इलाक में आबादगार रसन दे हक आवाज उथार है सदन फसल सुकी रहा जै सबब सदन मवेशी हालत तमाम खराब थी रही है खुराक खुराक की पैदावार नाकारी असर पे रो है घणन इलाक में जी पोहतल पी रहा आबादगार से लिफ्ट मशीन ए गैर कानूनी तौर पानी था खड़न इन सब कारण के होंदे भी जो कानूनी इदारा से कार्रवाई पैं पूरी ना कन। सिंध एक्सप्रेस में शायद एडिटोरियल बुधी रहा टाइटल हो सिंध में पानी चोरी जरई मईशत लाए संगीन खतरो।

सर मैं 12वीं सुरक्षा सा वाबस्ता है एडिटोरियल शायद ऐसा एक्सप्रेस में जो टाइटल है प्रिया कुमार जी बाद से अभी नाम आपके छो आए लेकिन कुछ दिन खा संग में प्रिया कुमार जी अगवा जो मामलों वरी बहस सेठ है अज का लगभग 5 साल अग में लाड़काने माह मुहर्रम के महीने में अगवा थे नंढड़ी प्रिया कुमार जी आजादी लाय प्रोटेस्ट ही रहा संदस माँ पी पैं बार के आजादी लाय घो दाईन्दा रहा पर बार के आजाद कराने लाय का भी संजीदा कोशिश को थी जै सबब हेल तार का खबरचार को पई है किथे आए इत जो पुलिस ए बया कानून लागू कद इदारा पिण हर बेहतरीन नेटवर्क होंदे भी पतो को लगे सकें त प्रिया कुमारी किथे है संदस केस एक पहली गुजारत बणजी वो है जितने घणा ही अगवान खेस अगवा रिहा करण की गाल्ह कर रहा है ताजा एक सियासी अगवान यो पिण कि जै धाड़ेल प्रिया कुमारी के अगवा कर सो मरी चुको है जैसे इन गाल के मंजे तो प्रिया कुमारी के अगवा कदर मरी वो है धाड़ेल खत्म थी वो है तो इो छो तो पतो लगी सकजे तो प्रिया कुमारी जेरी है ना जैसे जेरी है तो किथे आए वक्त प्रिया कुमारी के अगवा बाबत सिंधी मानन में वधिक बेचैनी नजर अची रही है आवाम खेस रिहा करण की जिम्मेवारी सिंध हुकूमत ते दे रहा है जैसे यह गाल सही पण है छोजो यो जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है पर जै रीत केस के खराब किया है तैमें लगे तो प्रिया कुमारी के माइट में पहुंचाने जो को बंदोबस्त को जैसे सिंध के कानूनी घर वजरात के खबर है तो संदस धाड़ेल जै अगवा कर सो मरी वो है तो इन जहा धाड़ेल जहा पेरा खड़ी बारड़ी जो पत्तो छो न तो लगे सकजे इन खबर थी पे तो जो कानून साज इदारा से कार्रवाई ना कन ए जो माइट हैं से पैं बार खी कर तमाम ही गैर महफूज आन जैसे कें मू जो बार अगवा थी वे किडनैप थी वे खेस यहां उम्मीद न कर खेस बार मिल न मिलो तो वो फायदो कड़ो है तिंद एक्सप्रेस में शायद एडिटोर बुध रहा जो टाइटल हो प्रिया कुमारी के बाज़ियाबी नामुमकिन छो है।

दर्शन खास खास कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहे तो सचिल जी संदस यात्रा बेहतरीन नतीजा आना है जो बिन्हीं मुल्क मंझ दोस्ती अना वधिक पुख्ती थी रही है। अमेरिका ए ईरान एक बे मथा हमला बंद करण सबब यूएई सा सीधी मुसाफिर की उड़ान हवाई जहाज रानी शुरू थी वही है। अफगानिस्तान इलाके मथा पाकिस्तान पारा हवाई हमलन की भारत सख्त लफ्जन में निंदा कई है जैमे घणाई शहरी मासूम शहरी मारजी तैमें औरतू ए बार पण शुमार हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ए एनएसजी खास ऑपरेशन ग्रुप दहशत खिलाफ एक मॉक ड्रिल कई है जम्मू में जो जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू थे वाली है। भारतीय औरतों की क्रिकेट टीम लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स लाइ पहली टीम है जो क्वालिफाई थी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपये खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की

0: ahead of the 57-day-long annual Amarnath Yatra beginning on Friday. Security agencies have intensified preparations across the pilgrimage route from Punjab to Jammu and Kashmir, conducting mock drills, activating surveillance systems, and strengthening inter-agency coordination to ensure the safe movement of thousands of pilgrims. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, U.S. last night. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बलजीत सिंह के गाए कुछ शब्द। आइए सबसे पहले सुनते हैं गुरु अर्जन देव जी की रचना बोल है हरजन राम राम।

Mama,

संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बलजीत सिंह के गाए शपथ। आइए अब सुनते हैं गुरु गोविंद सिंह की रचना।

पहले आप सुन रहे थे गुरु गोबिंद सिंह की रचना। गायक कलाकार थे बलजीत सिंह। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। और तो चल रहे कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग का। आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूं मैं नवीन सक्सेना। तमाम गीतों का गुलदस्ता लेकर जो आज दिन भर आपका मूड बना देंगे, आपको खुश रखेंगे और सामने वाला जब आपको देखेगा ना तो कहेगा कि ये मुस्कुराहट क्यों है।

0: मैं गीतों भरे गुड मॉर्निंग नवीन के साथ और खूबसूरत गीतों के गुलदस्ते के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आ रहे होंगे। तो और भी बहुत से गीत हैं मेरे आज के इस गुलदस्ते में, कामचोर फिल्म का गीत सुनते हैं आइए।
1: तुमसे बढ़कर दुनिया में

आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और तमाम गीतों का गुलदस्ता लेकर मैं इस समय आपके साथ हूँ। खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता है और उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद भी आ रहे होंगे। बात कितनी जल्दी हाथों से निकल जाता है पता भी नहीं चलता और अभी ऐसा लग रहा था कि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। फिलहाल एक और शानदार गीत हम आपकी नजर करने जा रहे हैं और ये भी आपका दिन बनाएगा और इस गीत में खास बात क्या है ये भी आप जानेंगे समझेंगे। तो अब हम आपको यह भी बता सकते हैं कि आज 10:10 पर एक और बेहद कार्यक्रम होगा आपकी पसंद जिसमें आपके फरमाइशी फिल्में कितनी हम आपको सुनवाएंगे ईमेल पर आधारित ये प्रोग्राम होगा तो आप उसमें भी हमारे को अपने पसंद के गीत भेज सकते हैं और आपके नाम के साथ हम उस गीत को आपके लिए लेकर आएंगे।

मॉर्निंग आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर

0: बजने को है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपये खर्च करेगी।
5: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमरीका और ईरान के बीच होरमूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 10 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और

0: बोलो जानों के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांग भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रूपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान हुरमुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश

0: news. In football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीरे आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तला'आत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रूपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। और फुटबाल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राजील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आरजी जाबता जाती पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्पीड और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, तहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा। इसके नतीजे में खुर्दा कीमतों और बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने वाले सार्फीन के लिए मुकर्र कीमतों में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वजारत ने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए 12 जून को आरजी जाबता जाती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनके तहत और पंपों पर हर सारिफ या हर गाड़ी को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदाराजाती और कमर्शियल सार्फीन के लिए भी खसूसी जाब्ते नाफिज किए गए थे। इन इकदामात का मकसद डीजल की कालाबाजारी जखीरांदोजी और गैर कानूनी तौर पर ले जाने को रोकना और आम सार्फीन के लिए पेट्रोल और डीजल की बिला रूकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मा।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने असेंबली में ऐलान किया कि 2 जुलाई को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में इस कानून का इब्तदाई मुसवदा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात उत्तराखंड और आसाम के मॉडल को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीरे आला के मुताबिक ये कमेटी शादी तलाक बच्चों को गोद लेने समेत मजमूई तौर पर 9 मौजूआत का जायजा लेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड का हतमी मसौदा तैयार करेगी। अलबत्ता वज़ीरे आला ने वाजे किया कि दर्ज फहरिस्त कबाइल आदिवासी कुर्मी बिरादरी और कदीम मकामी कबाइल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मरकजी इत्तला'आत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनअत को फरोग देने के मकसद से 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तला'आत और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने, भारतीय सिनेमा के माहौलियाती निजाम में उभरती टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। वजारत ने कहा कि इन इकदाम का मकसद भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबकती बनाना, बिलखसूस छोटे शहरों और देही इलाकों में सिनेमा के बुनियादी ढांचे में सरमाकारी की हौसला अफजाई करना है। प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी के सरबराही में एक आला सतह स्टडी कमल ग्रुप तश्कील दिया गया है जो भारतीय सिनेमा को दरपेश चैलेंज और मौके का मुताला करेगा। ये शोबे को मजबूत बनाने के तरीके तजवीज करेगा और भारतीय फिल्मों को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबकती बनाने के लिए इकदाम की सिफारिश करेगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: कौमी राजधानी खत्ता दिल्ली में वोटरों के जाती मालूम से मुतक फार्म घर घर जाकर तकसीम करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक कुमार ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बूथ सतह के ऑफिसर्स बीएलओ आज से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और जाती तफसीलात से मुतालिक फार्म तकसीम करेंगे और अहल राय दहिंदगान से पुर किए हुए फार्म वसूल करेंगे। दिल्ली काबीना ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस दूरंदेशी पर मबनी स्कीम के तहत कौमी राजधानी दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक पूरी तरह से कार्बन के सिफर अखराज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों खासतौर पर कार्बन के सिफर अखराज वाली गाड़ियों पर मरकूज है। इसका मकसद दिल्ली को बतदरीज आलूदगी से पाक शहर में तब्दील करना है ताकि इससे लोगों को फायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले 4 वर्षों में मरहलावार इस पर अमल दरामद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मुहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साल बसाल रोड टैक्स माफ करने में 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर दिल्ली के लोगों को इस पॉलिसी से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल होंगे।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की खुली जारहियत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। यह इकदाम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वह अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। तमाम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी आजादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों और इदारों को आवारा कुत्तों के हमलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर आज से अमल करने की हिदायत की है। यह हिदायत उस वक्त सामने आई है जब हुक्काम आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने आवाम की हिफाजत और अदालती हिदायत की तामील के मकसद से इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों से कहा गया है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर मुकर्रा मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाए। यह हुक्म गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसका मकसद अवामी मकामात को खासतौर पर बच्चों और मरीजों के लिए महफूज बनाना है जहां उनका रोज आना जाना होता है। हर साल 30 जून को संथाल इनकलाब की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धू और कान्हू ने भोगनाडी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादारान निजाम के खिलाफ संथाल हुल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं स्मित तिवारी का सरोद पर बजाया राग अहिल भैरव।

0: वहीं आप सुन रहे थे स्मृति पर बजाया राग अहिर भैरव। कलाकार थे स्मित तिवारी। आपके साथ तबले पर संगत की थी ईशान शर्मा ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, उसके जुड़ी समस्याओं के बारे में, और उसमें जो वर्तमान अनुसंधान है वो किस तरह से उपयोगी हो रहे हैं, हो सकते हैं, उनके बारे में। हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित वर्मा। आप भारत के प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर जेनेटिसिस्ट हैं, और पिछले करीब 20 वर्षों से अधिक का अनुभव इनका है इस क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार करने का। डॉक्टर वर्मा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एक नई पद्धति है कैंसर के ट्रीटमेंट की। ये बहुत पुरानी नहीं, लगभग 10 से 15 साल पुरानी एक डेवलपमेंट है। और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं एम्स के टाइम से, जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स के अंदर कैंसर मेडिसिन में करी। और उसके बाद उसके अंदर हमने काफी कुछ रिसर्च करी कैंसर के ऊपर, जहां पे हम लोगों ने समझा कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है जीनोमिक लेवल पे। उसके बाद स्टडीज करने के लिए मैं एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास, जो वर्ल्ड का नंबर वन कैंसर सेंटर माना जाता है, वहाँ पे हम लोग और फर्दर रिसर्च करने के लिए गए। और हमने देखा कि कुछ ट्रीटमेंट संभव है अगर हम कैंसर को बहुत डीप में समझ पाए तो।
2: बहुत अच्छा। जब हम कैंसर की बात करते हैं, प्रायः हम सब लोगों ने अपने अध्ययन के दौरान सेल के बारे में सुना कि यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे शरीर की रचना करता है, कोशिका बोलते हैं। तो आखिर ये कोशिका किस तरह से कैंसर की कोशिका में बदल जाती है, इसका विज्ञान क्या है, और अर्ली स्टेज में इसकी पहचान कैसे की जा सकती है?
3: कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में मेजर फर्क है वो जीन्स लेवल पे होता है। हर सेल के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल को कैंसर करने में मदद करता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर को रोकता है। अगर ये बैलेंस किसी कारण से नॉर्मल सेल में खराब हो जाए, या ऑन्कोजीन ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, या ट्यूमर सप्रेसर जीन वीक पड़ जाए, तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाता है। ये सिचुएशन जब चलती रहती है, और जब कैंसर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, एक समय आता है कि वो कैंसर दिखना शुरू हो जाता है और उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत समय लगता है कि एक सेल को मल्टीपल सेल्स बनने में और कैंसर पूरा होने में। जहां तक की बात है सिम्टम्स की, सिम्टम्स कैंसर के आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वजन कम होना, जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है कि हमने खाना पीना कम नहीं किया फिर भी वजन कम हो रहा है। किसी को कोई कॉफ चले जा रहा है, खांसी चले जा रही है, उसमें खांसी के अंदर ब्लड आ रहा है, बगल में या जांघों में गांठें हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं कि शायद कैंसर ना हो। किसी को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रिपीटेडली हो रहा है, या बॉडी में कोई ऐसा दर्द है जिस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मस्कुलर पेन नहीं है, तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो आदमी को तंग करते हैं, फीवर इज ऑल्सो सिम्टम फॉर कैंसर। सो अगर ये सब चीजें किसी को कई हफ्तों से चल रही है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके पता करवाएं कि भाई ये चीज कैंसर तो नहीं है। और स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद ये कैंसर की संभावना जब बढ़ती है, तो आदमी को ज्यादा जागरूक होना जरूरी है।
2: तो हम अपने सुनने वाले के लिए चाहेंगे कि अब बारी बारी से विभिन्न तरह के जो थेरेपीज हैं उनके बारे में बताएं कि आपके अनुभव से जो हाल के वर्षों में इम्यूनोथेरेपी, इसमें कैंसर उपचार को किस तरह से बदला है या एक नई दिशा दी है।
3: मैं शुरू करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से। अगर कैंसर एक लोकल जगह पे, इसको बोलते हैं लोकलाइज डिजीज, जो हमारे पास क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारे पास क्योर करने का तरीका सिंपल सर्जरी होता है। सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं तो क्योर हो जाता है। तो जो कैंसर दिखता है उसको सर्जरी से निकाला जाता है। और कुछ सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डिजीज, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग लोकल रेडिएशन देके, या कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो बॉडी में जा चुके हैं ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू, उसको हम लोग कीमोथेरेपी देके कंट्रोल करते हैं। ये तो था लोकलाइज डिजीज का सिलसिला। अब आता है कि बीमारी ऑलरेडी अपनी जगह छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जा चुकी है, इसको बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर या मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कैंसर। ऐसे सिचुएशन पे हम लोग सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम हर जगह से ट्यूमर को नहीं निकाल सकते। नहीं लोकल रेडिएशन देना पॉसिबल है क्योंकि बीमारी बहुत जगह फैल जाती है। ऐसे केस में हमारे पास जो बचता है वो होता है सिस्टमिक थेरेपी, जिसके अंदर कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल आता है। कीमोथेरेपी सारे मल्टीप्लाइंग सेल्स को मारती है, टारगेट थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती है, और इम्यूनोथेरेपी क्या करती है जो आपका सवाल है कि वो हमारे इम्यून सेल्स को कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट कर देती है, तो कैंसर बॉडी में कहीं पर भी होगा तो वो मर जाता है। बहुत अच्छी थेरेपी है एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। इसके जो रिस्पॉन्सेज है वो 80% से ऊपर होते हैं अगर कुछ पेशेंट को फेवरेबल क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। और देखा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी देने से पेशेंट की लाइफ बढ़ती है, कैंसर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल रहता है, साइड इफेक्ट कम आते हैं, और ये आज के जमाने के हिसाब से लेटेस्ट पद्धति है कैंसर ट्रीटमेंट की।
2: इसके अलावा एक होता है व्यक्तिगत उपचार, जो पर्सनलाइज्ड थेरेपी या जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात आप लोग करते हैं, ये किस तरह की है जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है पर्सनलाइज्ड?

0: जीडीपी में, और कुछ देशों ने इसमें कुछ सफलताएं हासिल की है, तो उनकी सत्यता क्या है?
1: पर्सनलाइज्ड थेरेपी का मतलब है कि हम पेशेंट के ट्यूमर को डीप स्टडी करते हैं, जीन्स लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे। पेशेंट को भी स्टडी करते हैं कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जैसे वो पैदा हुआ है, इस दो इन्फॉर्मेशन के साथ मिलकर हम एक डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट के ट्यूमर के अंदर कोई म्यूटेशन पॉजिटिव है, जैसे लंग कैंसर पेशेंट के अंदर EGFR म्यूटेशन के होने से उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जिसके पास EGFR म्यूटेशन नहीं होगी उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हम पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं कि ये दवा इसको काम करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो देने के हम ना तो टाइम वेस्ट करते हैं ना पैसे वेस्ट करते हैं। सही तरीके से इलाज होना, इसको पर्सनलाइज थेरेपी बोली जाती है।
0: आपने पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की बात की, तो एक जो ट्यूमर की आपने चर्चा की थी कि ट्यूमर के रूप में बढ़ने लगता है, तो जो एक ट्यूमर हेट्रोजेनेटी की बात करते हैं, ये क्या एक उपचारक को, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को, आपके जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट को, किसी तरह के निर्णय लेने में, खास करके क्लिनिकल या अन्य, आप लोग कैसे उसका निर्णय लेते हैं?
1: कैंसर जब अपनी जगह से मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल वो अलग अलग होते हैं, अब जो डॉटर की भी डॉटर होंगे और अलग होंगे, तो एक समय आता है कि सारे के सारे सेल्स में डिफरेंट क्लोन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो एक से दूसरे से मैच नहीं करता, और ये सारा का सारा जीनोमिक लेवल पे होता है। देखने में वो सेम कैंसर होता है माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन जेनेटिक लेवल पे उसके पास डिफरेंट जेनेटिक ऑल्टरेशन होती है। इसको बोलते हैं ट्यूमर हेट्रोजेनिटी। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा ट्यूमर हेट्रोजेनिटी, एक ट्यूमर के अंदर मल्टीपल कैंसर सेल्स का होना, और एक होता है इंटर ट्यूमर हेट्रोजेनिटी, अगर वही कैंसर लंग में पहुंचा है, लीवर में पहुंचा है, ब्रेन में पहुंचा है, स्टमक में पहुंचा है, तो अलग अलग कैंसर की जेनेटिक पॉसिबिलिटीज, तो इसे बोलते हैं इंटर ट्यूमर हेट्रोजेनिटी। ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी, जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट करके पेशेंट के बॉडी में जहाँ पे भी ट्यूमर ग्रो हो रहा है और जो भी जेनेटिक ऑल्टरेशन उसके होंगे वो एक बारी में पिकअप हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंसर को एक ही तरह से देखें और ऐसा इलाज निकले कि जो मैक्सिमम क्लोन्स को, मैक्सिमम ऑल्टरेशन को, मैक्सिमम ट्यूमर सेल्स को मार सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के लिए, लेकिन कुछ तरीके से हम इसको ओवरकम कर पाते हैं।
0: तो क्या कुछ और तरह के ऐसे इनोवेटिव ट्रीटमेंट हैं जिन पर काम चल रहा है या और आगे किए जाने की जरूरत है जो आशाजनक हो?
1: टेक्नोलॉजी हर साल नई नई आती है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टारगेट थेरेपीज पैदा हो रही हैं हमारे वर्ल्ड ओवर में, और हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनो थेरेपी डेवलप हो रही है, जहाँ पे हम इम्यूनो थेरेपी के साथ इम्यूनो थेरेपी का कॉम्बिनेशन देते हैं और रिस्पॉन्स को एनहेंस करते हैं। और अब आके नया टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक वैक्सीन, जहाँ पे हम कैंसर के सेल को जेनेटिक लेवल पे समझ के उसके लिए स्पेशल एक mRNA वैक्सीन बनाते हैं जो पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होता है और वो पेशेंट को हेल्प करता है। और एक और टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं कार टी सेल थेरेपी। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत डीप रिसर्च चल रही है, और आने वाले समय पे आप देखेंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से छोड़कर इन सब चीजों में चल रहा होगा, और ये बहुत अच्छी होप है, लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत रिसर्च वर्ल्ड ओवर चल रही है इस समय।
0: आपको क्या लगता है कि कैंसर निदान और रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी हो सकता है या हो रहा है, खास करके वैक्सीन निर्माण के लिए? कैंसर के अगेंस्ट में कुछ वैक्सीन आ सकते हैं क्या, या कुछ आए हैं या उन पर कार्य चल रहा है?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी रिसर्च के अंदर और आने वाले समय में ट्रीटमेंट के अंदर भी। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर बहुत मेहनत करके एक आंसर निकाल पाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को उसको स्पीडअप कर सकता है। हमारी जो मेहनत है रिसर्च करने की, पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च चल रही है उसमें से काम की चीज निकालने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वो काम कर सकता है, तो हम एक समय के अंदर ज्यादा पेशेंट को अच्छा इलाज पहुंचा सकते हैं। पहली बात। सेकंड बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकता है, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर ड्रग्स, जैसे आपने वैक्सीन का नाम लिया, जहाँ पे हमारे को ट्यूमर के जीन्स को समझना है, तो उस चीजों पे वो हमको हेल्प कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्रग डेवलपमेंट। ये दो मेजर कैटेगरीज है। थर्ड कैटेगरीज ये है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा दी जाए, कौन सी डोज पे दी जाए और कब दी जाए, ये सारे फैक्टर्स बहुत नुआंस्ड है, मतलब कि बहुत ही बारीक है। ऐसे केस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को एक फास्ट स्पीड देता है, जिससे कि हर आदमी को बराबर इलाज मिले, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो किसी कोने में हो इंडिया के, उसको इक्वल इलाज मिल सके। वो इस चीज के लिए भी मोहताज ना हो कि बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास इसको अच्छा इलाज मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए हेल्थ केयर बराबर पैदा कर पाएगा।
0: आपने एक ड्रग डेवलपमेंट की बात की, तो आजकल कई जगह ड्रग रेजिस्टेंस के भी खतरे देखे जा रहे हैं, तो यह एक बड़ा चैलेंज है, खास करके स्वास्थ्य अनुसंधान और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए। तो इस क्षेत्र में कैंसर

0: कैंसर के उपचार में क्या ड्रग रेजिस्टेंस देखा गया है? अगर इस तरह की कोई चुनौती है तो क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाते हैं?
1: कैंसर बहुत स्मार्ट सेल होता है, जैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो उसको इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है और फिर धीरे धीरे दवाई का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल में एक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं PGP। ये एक पंप की तरह काम करता है, दवाई को जैसे ही हम कैंसर सेल के अंदर पहुंचाते हैं ये पंप दवाई को कैंसर सेल से बाहर निकाल देता है, तो दवाई पहुंच के भी पेशेंट को मिलने के बाद भी कैंसर सेल के तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे बहुत तरह के मैकेनिज्म होते हैं कि जो कैंसर ट्रीटमेंट को नलीफाई कर देते हैं, उसको इनइफेक्टिव बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी चीजें कैंसर के मैकेनिज्म का पार्ट बनती है कि जहां पे दवाइयां शुरुआत में काम करती हैं बंद हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दवाइयां बिल्कुल भी काम नहीं करती, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड रेजिस्टेंस, शुरुआत से ही रेजिस्टेंट है, अभी देखा गया है। तो जो ऑन द वे रेजिस्टेंस डेवलप करती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, और जो शुरुआत से रेजिस्टेंट है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड रेजिस्टेंट। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास या तो हम दवाइयां चेंज करते हैं या दवाइयों के साथ दवाइयों को कंबाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाए, लेकिन हर समय जितना संभव नहीं हो पाता, ये हमारा रियल लाइफ का चैलेंज है, इसलिए कैंसर को हम 100% जीत नहीं पाए हैं।
0: एक आपने बात की अब चर्चा के दौरान mRNA, जो आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग जानते हैं, ये क्या है इसके बारे में जरा बताइए।
1: बहुत अच्छा आप बारीकी पे आना चाहते हैं, और मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में जो डिफरेंस होता है, नॉर्मली जीन्स लेवल पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है और कुछ जेनेटिक ऑल्टरेशन होते हैं। ये जेनेटिक ऑल्टरेशन क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ mRNA, इसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर RNA, डेवलप करता है। उस डिफरेंट लेवल ऑफ मैसेंजर RNA से डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन पैदा होते हैं, जो हम कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो हम लोग ये जो वैक्सीन डेवलप करते हैं, जो चल रही है, रिसर्च चल रही है, उसमें उस यूनिक mRNA सीक्वेंस को जो कैंसर सेल्स में पाई जाती है, जो नॉर्मल सेल्स में नहीं पाई जाती, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आर्टिफिशियली बनाते हैं, और बनाने के बाद पेशेंट को वैक्सीन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में लगा दिया जाता है। फिर जब बॉडी में mRNA पहुंचता है तो mRNA एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है, जिसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये वैक्सीन के रूप में काम करता है। बस हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्यूमर कहीं पे भी बॉडी में होगा उसके पास जाके इसको मारने की कोशिश करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नॉर्मल सेल नहीं है और ये एबनॉर्मल सेल है, मीन्स कैंसर सेल है, उसको मारते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी mRNA टेक्नोलॉजी है। ये हमने देखी थी टेक्नोलॉजी जब हम कोविड टाइम पे, तो उस समय इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, सक्सेस बहुत अच्छे मिले। अब उसी चीज टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है कैंसर के लिए, लेकिन हर आदमी की, हर पेशेंट की वैक्सीन अलग होगी। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन जो बनाई है वो हर आदमी को लग जाए, तो हर आदमी के लिए अलग बनानी पड़ती है, एक चैलेंज है इस समय।
0: तो आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को बताइए कुछ आशाजनक बातें कि जिनका ट्रीटमेंट सही हुआ, सफल हुए, उनकी आयु बढ़ी, गुणवत्ता भी मेंटेन किया जाए, तो उस सबके लिए भी किस किस तरह के कदम आप लोग उठाते हैं या सुझाव देते हैं ऐसे लोगों के लिए?
1: हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को देखा है और समझा है, और हमने पाया है कि स्टेज 4 कैंसर क्योर तो नहीं हो पाता, लेकिन इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज या हाइपरटेंशन होती है उसको हम क्योर नहीं कर पाते, लेकिन पेशेंट बीमारी के साथ चलता रहता है, ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो ये अचीवमेंट हम लोगों ने देखी है, काफी हमारे कैंसर पेशेंट इस समय ट्रीटमेंट के बाद हमारी कंट्रोल में है, ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू है और कई साल हो जाते हैं। ये सारा जो कुछ हमने समझा है जेनेटिक लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे, जब हम ट्यूमर को हिट करते हैं उसके रूट्स पर, क्योंकि जो कैंसर की रूट्स हैं वो जेनेटिक ऑल्टरेशंस होती हैं, उसको हिट करने के बाद हम देखते हैं कि कैंसर वाकई ही खत्म हो जाता है।
0: डॉक्टर अमित वर्मा जी, आपने कैंसर के कारण, उसके निदान के लिए जो विशेष उपचार है, टारगेटेड थेरेपी की बात की, पर्सनलाइज्ड थेरेपी की बात की, किस तरह से आप उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ड्रग रेजिस्टेंस के स्टेज में किस तरह की बातें की जाती है, और किस तरह से AI इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है, निभा सकता है, इन सब बातियों पर विस्तृत जानकारियां दी, का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्राचीन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

डालें इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबगाही प्रोग्राम में आज आप भजन सुन सकेंगे। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें 9:50 पर नशर की जाएंगी और 10 बजे सुनिएगा अकबाल जर्री का प्रोग्राम शम्मी फरोजा। 10:05 पर उसके गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर होंगी। 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर गीतों भरी कहानी नशर की जाएगी प्रीत की रात। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरों का वक्त होगा दिन में 1 बजे और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुबगाही। आज सुनिए सुरेश वाडकर के गाए हुए भजन।

0: अभी आप सुबुगाही प्रोग्राम के तहत भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और वीसी, अब प्रोग्राम का वो पड़ाव आ चुका है जहां हम किताब हिस्ट्री की, जो इतिहास की किताब है, उसके पन्नों को पीछे पलटते हैं और जानते हैं कि आज यानी जो पर्टिकुलर दिन है 30 जून का, वो क्यों इतिहास में दर्ज हो गया। आज ही के दिन 1936 में अमेरिकी लेखिका मार्गरेट मिशेल का ऐतिहासिक उपन्यास गॉन विद द विंड पहली बार प्रकाशित हुआ, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक बन गया। और प्रमोद, अब समय आ चला है कुछ ऐसी हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन या तो इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई। तो पुण्यतिथियों की बात करते हैं। पुण्यतिथि के क्रम में आज सबसे पहले याद कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी को, जिनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे। श्री दादा भाई नौरोजी का शैक्षिक पक्ष अत्यंत उज्ज्वल रहा। 1851 में इन्होंने गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाई। अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर भी रहे। 1869 में ये भारत वापस आए। यहां पर उनका 30,000 रूपये की थैली और सम्मान पत्र से स्वागत किया गया। 1885 में आपने बम्बई विधान परिषद के सदस्यता ली। 1886 में हॉलबान क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे। फिर 1886 में ही फिन्सबरी क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, जो अपने समय की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। और अब जिक्र करेंगे आशा देवी आर्यनायकम का, जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम तथा विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की। इनकी आज पुण्यतिथि है। ये एक शिक्षाविद थी जो हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहती थी, जो उनके छात्रों के मन में रुचि पैदा करें। वो महात्मा गांधी की नई तालीम और बुनियादी शिक्षा या सीखने की उनकी कार्यप्रणाली से आकर्षित थी। वो अपने छात्रों से प्यार करती थी और उनके छात्र उन्हें मां कहकर बुलाया करते थे। साल 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आज हम प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन को भी याद कर रहे हैं। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रोताओं, आप सभी में से ज्यादातर जानते होंगे कि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था।

0: साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से अपनी रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री नाम से लेखन किया है। नागार्जुन की मुख्य रचनाओं में शामिल हैं रतिनाथ की चाची, नई पौध और वरुण के बेटे। आज हम हिंदी के एक और प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक को भी याद कर रहे हैं प्रमोद
1: जी।
0: बात कर रहे हैं डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे। डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से अपंग थे, लेकिन फिर भी इस अपंगता को उन्होंने अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। वो पैरों से लिखते थे, उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संस्कृति एवं मानव मूल्य को आधार बनाकर लिखने वाले प्रोफेसर रघुवंश का हिंदी में नई आलोचना के सूत्रपात में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी लिखित कुछ मुख्य रचनाएं इस तरह हैं: तंतुजाल, अर्थहीन, छायालय, हरिघाटी, मानसपुत्र, ईसा आदि। और अब थोड़ा सा रुख जो होगा प्रमोद वो बॉलीवुड की तरफ होने वाला है, क्योंकि बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी की, जिनकी आज जयंती है। और भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे ये। कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे।

करोड़ों भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है। वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयत आर्जी पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मगरब बंगाल सरकार रियासत यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तेदात और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रूपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तफना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमले की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हरमुस से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राजील जापान को 1-1 दो गोल से हरा के फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की फरोख्त और तकसीम से

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत भी हम कर रहे हैं पद्म सम्मान की विभूतियों की कहानी से। और 2026 में पद्म सम्मान प्राप्त विभिन्न शख्सियत पूर्वोत्तर से संबंध रखती हैं। पूर्वोत्तर की कई शख्सियत के बारे में हमने पिछले संस्करण में आपके साथ चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं कविंद्र पुरकायस्थ के योगदान की। स्वर्गीय कविंद्र पुरकायस्थ को 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। असम में विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को सुदृढ़ करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में उनका योगदान आज भी स्मरणीय है। तो आइए कविंद्र पुरकायस्थ की कहानी सुनते हैं।
0: स्वर्गीय श्री कविंद्र पुरकायस्थ को जनसेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया और असम के सामाजिक और जनहित के कार्यों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने और समाज के विकास व लोगों के कल्याण से जुड़े कई प्रयासों में योगदान दिया। उनकी ईमानदारी, नेतृत्व और समर्पण के कारण उन्हें हर वर्ग के लोगों का सम्मान मिला। भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित पद्म पुरस्कारों में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और कार्य आज भी जनसेवा, समाज के विकास और प्रशासन से जुड़े लोगों को प्रेरणा देते हैं। यह सम्मान असम और समाज के लिए उनके अमूल्य योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ अनिशा साहू, आकाशवाणी समाचार।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर के सभी राज्य अपनी जैव विविधता और प्रकृति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए हम सभी पर्यटक भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वहां की जो सुंदरता है, प्राकृतिक संपदा को संजोए रखने की जो परंपरा है, वो वहां के राज्यों को एक नया रूप देती है। सिक्किम भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ जैव विविधता और प्रकृति के संरक्षण को लेकर जो पहल की जाती रही है उससे राज्य बहुत सुंदर और आकर्षक है। तो सिक्किम के एक गांव की हम आपको आज एक पहल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां उन्होंने ऑर्किड के संरक्षण को लेकर बहुत से महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो आइए हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
2: वनस्पति शोधकर्ता प्रमोद राय के नेतृत्व तथा स्थानीय युवा स्वयं सेवकों के सहयोग से यह पहल विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और जन सहभागिता का सफल संगम बन गया है। वर्ष 2021 से चलाए गए विभिन्न अभियान के दौरान सैकड़ों स्थानीय ऑर्किड पौधों को बचाकर उपयुक्त वृक्षों पर

0: स्थापित किया गया और प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया गया। इस प्रयास ने न केवल गांव की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाया बल्कि ऑर्किड के पारिस्थितिक महत्व के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। ऑर्किड और उनके आश्रय वृक्षों का संरक्षण सिक्किम की विशिष्ट जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण भी बन रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वनस्पति शोधकर्ता प्रमोद राय ने इस 3 वर्षीय संरक्षण यात्रा के दौरान आई चुनौतियों तथा भविष्य में इस पहल की संभावना पर अपने विचार साझा किया।
1: पिछले 3 वर्षों के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लोगों को ऑर्किड के प्रति सोच को बदलना था, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण बड़े और आकर्षक ऑर्किड जो होता है जैसे सिंबेरियम हाइब्रिड उस तरह के फूल से परिचित थे, जबकि हमारा ध्यान स्थानीय एपिफाइटिक ऑर्किड जो पेड़ के तने में होते हैं उस प्रजातियों पर था, जिनमें से कई के फूल बहुत छोटे और कम आकर्षक और कम समय तक टिकता है। लोगों को इनके महत्व को समझाने के लिए लगातार हमने जागरूकता कार्यक्रम और नियमित बातचीत की आवश्यकता पड़ी। एक अन्य चुनौती यह थी कि कई लोग इस पहल से सीधे आर्थिक लाभ का अपेक्षा करते थे, जबकि संरक्षण के लाभ देर से ही होता है और तुरंत दिखाई नहीं देते। फिर भी निरंतर जनसंपर्क और 17 समर्पित स्थानीय युवाओं के सहयोग से हम लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे और गांव के प्रत्येक परिवार का भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मेरा मानना यह है कि यह पहल जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री से सिक्किम का एक सबट्रॉपिक क्षेत्र में स्थित है जहां ऑर्किड का अनेक प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही नामची जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है जो नजदीक होने के कारण इनमें इको टूरिज्म के बढ़ावा देने की भी काफी हम संभावनाएं देखते हैं। इसके साथ ही ऑर्किड स्थानीय सांस्कृतिक और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम ये डेंड्रोबियम मस्कैटम, इसके तने को उपयोग जो किरात समुदाय द्वारा पारंपरिक आभूषण जिसको धजुरा बोलता है बनाने के लिए किया जाता है काम। इसलिए यह पहल न केवल जैव विविधता के संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को भी आने वाला पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: इस अभियान का सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑर्किड का संबंध लंबे समय से राय और लिंबू समुदाय की परंपराओं से जुड़ा रहा है। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के साथ इस विरासत को पुनर्जीवित कर सिरिसे ने यह साबित किया है कि सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हो सकते है। आज यह गाँव सामुदायिक गौरव, जैव विविधता संरक्षण और सतत पर्यटन विकास का एक प्रेरणादायी हिमालयी मॉडल बन चुका है। मैनक चटर्जी के साथ आकाशवाणी समाचार गांतुक से दिल्ली राम दुलाल।
2: श्रोताओं, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में जन्म लिया और पूर्वोत्तर भारत में ही नहीं बल्कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। अपनी शहादत से, स्वतंत्रता आंदोलनों में अपने योगदान से उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से दूरस्थ इलाकों में भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। तो पूर्वोत्तर भारत भी इसी श्रेणी में है। आज हम बात कर रहे हैं कनकलता बरुआ के बारे में। कनकलता बरुआ वो नाम है जिन्होंने असम में जन्म लिया और छोटी सी अवस्था में अंग्रेजों के साथ विद्रोह करके अपने जान गंवाई और देश के लिए शहीद हुई। तो आइए ये विशेष रिपोर्ट आपको हम पूर्वोत्तर डायरी में सुनवा रहे हैं।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम की कथा उन असंख्य साहसी युवाओं की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन से बड़ा राष्ट्र को माना और बलिदान को कर्तव्य समझा। इसी पावन संघर्ष में एक नाम है कनकलता बरुआ, असम की वह वीर बालिका जिसने मात्र 17 वर्ष की आयु में तिरंगे को अपने सीने से लगाकर शहादत प्राप्त की।

असम का गोहपुर क्षेत्र घने जंगलों, हरे भरे खेतों और अपनी सांस्कृतिक गरिमा के लिए जाना जाता है। यहीं 22 दिसंबर 1924 को कनकलता का जन्म हुआ। वे बचपन से ही गंभीर, दृढ़ संकल्पी और आत्मसम्मान से भरी थी। उनका परिवार साधारण था पर संस्कार गहरे थे। कम आयु में ही माता पिता का साया उनसे छिन गया, पर उन्होंने जीवन को निराशा में नहीं डूबने दिया। उनका मन स्वतंत्रता की उस अग्नि से आलोकित हो गया था जो उस समय पूरे देश में जल रही थी। असम में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार तेजी से बढ़ रहा था। अंग्रेजी शासन द्वारा अत्यधिक कर वसूली, पुलिस अत्याचार और सांस्कृतिक दमन से जनता त्रस्त थी। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार जब पूरे देश में गूंजी तो असम भी उससे अछूता नहीं रहा। इसी वातावरण में गोहपुर में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों ने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। कनकलता ने इसी समय मृत्यु बहिनी नामक महिला स्वयंसेवी संगठन में भाग लिया। यह संगठन स्वतंत्रता संघर्ष में प्रतिरोध, अनुशासन और निडरता का प्रतीक था।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार ने दमन कार्रवाई और तेज कर दी। कई नेताओं को बंदी बनाया गया। ऐसे में जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला। गोहपुर में निर्णय हुआ कि तिरंगा को लेकर गोहपुर थाने पर प्रतीकात्मक रूप से ध्वज फहराया जाएगा। इस दल का नेतृत्व युवाओं को सौंपा गया और तिरंगा धारण करने की जिम्मेदारी स्वयं कनकलता ने ली। 20 सितंबर 1942 की सुबह हाथों में तिरंगा, आंखों में विश्वास और मन में अटूट साहस लिए युवाओं का जत्था गोहपुर थाने की ओर बढ़ा। पुलिस ने चेतावनी दी, आगे मत बढ़ो वरना गोली चल जाएगी। पर कनकलता रुकी नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ये तिरंगा इस धरती पर अवश्य लहराएगा। यदि आवश्यक हुआ तो मेरे प्राण पहले जाएंगे, ये ध्वज बाद में नीचे आएगा। उनका ये वक्तव्य भीड़ के मन में ध्वनि की तरह गूंज गया। वो आगे बढ़ी, पुलिस ने गोलियां चला दी। कनकलता ने अंतिम क्षणों में भी ध्वज को अपने सीने से कसकर पकड़े रखा। वह गिर पड़ी पर तिरंगा गिरने नहीं दिया। उसी क्षण पास खड़े मुकुंद काकोती ने ध्वज को थामा पर वे भी अंग्रेजी गोलीबारी का शिकार हुए। इस प्रकार 17 वर्ष की अल्पायु में कनकलता बरुआ ने अपने प्राणों के साथ तिरंगा राष्ट्र को समर्पित किया।

उनकी शहादत सिर्फ बलिदान नहीं थी, ये एक संदेश था। ये संदेश था कि स्वतंत्रता उन युवाओं और युवतियों के विश्वास और बलिदान से सींची गई थी जिनके मन में भारत बसता था। असम की धरती सदियों से स्वाभिमान और साहस की भूमि रही है। यहाँ अक्काम खिलंग, मोइनांगो, पीका युद्ध और अनेक लोकवीरों की स्मृति जीवित है। इसी परंपरा की अमर ज्योति थी कनकलता। उनका जीवन ये सिखाता है कि देशभक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है। ये भावना जब व्यक्ति के हृदय में जागती है तब वह साधारण नहीं रहता, वह इतिहास बन जाता है। आज गोहपुर में उनका स्मारक है, विद्यालयों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हर वर्ष उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि आने वाली पीढ़ियां ये समझें कि स्वतंत्रता की रक्षा निरंतर जागरूकता, साहस और एकता से होती है। कनकलता बरुआ की कहानी हमें ये भी स्मरण कराती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान पूर्वोत्तर भारत ने केवल समर्थन नहीं दिया बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। इस क्षेत्र की वीरता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अभिन्न अध्याय है। कनकलता ने तिरंगे को अपने प्राणों से सींचा। उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्र प्रेम जब हृदय में बसता है तब आयु छोटी नहीं आत्मा विशाल हो जाती है। उनका नाम आज भी वही ध्वनि लेकर उभरता है, असम की बेटी, भारत की शान, अमर वीरांगना कनकलता बरुआ महान। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जागरूक।

0: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
1: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर,

प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेंत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य और रोवा वन्य जीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खान पान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला, राज्य की राजधानी, अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आए और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब

0: करीब से महसूस करें।
1: ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
2: पूर्वोत्तर राज्यों को खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गाँव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहरा आते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाई कुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेल शिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिश्मी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुट जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा है। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र

की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के या गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत है। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशा खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

चार दहाइयों से ज्यादा अरसे तक उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मी सनत को जो धुनें दी, जिनमें रोमांटिक नगमे भी हैं जनाब, गजलें भी हैं, कव्वालियां भी हैं, हुब्बुल वतनी के गीत भी हैं, खुशी के भी गीत हैं और गम के भी गीत हैं, हर अंदाज में उनकी मौसिकी ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। और आज इसी जोड़ी के कल्याण जी वीर जी शाह का यौम पैदाइश है, यानी आज ही के दिन 30 जून साल था 1928 को वो पैदा हुए थे, और उनके छोटे भाई थे आनंद जी वीर जी शाह जो 2 मार्च 1933 को पैदा हुए थे। बहरहाल आज जो हम याद कर रहे हैं वो हम याद कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह को, और आज के प्रोग्राम में हम आपको इसी जोड़ी की धुनों से सजे हुए कुछ नगमे सुनवाएंगे। दोनों का ताल्लुक रियासत गुजरात के जिला कच्छ से था, बाद में उनका खानदान तलाश मुआश में मुंबई मुंतकिल हो गया था। और दिलचस्प बात यह है कि वहां उनके वालिद की किराने की दुकान थी, और किराने की दुकान पर ही कोई एक ऐसे ही गैर मारूफ से साहब थे, मौसिकी के दिलदादा उस्ताद थे, जो उनके वालिद से सामान लिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रकम अदा ना कर सके, उधार पर कुछ सामान लिया, और फिर ये शर्त ठहरी दोनों के बीच में कि वो इन दोनों बच्चों को यानी कल्याण जी और आनंद जी को मौसिकी सिखाया करेंगे, और यही तालीम आगे चलकर उनकी अजीम कामयाबी की बुनियाद बन गई थी।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद और आज का ये प्रोग्राम कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी के नाम है। हम आपको सुनवा रहे हैं इस जोड़ी की खूबसूरत धुनों पर बने हुए प्यारे से फिल्मी नगमे।

कल्याण जी, आनंद जी एक बेहतरीन मौसिकार ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन उस्ताद भी थे सामईन। और इस तौर पर ये कह सकते हैं हम वजह तौर पर कि उन्होंने हमारी हिंदुस्तानी फिल्मी मौसिकी की जो दुनिया है उसको कई नए नाम दिए, या ये कहिए कि नए आने वालों को वो हमेशा सपोर्ट किया करते थे और आगे बढ़ने का हौसला दिया करते थे, चाहे वो मौसिकार हों चाहे वो गुलकार हों। जैसे अगर बाद के दौर की हम बात करें तो कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम, उदित नारायण, सुनिधि चौहान या फिर मनहर उदास, ऐसे नाम हैं जिनको कल्याण जी आनंद जी जोड़ी ने एनकरेज्ड किया, सपोर्ट किया और ये हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत में एस्टैब्लिश्ड हुए और बहुत सक्सेसफुल करियर इन सभी का।

0: पल भर के प्यार।
1: अब आज का मेरी पसंद का ये शुमारा खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब सुनिए मुकर्मा रजनी शर्मा की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी प्रीत की रात।

0: रेशमा, ये आवाज कहाँ से आ रही थी? कौन गा रहा था?
1: कोई अजनबी है शायद, कुदरत का दीवाना। रोज इसी तरह पहाड़ों के बीच बह रहे झरने के पास से उसके गाने की आवाज आती है।
0: तूने देखा है उसे क्या? तू मिली है क्या उसे?
1: मिली तो नहीं, लेकिन शबनम मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज में अजीब सी कशिश है, जादू है।
0: हाँ वो तो है, चला वही झरने के पास चलकर उससे मिले।
1: पता है वहां तक पहुँचने में कितना वक्त लग जाएगा, तब तक तो ना जाने कहाँ निकल गया हो।
0: हाँ।
1: इस तरह मायूस होने की जरूरत नहीं, वो रोज इसी वक्त यहाँ आता है, उसके गाने की आवाज सुनाई देती है। कल हम उसके आने से पहले ही झरने के पास पहुँच जाएंगी और उसकी आवाज के सहारे उस तक पहुँच जाएंगी।
0: ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल सुबह ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम भी तैयार रहना। अच्छा खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज, देखो आना जरूर, मैं इंतजार करूंगी।
0: देख उसने गाना शुरू कर दिया है, तुझसे कहा था कि जल्दी आना, चल अब जल्दी चल, ऐसा ना हो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो कहीं दूर निकल जाए।
2: तू तो कहती थी तू उसे जानती नहीं। रेशमा मुझे लगता है वो तेरे आने की खुशी में ही गा रहा है।
0: तू नहीं सुधरेगी, चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा।

0: बहुत अच्छा गाते हैं। आपकी आवाज में घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, हम आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दीजिए।
1: जी जी, आप तो यही शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे कुदरत से बहुत लगाव है, कुदरत के ये खूबसूरत नजारे देखकर ना जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और गुनगुनाने लगता हूँ। वरना दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में ये सब कहाँ।
0: ओहो, आप दिल्ली के रहने वाले हैं। अब लगे हाथ अगर आप अपना नाम भी बता देते।

0: वैसे वैसे मेरे लिए नहीं, मेरी इस सहेली के लिए जो रोज आपका गाना सुनती है, जिसे आपकी आवाज आज यहाँ तक खींच लाई है, जिसका नाम रेशमा है और यही पास ही उस पहाड़ी पर रहती है जिसके
1: चुप्पी करेगी, यू ही बोलती रहेगी।
0: अरे अरे अरे रेशमा, अब तुम तो कुछ बोलोगी नहीं, मुझे भी बोलने नहीं दोगी, तो फिर भला पहचान आगे कैसे बढ़ेगी।
1: शबनम फिर हट, तो बहुत बोलती है।
2: रेशमा जी आप नाराज ना हो, आपकी सहेली बहुत अच्छी है, इनका तारुफ करवाने का अंदाज बहुत अच्छा है। मैं अपना मुख्तसर तारुफ दे दूं, मेरा नाम सलमान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहां के कंक्रीट के जंगलों से दिल घबराता है, तो यहाँ कुदरत के करीब रहकर ताजी हवा का लुत्फ लेने चला आता हूँ।
0: सलमान साहब क्या आप अक्सर यहाँ आते हैं?
2: हाँ हाँ, अभी तक तो ये पहाड़, ये झरने, ये वादियां मुझे बुलाती हैं और मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ, लेकिन अब अगर कोई प्यार से बुलाए तो यही बस जाने की चाहत है।
0: लेकिन ये तो कुछ भी कहने वाली नहीं।
1: शबनम

0: मुना, मैं बेहद काबू हो चुकी हूँ। ना कहते हुए भी कैसे चली आती हूँ सलमान।
1: हाँ, अभी तक तो ये झरने, ये पहाड़, ये वादियाँ ही मुझे दिलकश लगती थी। इन्हीं के लिए मैं बार बार अपना शहर छोड़कर यहाँ आता था। लेकिन अब तो
0: क्या हो गया है? क्या अब इन नजारों में
1: एक चीज का इजाफा हो गया है? अब तुम, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हुस्न भी इन नजारों में शामिल हो गया है।
0: तुम उस रोज कह रही थी कि ये कुदरत के नजारे तुम्हें गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं। सलमान, इस फेरिस्त में शामिल होकर क्या मैं भी तुम्हें इसी तरह मजबूर करती हूँ?
1: तुम अगर साथ देने का वादा करो
0: तो

0: सलमान सलमान तुम कहाँ हो?
1: मैं यहाँ हूँ।
2: रेशमा तुमने हमें इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से यहाँ थी, बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
0: झूठ, तुम आए होते हैं तो तुम्हारा गाना न सुना देता। मैं तुम्हारे गाने की आवाज ही तो मुझे यहाँ खींच लाती है। मैं तो कब से तैयार बैठी थी, तुम्हारी आवाज ही सुनाई नहीं दी। मैं तो घर जाई थी, कहीं तुम दिल्ली वापस तो नहीं चले गए?
2: तुमसे बिना मिले तुम्हें बिना बताए चला जाऊंगा क्या? अपनी जान को यहाँ छोड़कर मैं दिल्ली तो क्या खुदा के भी पास जाने को तैयार नहीं हूँ।
0: सलमान तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं चली जाऊंगी और फिर कभी तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगी। हाँ
2: सच, चली जाऊंगी, जा सकोगी?
0: तुम सब जानते हो, तुम ही ऐसी दिल दुखाने वाली बात करते हो ना।
2: नाराज हो गए क्या?
0: तुम्हारे लिए मनाना क्या मुश्किल है? रोज इन पहाड़ों झरनों पेड़ों के लिए गाते हो, आज मेरे लिए एक गीत गा दो।
2: बस इतनी मासूम सी चाहत, मेरी जान आज मेरे पीछे चाहता है दोनों मिलकर एक ऐसा गीत गाएं जो सदियों तक इन वादियों में गूंजता है।

0: अच्छा तो रोज जाते हैं सलमान के लिए?
1: हाँ क्यों, मुझे नहीं जाना चाहिए क्या? क्या तू मेरी पसंद मेरी तकदीर से जलने लगी है?
0: रेशमा पब्लिक क्या मैं तेरी खुशी देखकर जलूंगी? बचपन से मैं तेरे साथ हूँ, आज पहली बार तुझे इतना खुश देख रही हूँ, वरना तेरी झील से गहरी आंखों में मैंने हमेशा आंसू ही ठहरे देखे हैं।
1: चुप कर शर्मा, अब मैं उन दुखों परेशानियों उन तकलीफों को याद भी नहीं करना चाहती जिन्हें मैंने अपनी तकदीर समझ कर सहना शुरू कर दिया था।
0: हाँ रेशमा, तेरी सौतेली माँ की वो हर वक्त की डांट फटकार, घर भर के सारे काम का बोझ और उस पर तुम्हारे अब्बू का कुछ न कहना, इन सब ने तुम्हें खुशी का एक पल भी तो आज तक नसीब नहीं होने दिया।
1: मैं क्या दिला तुम मन ही उस दिनों की शब्दम, आज मैं बहुत खुश हूँ।
0: लेकिन रेशमा अगर तेरी माँ को पता लग गया तब तो क्या वो तुम्हें इस तरह खुश रहने देगी?
1: तू तो जानती है वो आजकल अपने घर गई हुई है, उनकी वालदा बहुत बीमार है, मैं भी कुछ दिन और नहीं आएंगी शबनम, तब तक मैं अब्बू से बात कर लूंगी, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, सिर्फ अम्मा के गुस्से से डरते हैं, मैं जल्दी ही सलमान के अब्बू से उन्हें मिला दूंगी।
0: अब्बू से क्या बात करेगी, तुमने पहले सलमान से बात की है क्या? क्या वो तुझसे निकाह करना चाहता है?
1: क्या बात करती, वो तो मेरा दीवाना है।
0: ओह सच, तभी आज से उसे कुछ निखरा निखरा लगता है।
1: चलो नहीं तो मारूंगी।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, आजकल तो

0: आप ये सलमान है, मैंने आपसे
1: जी सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम बरखुदा। वालेकुम अस्सलाम रेशमा, तो बिठाए नहीं और हाँ कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
0: जी अबू।
2: और तो क्या नाम बताया था तुम्हारा रेशमा ने?
1: जी सलमान।
2: हाँ हाँ सलमान। तो सलमान भैया यहाँ के तो तुम लगते नहीं, यहाँ क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो?
1: जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहाँ अपना कारोबार है, लेकिन मेरा दिल वहाँ की भीड़ भाव शोरगुल से बहुत घबराता है। तो उस सबसे भाग कर मैं अक्सर यहाँ इन पहाड़ों झरनों झीलों के पास आ जाता हूँ। रेशमा आपको अप्पू कहती है, क्या आप मुझे भी अप्पू कहने का हक देंगे?
2: हाँ हाँ सलमान बेटे, क्यों नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा रजनी शर्मा की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी प्रेत की रात। पेशकश थी परवीन सलाम फरीदी की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों और पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 जख्मी हुए हैं। अमरीका और ईरान आबराए हुरमुज से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अफ्ताद के तहत वेनेजुएला में जल्जले से मुतालिक इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। और फुटबॉल में मराकेश पैराग्वे और ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं जबकि जर्मनी 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की एक खुली जाहियत अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी इकतदार आला पर हमला और खित्ते के अमन इस्तेकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। यह इल्जाम पाकिस्तान के इस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वो अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। तमाम ऐसी कोशिशें बेसुध साबित होंगी। भारत ने हमले के हलाक होने वाले के अहल खाना की गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी आजादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजल्जल हिमायत का इआदा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी किए और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अमरीका और ईरान आबराए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबराए हुरमुज के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आबराए हुरमुज दुनिया के अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में से एक है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल गुजरता है। गुज़श्ता जुमेरात से शुरू होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद कार्रवाई ने ईरान के साथ कतरीत खत्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा बैराग फिल्म से आपने सुना। अब सुनिए आशा भोसले के साथ किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है महल।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है दादा भाई नौरोजी।
1: हमारी तहरीक आजादी के अव्वलीन दौर में जिन कौमी रहनुमाओं ने मुल्क को कौम की क्यादत की, उनमें दादा भाई नौरोजी का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बंबई में पैदा हुए थे। उनके वालिद नौरोजी पालनजी की वफात उनकी पैदाइश के 4 बरस बाद ही हो गई थी, इसलिए दादा भाई की तालीम और तरबियत उनकी वालदा मानक बाई की निगरानी में हुई। इब्तदाई तालीम की तकमील के बाद उन्होंने 1845 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास किया और फिर वो इसी कॉलेज में नेचुरल फिलोसफी और हिसाब के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए। बाद 1855 ईस्वी में वो तजारत के सिलसिले में लंदन चले गए, मगर हिंदुस्तान आते जाते रहे। 1856 ईस्वी में उन्हें लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजराती का प्रोफेसर नामजद किया गया और तकरीबन एक दहाई तक वो इस मनसब पर काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने तालीम के फरोग के सिलसिले में बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी। वो लिवरपूल काउंसिल और नेशनल इंडियन एसोसिएशन से वाबस्ता रहे। 1865 ईस्वी में उन्होंने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी कायम की और उसके सदर मुंतखब हुए और ताहयात उसके एजाजी सदर रहे। उन्होंने लंदन ज़ोरोअस्ट्रियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बुनियाद रखी और उसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हिंदुस्तान वापसी पर वो बड़ौदा के दीवान मुकर्रर हुए।

मनीष गंधर्वी और सपना मुखर्जी की आवाजों में ये नगमा था जांबाज फिल्म से। अब सुनिए अमित कुमार और सपना मुखर्जी को फिल्म है त्रिदेव।

0: अमित कुमार और सपना मुखर्जी के गाये हुए इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स के 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था और इसके अलावा भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा

0: साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
1: देखिए, भारत और सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है। वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
0: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
1: एमओयूज की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग सारे एमओयूज में कहीं ना कहीं में दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो आईसीएआर और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए बड़ी जरूरत है, वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आर्थिक बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है उसमें भी एक बहुत जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन किलोमीटर की उनकी तटरेखा है, तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
0: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: आवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रिफ्लेक्ट आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू ए सेफर एंड मोर सिक्योर रीजन। आई मेट प्रेसिडेंट एल्बनी कॉपाथ दिस मॉर्निंग। आवर विजन इज कैप्चर्ड इन द आइडिया ऑफ महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन महासागर। दिस विजन रिकॉग्नाइज दैट आवर फ्यूचर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क टूगेदर फॉर अ सेफर एंड मोर सिक्योर इंडियन ओशन रीजन।
0: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं?
1: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो यह है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें जिससे कि ये क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी महत्वपूर्ण में मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मॉलदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती है। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया, तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम

0: हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव रूल्स बेस्ड पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनाए।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे।
0: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज है, और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे। लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ एनआरआईज को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, या वहां के सिविल सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन आए हैं जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे हैं। उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज है, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही, और इसमें सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, सेशल्स की अगर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याण कड़ी जो साझेदारी है, इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
0: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश है, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स है उन पर, उन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता के जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के IEUU जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी है, तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स है, प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती है, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता, जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक

0: ऐसे स्तर पर ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां वो अपनी बात को पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के डिबेट सुनी है उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले और साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा असर्टिवली कह सके, और इसके लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो तमाम जो छोटे देश हैं और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल प्रोफेसर राहुल मिश्रा, बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर होंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीबुर रहमान से आलमी खबरें सुनिए। कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक्वामी बरादरी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में सिविलियन हलाक हुए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि दोनों फरीकों में दोहा मुजाकरात से मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। यूरो बैंक ने कम से कम लागत पर यूनान से भारत फौरी तौर पर रकम ट्रांसफर करने के लिए UPI पर मबनी तरसील रकम खदमात शुरू की है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं और मराकश, पैराग्वे और ब्राजील फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी मुकाबले से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक्वामी बिरादरी ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार सूबों में पाकिस्तानी फौज के फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे कबल तालिबान के नायब तर्जमान हमदुल्ला फितरत ने बताया कि ये फजाई हमले 28 जून की रात को किए गए थे जिनमें 36 आम शहरी मारे गए जबकि 163 जख्मी हुए। इन हमलों में 3 रिहायशी मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने फौरी तौर से मुखासमत रोकने पर जोर दिया है और सभी फरीकों से कहा है कि आम शहरियों का तहफ्फुज़ किया जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौरी तौर से कशीदगी दूर करने और सब्र तहम्मुल बरतने की अपील की है। उसने आम शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है और इंसानी हमदर्दी के बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम को यकीनी बनाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि इस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फिजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा के एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की ये खुली जारहियत अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। यह इकदाम पाकिस्तान के इस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वो अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। तहम ऐसी कोशिशें बेसूर साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहले खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आजादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलसल हिमायत का इरादा किया है। وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ جب ذہن پرعزم اور خیالات و جذبات ہم آہنگ ہوں تو ہر کوشش کامیاب ہوتی ہے. وزیر اعظم نے یہ بات ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت سبھاشتم کو

0: शेयर करते हुए कही। जलालुद्दीन शहरियों पर जोर दिया कि वे इत्तेहाद के साथ तरक्की के मंजिल तय करें और यकजहती का मुजाहरा करते हुए भारत वर्ष के मकसद के हुसूल के लिए सरगर्म रहें। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कांगो की योम आजादी के मौके पर वहां की वजीर खारिजा मोहतरमा थेरेस कायक्वांबा वाग्नर, हुकूमत और वहां की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत दोनों मुल्कों के माबैन बाहिमी ताल्लुकात और तरक्की पर मबनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तहत प्रयासम है। मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि ताजा बातचीत दोहा में हो सकती है। अलबत्त ईरान ने यह कहते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का सरदस्त कोई मनसूबा नहीं है। ईरानी मतदारों ने मजीद कहा है कि उनकी फौरी तवज्जो वसी या कतई समझौते पर गौर करने से पहले मुफाहमत के 14 निकाती मेमोरेंडम को अमली जामा पहनाने पर है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूरोबैंक ने यूनान से रकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज किया है ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त में ही रकम भारतीय सार्फिन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। यह पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कारपोरेशन एनपीसीआई के साथ मस्कूरा बैंक के कलीदी इश्तराक का हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनअतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोबैंक में मस्कूरा खिदमात का आगाज आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निजाम की तौसी में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर यूपीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसकी सताइश से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के नजरिए में एतमाद की अक्कासी होती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत इंसानी इमदाद की कोशिशें तेज कर दी हैं। इमदादी कार्रवाईयों का दायरा वसी किया जा रहा है जिसमें खास तौर पर जलजले से मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद और हंगामी इमदाद फराहम करने पर तवज्जो दी जा रही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में वाकई भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जलजला मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत इमदादी कोशिशों को तेज कर दिया गया है। इससे कबल ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत तैनात भारतीय फौजी दस्ते ने तबाहकुन जलजले से मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एक फील्ड अस्पताल कायम किया था। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि वेनेजुएला में फौज का फील्ड अस्पताल जलजले से मुतासर लोगों की देखभाल और मदद फराहम कर रहा है। मरकजी इत्तला'आत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनअत को फरोग देने के मकसद से दो बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तला'आत और नशरियात की मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने और भारतीय सिनेमा के माहौलियाती निजाम में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। भारत ने कहा कि इन इकदाम का मकसद भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबकती बनाना, बिलखसूस छोटे शहरों और देही इलाकों में सिनेमा के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। प्रसार भारती के चेयरमैन परसुन जोशी की सरबराही में एक आला सतही स्टडी ग्रुप तश्कील दिया गया है जो भारतीय सिनेमा को दरपेश चैलेंजों और मौके का मुताला करेगा। यह शोबे को मजबूत बनाने के तरीके तजवीज करेगा और भारतीय फिल्मों को आलमी सतह पर ज्यादा मुसाबकती बनाने के लिए इकदाम की सिफारिश करेगा। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 के अक्सरियती फैसले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीजा कुक को बरतरफ करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि ट्रंप कुक को बरतरफी की कोशिश करने से पहले जरूरी कानूनी तरीकेकार इख्तियार करने में नाकाम रहे हैं। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैरागोए ने जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 3-4 चार गोल से हरा दिया। मुकर्रा वक्त तक दोनों टीमों ने एक एक गोल किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मरतबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर पैरागोए इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इधर आज खेले गए नॉकआउट मरहले के एक और मैच में मराकश ने नीदरलैंड्स को पेनाल्टी शूटआउट में 2-3 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने एक एक गोल किया था। इससे पहले अमेरिका में ह्यूस्टन में खेले गए मैच में ब्राजील जापान को 1-2 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक्वामी बरादरी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फदाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में सिविलियन हलाक हुए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत में रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि दोनों फरीकों में दोहा मुजाकरात से मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। यूरोबैंक ने कम से कम लागत पर यूनान से भारत फौरी तौर पर रकम ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई पर मबनी तरसील रकम खिदमात शुरू की है। भारत में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं और मराकश पैरागुए और ब्राजील फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी मुकाबले से बाहर हो गया है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक्वामी बिरादरी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में सिविलियन हलाक हुए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि दोनों फरीकों में दोहा मुजाकरा से मुतालिक इख्तलाफात पाए जाते हैं। यूरो बैंक ने कम से कम लागत पर यूनान से भारत फौरी तौर पर रकम ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई पर मबनी तरसील रकम खदमात शुरू की हैं। भारत ने ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं और मराकश पैराग्वे और ब्राजील फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी मुकाबले से बाहर हो गया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आपने सुनी उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। हमारी पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का आगाज होगा दिन में 3 बजे। दीगर प्रोग्रामों के अलावा 3:30 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम अदब रनुमा। फिलहाल आज का पहली मजलिस का वक्त अब खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत।

0: तो दिलजले की कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी परिस्थितियों के कारण पूरी तरह बदल जाती है। अर्जुन एक ईमानदार और देशभक्त युवक होता है जो सोनिया से प्यार करता है। कुछ गलतफहमियों और साजिशों के कारण अर्जुन पर अपराध का आरोप लग जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। समाज और व्यवस्था से निराश होकर वह आतंकवादियों के बीच पहुंच जाता है। बाद में उसे एहसास होता है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अंत में वह देश की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी अपनी निभाता है। दोस्तों, इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे हैरी बावेजा, जो बड़े पैमाने पर ऐसी ही भावनात्मक और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं इसी फिल्म के एक डायलॉग के साथ ये गीत।
1: गुलशन फूल कलियां बहार वादियां

0: आइए,
1: अगली पुलिस स्टेशन आइए। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल
1: अरेस्ट? 1,00,000 दो बन जाओगे। अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजे और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, सोनाली बेंद्रे 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी मुस्कान और सादगी दर्शकों को बेहद पसंद आती थी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और दोस्तों, आपको एक रोचक तथ्य बताती हूं, उस दौर में फिल्मों के प्रमोशन का तरीका आज जैसा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए फिल्मों की लोकप्रियता का अंदाजा गीतों और पोस्टरों से लगाया जाता था। और दिल जले के गीत रिलीज से पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे। श्रोताओं, अगर आपको यह फिल्म याद है तो जरूर याद होगा कि इसकी कहानी में भावनाएं और एक्शन दोनों बराबर मात्रा में मौजूद थे। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये एक मधुर गीत।
4: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
3: क्या?
4: वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता?
0: मैं क्यों लिखूंगी?
4: तो ये सारे कार्ड्स,
0: वो तो
4: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
0: नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
4: आज चोर पकड़ा गया,

दोस्तों इस फिल्म का संगीत तैयार किया था अनु मलिक जी ने। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 1996 बॉलीवुड के लिए बेहद खास वर्ष था। इसी दौर में संगीत प्रधान फिल्मों का बोलबाला था और दर्शक कहानी के साथ साथ गीतों को भी उतना ही महत्व देते थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिल्म के नायक अजय देवगन की। अपने करियर की शुरुआत से ही वे गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने गए। दिलजले में उनके अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों को दोनों को ही प्रभावित किया।

0: दोस्तों फिल्म का देशभक्ति वाला पक्ष दर्शकों को बहुत पसंद आया और इसकी वजह से यह केवल रोमांटिक फिल्म बनकर नहीं रह गई बल्कि एक देशभक्ति के जज्बे को नई ऊंचाई तक लेकर गई। जब भी फिल्मों के देशभक्ति गीतों की चर्चा होती है तो भाई यह गीत जरूर याद किया जाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहते हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

मेरा मुल्क मेरा देश सुनकर आज भी वही जोश महसूस होता है जो वर्षों पहले होता था। दोस्तों, आज हमने फिल्म दिल जले के गीतों, कलाकारों और उससे जुड़ी यादों को ताजा किया। इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

केंद्रीय खेती बाड़ी के किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाइटिस कॉल पर जोर दिया कि खेती बाड़ी के उत्पाद विकास के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। भारतीय वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स एफपीटीएफ ने दहशतगर्दी वित्त पोषण के मनी लॉन्ड्रिंग खिलाफ आलमी लड़ाई का एक लाजमी थम दसद अपना मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। भारत समेत अंतरराष्ट्रीय भाईचारे ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फौज वालों किए गए हवाई हमलों की सख्त निंदा की है। सेहत मंत्रालय ने सारे केंद्रीय

बोलने। जनरल डेयर जी ने कहा कि पार्टी को भी पिछले दो साल में चार मोर्चों पर अपनी तैयारी संतुलन और प्रॉक्सी बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी फौज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सारे मामलों में स्पष्ट उद्देश्यों

तक छक्के नागरिक मारे गए तो 173 जख्मी हो गए। हिंसा के बिंदु चिंता प्रकट कर रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दुश्मनी में तुरंत बंद करने की मांग की थी। सारे तिरान नागरिकों की रक्षा करने की अपील की थी। यूरोपियन यूनियन ने भी तनाव तुरंत टालने का संयम की मांग की थी। भारत ने भी अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के हवाले

ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रुपुमा के मुंतकली में सहूलियत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तोसी में संगमील करार दिया है। दिल्ली और चार रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। मौसमियात महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाज हिस्सों बिहार बस्ती महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। यूरो बैंक ने यूनान से रुकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रुकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज किया है, ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त ही में रकम भारतीय सार्फिन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। यह पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कारपोरेशन MPCI के साथ मस्कूरा बैंक के कलीदी इश्तराक का हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनअतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरो बैंक में मस्कूरा खिदमात का आगाज आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निजाम की तौसीह में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर यूपीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसकी 27 से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए में एतमाद की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश का दो दिन का दौरा कर रही हैं। वह आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की पहली तकरीब में शिरकत कर रही हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले 373 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 10 खवातीन समेत उम्दा तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 13 तलबा को गोल्ड मेडल भी पेश करेंगी। संगे जमहूरिया आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कौमी राजधानी दिल्ली और चार रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी SIR के तहत घर घर जाकर राय दहिंदगान के बारे में मालूमात हासिल करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कर्नाटक में सभी 31 जिला चुनाव दफातर में इस काम के लिए 59,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरों को मुतय्यन किया गया है। इस अमल में 4 इजाफी जिला चुनाव अफसर, 224 चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर और 7,556 BLO सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। सियासी पार्टियों ने 1,15,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट मुकर्रर किए हैं, जो BLOs के साथ मिलकर काम करेंगे। इधर कौमी राजधानी खत्म

0: दिल्ली में भी FIR के तहत घर घर जाकर चुनाव एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके तहत 13,000 से ज्यादा BLOs अगले महीने की 29 तारीख से घर घर जाकर सभी मौजूदा राय दहिंदगान को एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में दावे और एतराजात 5 अगस्त से लेकर 4 सितम्बर तक दाखिल किए जा सकेंगे। हदमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राय दहिंदगान ये एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। इधर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कौमी राजधानी में सभी अहल राय दहिंदगान से अपील की है कि वो नजरसानी के इस अमल में शामिल हों। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा है कि ज़राई शोबे को फरोग दिए बगैर विकसित भारत के नजरिए को हासिल नहीं किया जा सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर रही है जिससे मिट्टी और ज़राई जमीन को दरकार कीमियावी खाद की मकदार के बारे में जानकारी फराहम की जा सकेगी। वजीर मौसूफ ने किसानों पर जोर दिया कि अपने खेतों में फर्टिलाइजर और जरासीम कुश दवाओं का इस्तेमाल मुतवाजन अंदाज से करें ताकि ज़राई जमीन दुरुस्त हालत में रहे। उन्होंने किसानों को यह सलाह भी दी कि वो ऑर्गेनिक खेती का तरीका इख्तियार करें।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि भारतीय फौज की ताकत किसी शख्स से वाहिद से नहीं बल्कि उसके फौजियों, कमांडरों, रिटायर्ड फौजियों, कुंभों और भारत की शहरियों के नाकाबिले मुतजलजल यकीन और एतमाद से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने यह बात आज नई दिल्ली में फौज के सरबराह के तौर पर अपने ओहदे से सुबुकदोश होते हुए कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 4 दहाइयों से ज्यादा भारतीय फौज में खिदमत अंजाम देना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में यह एक अहम सुतून है। भारत के इस बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर नुक्ताचीनी की थी क्योंकि ज्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक हफ्ते के मौके पर अकवामी मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए अकवामी मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टी हरीश ने कहा कि FATF की साख पर सवाल उठाने की कोशिश से हकीकी तशवीश की बजाय जांच के खौफ की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा है कि जिन मुल्कों को FATF के नामुवाफिक तजवीज का सामना है उन्हें अपनी कमी और कोताहियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाना चाहिए। कई आलमी रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी बरादरी ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार सूबों में पाकिस्तानी फौज के फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे कबल तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने बताया कि ये फजाई हमले 28 जून की रात को किए गए थे जिनमें 36 आम शहरी मारे गए जबकि 163 जख्मी हुए। इन हमलों में 3 रिहायशी मकान पूरी तरह तहस-नहस हो गए। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने फौरी तौर से मुखासमत रोकने पर जोर दिया है और सभी फरीकों से कहा है कि आम शहरियों का तहफ्फुज़ किया जाए। मगरबी एशिया में कशीदगी को कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि ताजा बातचीत दोहा में हो सकती है। अलबत्ता ईरान ने यह कहते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का समयदस्त कोई मंसूबा नहीं है। मौसमियात के महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों बिहार, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। بھارتی ساحلی محافظی دستے کے بحری جہاز سچیت نے بنگلورو کے ساحل کے نزدیک سمندر میں تلاش اور بچاؤ کاروائی میں ماہی گیری کے کام آنے والی مشکل میں گھری ہوئی بھارتی کشتی منجو

0: 18 में से 6 माहिगीरों को बचाया है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को 3-4 से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया था। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मरतबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर पैराग्वे इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कांग्रेस के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संगमील करार दिया है। दिल्ली और 4 रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने क्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुसरद कर दिया है। मौसमियात महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों बिहार, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, central Maharashtra, Konkan and Goa for next 2 days. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in 4-3 penalty shootout. Morocco enters round of 16 defeating the Netherlands. The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India, enabling Indian customers to transfer money near instantly at minimal costs. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Mr. Goyal said the increasing global acceptance and appreciation of UPI reflects the trust in Prime Minister Narendra Modi's vision of building technology-led solutions that create value beyond borders and deepen partnerships for shared growth and prosperity. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi over 13,000 booth-level officers, BLOs, will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media yesterday, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, said claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. In Karnataka, door-to-door enumeration of voters has begun with the visit of both block-level officers to the households as part of the special intensive revision. Over 59,000 BLOs are deployed across the state for the exercise in all the 31 district election offices. In Meghalaya, East Khasi Hills Deputy

0: पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट। बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्ययोजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है। तो उनके सेलिब्रेशन है, उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के

0: अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में

0: अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत की उस महान संगीतकार जोड़ी की, जी हाँ, जिसने लगभग 4 दशकों तक अपनी धुनों से श्रोताओं के दिलों पर राज किया। एक ऐसी जोड़ी जिसने रोमांस, दर्द, भक्ति, लोक संगीत और आधुनिकता हर रंग को अपने संगीत में समेटा। आज का यह विशेष अंक समर्पित है महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी वीरजी शाह और आनंद जी वीरजी शाह, जी हाँ, जिन्हें हम सब कल्याण जी आनंद जी के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके एक लोकप्रिय गीत के साथ।

श्रोताओं, कल्याण जी और आनंद जी का जन्म गुजरात के कच्छ क्षेत्र से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ बसा। संगीत से लगाव बचपन से ही था उन लोगों का। बड़े भाई कल्याण जी ने संगीत की दुनिया में पहले कदम रखा। कहा जाता है कि उन्होंने क्लेवियोलिन नामक वाद्य यंत्र पर जो धुन निकाली, उन्होंने फिल्मी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 1950 के दशक में कल्याण जी ने स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू किया। बाद में छोटे भाई आनंद जी उनके साथ जुड़े और जन्म हुई एक ऐतिहासिक संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। 1960 का दशक कल्याण जी आनंद जी के लिए सफलता लेकर आया। उनका संगीत सरल भी था और मधुर भी। वे भारतीय लोकधुनों को आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुत करने में माहिर थे। फिल्म हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले ने उन्हें संगीत जगत की अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी धुनों में ताजगी थी और आम आदमी की भावनाओं से सीधा जुड़ाव था।

यदि कल्याण जी आनंद जी का नाम लिया जाए और गायक मुकेश का जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। जी हाँ, मुकेश की आवाज और कल्याण जी आनंद जी का संगीत एक दूसरे के पूरक थे। इनकी जोड़ी ने अनेक अमर गीत दिए। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत।

दोस्तों कल्याण जी आनंद जी रोमांटिक गीतों के भी बादशाह थे, उनकी धुनों में मिठास थी, शब्दों को उभारने की कला थी और भावनाओं को सीधे दिल तक पहुंचाने की क्षमता थी। चलिए महसूस करते हैं यही सब इस गीत के जरिए।

0: सुना इस गीत ने पूरे देश में धूम मचा दी थी और आज भी वही ये गीत ना चले तो क्या क्या बात होगी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

1978 में आई फिल्म डॉन उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने रिलीज के समय थे। जरा आपको तो याद ही होगा वो गीत खलके पान बनारस वाला।

पोखर के पान बनारस वाला पोखर के पान बनारस वाला खुल जाए बंद पल का ताला पोखर के पान बनारस वाला खुल जाए बंद पल का

भोला भाला। मैं कैसा भोला भाला,

बहुआ निहाल छोरा गंगा किनारे बाला ओ छोरा गंगा किनारे बाला पहन बनाओ रसवाला कुली जाए बंद अकल का ताला ओ खाई के पहन

0: किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला।
1: श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी ने कई नए कलाकारों को मंच दिया। उनकी संगीत अकादमी और स्टेज शो के माध्यम से अनेक युवा प्रतिभाओं को अवसर मिला। कहा जाता है कि उन्होंने कई उभरते गायकों और वादकों का मार्गदर्शन किया। उनका योगदान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि संगीत संस्कृति के विस्तार में भी रहा। संगीत जगत में उनके योगदान को अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सराहा गया। करीब 250 से अधिक फिल्मों में संगीत देकर उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध किया। उनकी धुनें

दोस्तों, अगर हम आज बात करें फिल्म जगत के स्वर्णिम युग की, अगर हम बात करते हैं, तो कल्याण जी आनंद जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका संगीत पीढ़ियों को जोड़ता है, उनकी धुनों में भारतीयता है, अपनापन है और समय से परे रहने वाली मधुरता है।

उनकी धुने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल मैं छोड़े जाते हूँ आपको इस गीत के साथ और आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने जाना महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह के संगीत सफर को। और आप सुनते रहिए गीत और मुझे अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर।

दिन में 3:30 पर सुबाई आप सुनेंगे प्रोग्राम अदब नुमा, शाम 4 बजे आप फिल्मी नगमे सुन सकेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:05 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 होने को है, अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अभी रहमान से खबरें सुनिए। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलियत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तोसी में संगमील करार दिया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। यूरो बैंक ने यूनान से रुकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रुकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज किया है, ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त में ही रकम भारतीय सार्फीन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। यह पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कारपोरेशन NPCI के साथ मस्कूरा बैंक के कलीदी इश्तराक का हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनअतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरो बैंक में मस्कूरा खिदमात का आगाज आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निजाम की तोसी में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर यूपीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसकी सताइश से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए में एतमाद की अक्कासी होती है। संघीय जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश का 2 दिन का दौरा कर रही हैं। वो आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की पहली तकरीब में शिरकत कर रही हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले 373 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 10 खवातीन समेत उमदा तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 13 तलबा को गोल्ड मेडल भी पेश करेंगी। संघीय जमहूरिया आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कौमी राजधानी दिल्ली और 4 रियासतों कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटर फेहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी SIR का अमल आज से शुरू हो गया है। कर्नाटक में सभी 30 जिला चुनाव दफातर में इस काम के लिए 59,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरों को मुतय्यन किया गया है। इस अमल में 4 इजाफी जिला चुनाव अफसर, 224 चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर और 7,556 BLO सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। सियासी पार्टियों ने 1,15,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट मुकर्रर किए हैं जो BLOs के साथ मिलकर काम करेंगे। कौमी राजधानी खत्ते दिल्ली में भी SIR के तहत घर घर जाकर चुनाव एनुमरेशन फार्म तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके तहत 13,000 से ज्यादा BLOs अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर सभी मौजूदा राय दहिंदगान को एनुमरेशन फार्म तकसीम करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में दावे और एतराजात 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। हतमी वोटर फेहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राय दहिंदगान ये इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। इधर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कौमी राजधानी में सभी अहल राय दहिंदगान से अपील की है कि वो नजरसानी के इस अमल में शामिल हों। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि भारतीय फौज को ताकत किसी शख्स वाहिद से नहीं बल्कि उसके फौजियों, कमांडरों, रिटायर्ड फौजियों, कुंभों और भारत के शहरियों के नाकाबिले मुतजलजल यकीन और एतमाद से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने यह बात आज नई दिल्ली में फौज के सरबराह के तौर पर अपने

से सुभगदोष होते हुए कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार दहाइयों से ज्यादा भारतीय फौज में खिदमत अंजाम देना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कांगो के योम आजादी के मौके पर वहां की वजीर खारजा मोहतरमा थेरेस कायक्वांबा वाग्नर हुकूमत और वहां की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी ताल्लुकात और तरक्की पर मबनी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तई पुरअज़्म है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में ये एक अहम सतून है। भारत के बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर नुक्ताचीनी की थी क्योंकि ज्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक हफ्ते के मौके पर अकवामे मुत्तहिदा के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए अकवामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि FATF की साख पर सवाल उठाने की कोशिशों से हकीकी तशवीश के बजाय जांच के खौफ की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों को FATF के नामुवाफिक तजजिये का सामना है उन्हें अपनी कमी और कोताहियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जलजले से मुतासरा वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत इंसानी इमदाद की कोशिशें तेज कर दी हैं। इमदादी कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जा रहा है जिसमें खास तौर पर जलजले से मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद और हंगामी इमदाद फराहम करने पर तवज्जो दी जा रही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में वाकई भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जलजला मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत इमदादी कोशिशों को तेज कर दिया गया है। इससे कबल ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत तैनात भारतीय फौजी दस्ते ने तबाहकुन जलजले से मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एक फील्ड अस्पताल कायम किया था। वस्ती शुमाली वेनेजुएला में 24 जून को एक बात दीगरे आए जलजले में कम से कम 1719 अफराद हलाक और 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जलजले के नतीजे में तकरीबन 15000 लोग बेघर भी हो गए हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि ताजा बातचीत दोहा में हो सकती है। अलबत्ता ईरान ने यह कहते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का सरदस्त कोई मंसूबा नहीं है। ईरानी अहदेदारों ने मजीद कहा कि उनकी फौरी तवज्जो वसी या कतई समझौते पर गौर करने से पहले मुफाहमत के 14 निकाती मेमोरेंडम को अमली जामा पहनाने पर है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक ईरानी वफद ने कतर में आला सतह पर आमने सामने बातचीत की दरखास्त की थी ताकि मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की गरज से हाल ही में ऐलान करदा मुफाहमत के अबूरी मेमोरेंडम को अमली जामा पहनाने की समत में कदम बढ़ाया जा सके। ईरान ने इस दावे की तरदीद की है। ईरानी अहदेदारों ने कहा है कि उनका वफद मौजूदा समझौते के नफाज के बारे में सिर्फ टेक्निकल बातचीत के लिए दोहा जा रहा है और ये कि अमरीकी अहदेदारों के साथ बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को 3-4 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मरतबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर पैराग्वे इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आज खेले गए नॉकआउट मरहले के एक और मैच में मराकश ने नीदरलैंड्स को पेनाल्टी शूटआउट में 2-3 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यूरोबैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलियत के लिए UPI पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तोसी में संगमील करार दिया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम

0: शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैरागोए से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम अदब नुमा। आइए सुनते हैं मेरी पसंद प्रोग्राम। पहली पेशकश सौदागर फिल्म से है, आवाज है कविता कृष्णा मूर्ति की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अदब नुमा।

0: अदब नुमा का एक और शुमारा लेकर आपका दोस्त आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करते हैं आपके हालचाल और मिजाज बहुत अच्छे होंगे। तभी तो हम चले आए हैं आपसे आपकी खैरियत दरियाफ्त करने और आपके लिए लेकर आए हैं कलामी शायर और एक अफसाना। जो तो आपसे गाहे बगाहे मुलाकात हो ही जाती है किसी न किसी प्रोग्राम में, लेकिन कोशिश ही रहती है जनाब कि आपसे मुलाकातें होती रहें और ये सिलसिला जारी रहे। आरजू है कि तू यहाँ आए, आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वसल से इंतजार अच्छा था। इंतजार तो खैर आपको भी रहता है और हमें भी रहता है प्रोग्राम का भी और आपसे मुलाकात का। तो चलिए ताखीर न करते हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अदब नुमा में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक अफसाना। पहला अफसाना आपके लिए लिखा है मोहतरमा रफिया मंजूरुल अमीन ने, आग के साथ दरिया। तो आइए सुनते हैं ये अफसाना।
1: कफील मियाँ की आशिकी रंग लाई, फहमिदा बीबी की टूटी दीवार के नीचे से आते जाते आंखें चार हो गई थी। अब्बा को पता चलता तो जिंदा भून खाते, लेकिन अब्बा बेचारे टीन के टूटे संदूकों की ठोका पीटी करते, ठनाठन शोर में नजरों के बरको बाद को कहां महसूस कर पाते। गदर तो उस वक्त पड़ता जब पता चलता कि लड़का और लड़की ने बुजुर्गों को नजरअंदाज करके खुद ही अपनी बात पक्की कर ली होती। अब्बा समाज की जिस सीढ़ी पर बैठे थे वहाँ यही होता था। शादी के लिए लड़की या लड़के की पसंदीदगी को आवारगी समझा जाता, लिहाजा इससे पहले कि कफील मियाँ और फहमीदा बीबी के इश्क के किस्से लैला और मजनू से टक्कर लेते, अब्बा के पास रिश्ते का पैगाम पहुंचा दिया गया और अब्बा ने उसे बखुशी कबूल कर भी लिया। उन्हें अचंभा जरूर था कि लड़के वालों की तरफ से दान दहेज का कोई सवाल नहीं था, सिर्फ कफील मियाँ की सौतेली माँ अड़ गई थी कि वो बनारसी साड़ी जरूर लेंगी। ये गोया कफील मियाँ के घर से निकल जाने का हरजाना था, वरना वो और उनके साथ ही कफील मियाँ के अब्बू साफ शादी से बायकॉट कर रहे थे। उन्हें कफील मियाँ की आमदनी प्यारी भी थी, साथ ही अम्मा चाहती थी कि सौतेला बेटा घर से निकल जाए तो जान छूटे। कफील मियाँ ये झेल इसलिए गए कि संदूक वाले मौलाना के पास बुजुर्गों का रिश्ता ले जाना जरूरी था, वरना वो बेटी देने से साफ इनकार कर देते। फहमीदा बीबी को हासिल करने के लिए वो आग के साथ दरिया पार करने को तैयार थे। कफील मियाँ रद्दी का व्यापार करते थे, साइकिल पर सवार घर घर से रद्दी जमा करते थे, लेकिन तोल में बेईमानी करने पर भी इतनी आमदनी नहीं होती कि दो पेट पल सके। दूसरी मुसीबत ये थी कि सुबह सवेरे ही वो अपनी साइकिल लिए घर से निकल जाते तो फेरी लगाते लगाते शाम हो जाती और वो फहमीदा बीबी के लिए तरस जाते। फहमीदा बीबी थी वो भी तो बारिश की पहली बूंद की तरह थी, निखरी हुई 15 बरस का सिन, तीखा नाक नक्शा, घनी बलखाती चोटी जिसे मुबाफ ना बांधो तो खुल खुल जाती थी। कहाँ ये लवाजिमों से भरपूर दस्तरखान और कहाँ रद्दी का कब्रिस्तान जहाँ कफील मियाँ अपना रद्दी का बोझ झोंक आते। उस कब्रिस्तान में कैसे कैसे लीडर अपने झूठे वादों समेत रोज दफन हो जाते। अफसरों के रिश्वत सितानियां जिनसे जानबूझकर हुकूमत आंख चुरा लेती, दुल्हनों पर ढाए गए सितम, बड़ी ताकतों की शातिराना चालें, अगवा, रेप।

दूसरी दोनों साल पीछे एक दूसरे से छोटी बड़ी थी। मालिक मकान उनके सरों पर बड़ी शफकत से हाथ फेरने लगा था। अब वो कभी कभी किराया वसूल करने के अलावा भी कफील मियाँ का हाल चाल पूछने चला जाता। कफील मियाँ बेचारे मारे पीटे काम पर जरूर जाते, नहीं जाते तो पांच हलक कैसे भीगते। लेकिन अब उनके गैर हाजिरियां लगने लगी थी। वो तो फैक्ट्री का मालिक शरीफ था जो उन्हें काम से अलग नहीं करता था। ऐसे में एक तूफान खड़ा हुआ। बड़ी लड़की सफिया जब नल से पानी भरने गई तो महल्ले के गुंडे पाशा ने उसके दुपट्टे का कोना चुटकी में पकड़ लिया और वहीं खड़े मोहसिन ने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और सफिया हांफती कांपती घर भाग गई। वो और मोहसिन एक दूसरे के कुछ नहीं लगते थे, उनका आपस का बस एक नजर का रिश्ता था। लेकिन बस यही एक रिश्ता तो गजब ढाता है। मोहसिन गरीब माँ बाप का बेटा जरूर था लेकिन पढ़ लिख कर कुछ बनने के ख्वाब बुन रहा था। ख्वाब उसके माँ बाप भी देख रहे थे क्योंकि उनका बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पहुंच गया था। एक बार इंजीनियर हो जाए तो फिर उन्हें क्या कमी थी, और कुछ नहीं तो रिश्वत तो खा ही सकता था। लेकिन फिलहाल उन्होंने उसके जाने बगैर ही उसकी कीमत 4 लाख मुकरर कर दी थी। हैदराबाद में इंजीनियर के इतने ही दाम है। घोड़े जोड़े की रकम शायद निशान तो होनी ही चाहिए। सफिया के साथ पेश आए इस हादसे ने उसके माँ बाप को बौखला दिया। दूसरी दोनों लड़कियां भी जवानी में कदम रख रही थीं और कफील मियाँ की सेहत ज्यादती पर उतर आई थी। उन्होंने और फहमीदा बीबी ने तय किया कि जल्द से जल्द सफिया की शादी कर देनी चाहिए। और जब मोहसिन ने अपना इंदिया जाहिर किया तो इनकी खुशी की हद नहीं रही। लेकिन उनकी ये खुशी देर पा नहीं थी क्योंकि मोहसिन तो अपना मामला माँ बाप के हाथ सौंप कर छुट्टियां गुजारने वरंगल चला गया और हेडक्वार्टर ने यहाँ साफ कह दिया कि अगर लड़की वाले 4 लाख देने तैयार हों तो उन्हें सफिया को बहू बनाने में कोई एतराज ना होगा। ये उनका खासा मस्खरापन था। जहाँ सिक्के से सिक्का टकराने को नहीं था वहाँ 4 लाख कहाँ से जुड़ते। वो बेटे की जिद से भी वाकिफ थे। उसे तो भरम दे दिया कि वो खुद बातचीत कर रहे हैं और इधर कफील मियाँ से कहा कि जल्द से जल्द लड़की का निकाह कहीं और कर दो तो हम तुम्हें 2000 रुपए देते हैं, जो कफील मियाँ ने उनके मुंह पर दे मारे। उनका यह जोम बेजा था। लाख कोशिश पर भी कोई सफिया को ब्याहने नहीं आया। जो आता हजारों की मांग लेकर आता। सबसे कम मांग 10,000 की थी और इस बीच पाशा 4 बार चुटकी में सफिया का दुपट्टा पकड़ चुका था। मालिक मकान ये सारे तमाशे गौर से देख रहा था। आखिर उसे एक ऐसी तरकीब सूझी कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग चौखा आए। मजबूर इंसान बहुत जल्द मदद के लिए बड़ा हाथ थाम लेता है और कफील मियाँ तो मजबूरियों के गिरदाब में गोते लगाने लगे थे। आखिर उन्होंने उस टिंके का सहारा ले ही लिया। तय ये पाया कि अगर शेख सफिया को पसंद कर लेता है तो ठीक, वरना उसकी नजर दूसरी दोनों बहनों में से किसी पर टिकती है तो उससे 10,000 ले लिए जाए और सफिया ठिकाने लगा दी जाए। अब रहा मालिक मकान का कमीशन, तो वो खुदा तर्स इंसान था। वो कफील मियाँ की एक पाई को भी हराम समझता था। जो भी होगा वो शेख से वसूल कर लेगा, वरना उसूलन तो वो लड़की वालों से भी कमीशन लिया करता था। दरअसल उसे यकीन था कि वो तीनों ही मासूम जवानियां उसके मकतल में आएंगी जरूर। तभी से उसने एक शेख से उन कच्ची कलियों का सौदा कर रखा था। इस बीच वो शेख महज इंतजार की घड़ियां काटने के लिए एक निकाह कर चुका था जिसे पिछली बार एक हबशी को बेच आया था। आखिर वो नेक साथ आई जब मकतल खोला गया और उस करीह मंजर शेख के लिए बाजार सजाया गया। औरत का बाजार से बहुत पुराना रिश्ता है। यूसुफ तो बस एक ही बार बाजार में बिकने आए थे, बाजार को तो जुलैखाओं ने जिंदा रखा हुआ है। एक तरफ कालीन पर फहमीदा बीबी अपनी नुकसुक से दुरुस्त बेटियों के साथ खतावार सी सिर झुकाए बैठी थी, दूसरी तरफ कफील मियाँ थे। जंजीरें कहीं नहीं थी मगर वो खुद को हर तरफ से जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी सरकशी टूट चुकी थी। मालिक मकान शेख के पहलू में बैठा खुसर फुसर अरबी में बात कर रहा था। उसने जिंदगी में कभी कुरान शरीफ मुकम्मल नहीं पढ़ा था लेकिन जी जान लगाकर अरबी जरूर सीख गया था, जो उसके लिए जादुई जबान थी। मालिक मकान उस शेख को हर लड़की के मुस्बत पहलू की तरफ मुतवज्जे करता रहा और वो गिरगट नुमा शेख उन्हें ताकता रहा। तीन मासूम दिल खौफ से धड़कते रहे कि कुरान कहीं उसी के नाम न पड़ जाए। कहीं भागना नामुमकिन था, जबान पर मुआशरे का पहरा बैठा था।

0: संभाले उठा। नहीं शेख, मालिक मकान ने उसका दामन पकड़ लिया। हाथ लगाने से पहले पैसा रखो, देखते नहीं ये शरीफ मुसलमान लड़कियां हैं। शेख रुक गया, उसने मालिक मकान को हकारत आमेज नजरों से देखा, फिर चौके में हाथ डालकर नोटों के पुलंदे निकालकर उसके आगे फेंक दिए और आगे बढ़ा। लड़कियों की आंखों में आंसू खुश्क थे क्योंकि वहां दहशत की सख्त गर्मी थी, लेकिन फहमीदा बीबी की आंखें रवा थीं क्योंकि वहां यास और बेचारगी थी और आज अपने जिगर के एक टुकड़े की कुर्बानी देने पर वो मजबूर हो गई थी ताकि दूसरे दो के नसीब न उजड़े। लड़कियां कबूल सूरत थीं, रिश्ते आ रहे थे, लेकिन रकम ही पर बात अटक जाती थी। वो शेख के फावड़े जैसे पांव को तकती रही जो लड़कियों के आगे आकर रुक गए थे। सब दम्बा खुद शेख के फैसले के मुंतजर थे और वो सिचुएशन का पूरा हिज ले रहा था। अचानक वो झुका और उसने फहमीदा बीबी का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया था। वक्त थम गया था, सिर्फ शेख की गिरफ्त में एक नब्ज फड़क रही थी जिसे उसने खरीद लिया था। वो नब्ज एक औरत की नहीं थी, वो नब्ज एक मजबूर माँ की थी। फहमीदा चाहती तो झटक कर अपना हाथ छुड़ा सकती थी, बल्कि उसका फौरी रद्द अमल यही था, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर नोटों की उन गड्डियों पर गई और फिर तीन जोड़ी तकती हुई उन आंखों पर जिनमें हैरत थी, खौफ था। वो पैसा उन तीनों मासूम बच्चियों को दर दर होने से बचा सकता था। कफील मियां आग बगोला होकर खड़े हुए, लेकिन खांसी ने उन्हें फिर ढेर कर दिया। फहमीदा बीबी उनके पास दो जानों बैठ गई और उनके दोनों हाथ थाम लिए। उनकी आंखें मिली। लोग कैसे चंद लम्हों में बरसों का सफर तय कर लेते हैं। मैं तुमको तीन तलाक दिया फहमीदा बीबी, कफील मियां ने बमुश्किल कहा और फहमीदा बीबी ने उस गैर मर्द के हाथ छोड़ दिए।
1: उम्मीद करते हैं सामीन ये अफसाना आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके साथ दरिया तहरीर थी मोहतरमा रफिया मंजूरुल अमीन की। बातें भी आपसे काफी हो गई, एक अफसाना आपकी नजर किया, तो चलिए जनाब अब मौसीकी का लुत्फ लिया जाए और आपको सुनवाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गायी ये खूबसूरत गजल।

0: हम तो गजल में ऐसे महव हो गए कि कब वो शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। इतना जरूर है ये बहुत खूबसूरत गजल थी और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी ये जरूर पसंद आई होगी। तो क्यों ना इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत नई नई है। यकीनन इस शेर से जुड़ी उस शख्सियत का नाम आपके जहन में जरूर उभरा होगा जिन्हें हम शबीना अदीब के नाम से जानते हैं। अवामी शायरा हैं और मुशायरों की जान है। बहुत ही खूबसूरत गजलें और नज़में वो कहती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के कलाम शायर में हम उनके कलाम से महसूस हों और आपको भी महसूस कराएं। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा शबीना अदीब का ये कलाम कलामी शायर के तहत।
1: गजल का मतलब चंद शेर समाप्त करना है।

اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتی ہوں. غریب لوگوں کی عمر بھر کے، غریب

طيب سنتي أغلى من ما فرمان आवाजें हैं शंकर महादेवन और अलका याग्निक की फिल्म है अरमान।

0: नई फिल्म है हंसते जख्म, आवाज है मोहम्मद रफी की।
1: हाय तौबा तौबा, ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा, कैसा कहते थे ना।

0: इसमें उनके साथ ही फिल्मी म्यूजिक का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र होंगी।
1: से खबरें सुनिए। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रकूमात के मुंतकली में सहूलत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल अदायगी की तोसी में संग मील करार दिया है। भारत में माली उमूर से

निवेश के कहीं अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुकसानी की है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीन की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूट आउट में पैराग्वे से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स और कुफरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। यूरो बैंक ने ईरान से रकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज किया है ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त में ही रकम भारतीय सार्फिन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। ये पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कॉरपोरेशन NPCI के साथ मस्कूरा बैंक के करीबी इश्तराक का हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनअतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरो बैंक ने मस्कूरा खिदमात का आगाज आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निजाम की तोसी में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर यूपीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसके सताइश से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए में एतमाद की अक्कासी होती है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्री की रोकथाम में यह एक अहम सुतून है। भारत के इस बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर मुतचीनी की थी क्योंकि ज्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्द से निपटने से मुतालिक हफ्ते के मौके पर अकवाम मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए अकवाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि FATF की साख पर सवाल उठाने की कोशिशों से हकीकी तशवीश की बजाय जांच के खौफ की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों को FATF के नामवाफिक तजिये का सामना है उन्हें अपनी कमी और कोताहियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाना चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरी की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की एक खुली जारहियत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इकदार आला पर हमला और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। यह कदम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वो अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। तमाम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहले खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी आजादी और इलाकाई सालिमियत के लिए अपने गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा किया है। कई आलमी रहनुमाओं और बल्कि बिरादरी ने अफगानिस्तान के पकतिया और कुनार सूबों में पाकिस्तानी फौज के फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे पहले तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने बताया कि ये फजाई हमले 28 जून की रात को किए गए थे। इन हमलों में 3 रहायशी मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तौर से मुखासमत रोकने पर जोर दिया है और सभी फरीकों से कहा है कि आम शहरियों का तहफ्फुज़ किया जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौरी तौर से कशीदगी दूर करने और जब्त तहमुल बरतने की अपील की है। उसने आम शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है और इंसानी हमदर्दी के बल्कामी कवानीन के एहतराम को यकीनी बनाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि इस पर हर हाल में अमल किया जाना चाहिए। यह खबरें आकाशवाणी से नशे की जा रही हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान

0: ऑल इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम हे। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते आज दा प्रोग्राम घिन के हाजर हां। की हाल चाल हिन तुहाडे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो। ते चलो शुरू करें दे हां प्रोग्राम।
1: मैं प्रमोद चोपड़ा पानीपत तों तुहाडा सभा दा अज स्वागत करदा। अज काव्य पाठ सराइकी दे विच साडे कोल जो मेहमान आए हन वो सब को पहले श्री सुंदर लाल छाबड़ा जी बल्लभगढ़ तो पधारन ते सराइकी कविता बड़े ही अच्छे ढंग नाल करेन। मैं उन्हां को निवेदन करेंगा कि वो अपनी कविता सुनावन पेश करन।
2: ते मैं हुण तुहानू अपनी कविता सुनावन वेंदा पिया। उन्दा शीर्षक है सुपने दा शहर।
1: जी
2: शहरा तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। शहरा तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। चारों पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे।
1: वाह क्या बात।
2: चारा पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे। ना रात नूं सुनणेंदे हैं ते ना दिन नूं सुनणेंदे हैं, हर वेले भजदे पैण। ना रात नूं सुनणेंदे हैं ना दिन नूं सुनणेंदे हैं, हर वेले भजदे पैण। बस पैसा पैसा ते पैसा, छोटा जई हाथी बने अपना, छोटा जई हाथी बने अपना। जिवें तिवें जिथा तक अपनी छत भी कोणी, बस पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पता कोनी, कोई सुने ना भी कोनी। छोटा जई घर थी बने अपना, जिवे तिवे जिथा छत भी अपनी कोनी, पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पता कोनी, कोई सुने ना भी नहीं। बिची उत्ते चाके चा देखो, बिची उत्ते चाके चा देखो, इन्हे लगदा है जिवे कंक्रीट दा जंगल उग पोया होए। बिची उत्ते चाके चो देखो, इन्हे लगदा है जिवे कंक्रीट दा जंगल उग पोया होए। बस दूर तो ही, बस दूर तो ही हाय हैलो, किथे आना पई किथो आना पई। दिन सप्ताह महीने तो वेले वेले सारा बीत वेने हैं, दिन सप्ताह महीने तो वेले वेले सारा बीत वेने हैं। हेक दूजे को मिले मिठे झपिया पाते, तिहा दा हाल बने दे। बस हेक गल बहु सोनी लगदी है इथा, बावा सिन्नी सिन्नी रेत ते भज्जा समंदर दे उत्ते।
1: क्या बात।
2: करना हुआ या हुए कोई संगी साथी जीवन साथी, ठंडी ठंडी हवावां ते होवे उठदी लहरां दा शोर।
1: शोर
2: वसुआ बीच मड बीच रॉक बीच जू बीच, या हुए मैरिन ड्राइव। बैंदा कोई शीर्ष ते कोई बैंदा धरती ते, ऐ वल मशहूर है। शहरा तो शहर मुंबई शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई शहर मुंबई।
1: धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद।
1: मुंबई की पूरी कहानी इन्होंने अपनी कविता दे विच छाबड़ा जी ने दस दिती है। बहुत कमाल कीती है, बहुत अच्छा लगे। तुहाडी लेखनी बहुत ही शानदार है
2: जी।
1: ते मैं इसी कड़ी विच ते निवेदन करदा पिया बहन सोनिया दोवा जी को, ते आप बड़े ही अच्छे लेखक आए, कविता हैं, उपन्यास भी लिखे इन्होंने, कई काव्य संग्रह लिखन, पता नहीं कितने अवार्ड के विजेता भी हैं। बहन सोनिया जी
3: शुक्रिया। एक सुफियाना नज़्म पेश करूंगी भैया।
2: स्वागत है।

0: Che roba?
1: Potremmo scoprire da chi
0: Oh, Dio.
1: A capirci, mangiamo.

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया,
1: एकदम
0: बहुत ही सुंदर तरानों में बहन जी ने सुना है तो बहुत चंगा लगे। मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ सुनावा।
1: बिल्कुल जी, तो सुनाओ
0: तरानों में कोशिश करता पा।
1: स्वागत
0: अजकल जिम्मे हालात थे पन साडे मुल्क विच कुछ लोग मुल्क विच रह के साडे देश दा खानदान लेकिन मुल्क किसी होर दे खानदान विदेश दे उन्होंने बारे च मैं थोड़ा कोशिश कीती है। जिथा दा खांदे हो जिथा दा खांदे हो खादा पिता हराम ना कर जिथा

बक्षगुण वैसन बदल तू अमला को जेकर बदल तो सकदा है। बदल तो अमला को जेकर बदल तो सकदा है। जिता दा खांदे हो कभी तू सोची मेरा देश ए महान क्यों है। कभी तू सोची मेरा

0: कविता है तुम्हारी, कल्याम ना कर। बहुत बहुत
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दोबारा इस कड़ी अपने छाबड़ा साहब को दोबारा निवेदन करेगा कि आप एक और कविता पेश करूं सुंदर लाल जी छाबड़ा
0: जी। हूं मैं तुम जी कविता सुना पाया हूं। कविता का शीर्षक है हो मैं ना लिख सा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिख सा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिख सा। वत सोचिया है ना लिख सा ते क्या करे सा। वत सोचिया है ना लिख सा ते क्या करे सा। गल्लां जो कीतियां हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। गल्लां जो कीतियां हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। मैं ते तू तू ते मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। कभी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताई कीती है। कभी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताए कीती है। ता माए पानी दी बुक्का भर तेड़े ते पाती है। दमाए पानी दी बुक्का भर तेड़े ते पाती है। खेत मुनेरा ते बैके खेत मुनेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। खेत मुनेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेनी है ते हेक सिलाई मेडी
2: है।
0: खेत मुनेरा ते बैके सपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेनी है ते हेक सिलाई मेडी है।
3: क्या बात।
0: ओ सोना सोना बाल है अपना ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। तू ते मैं ते तू तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिलदे हासे। तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिलदे हासे। ते हुण कित्थां गई ओ तेरी खिल ते हुण कित्थां गई ओ खिल ओ झप्पी ओ सपने ते ओ तेरी सिलाई। ते कित्थां गई हो ओ तेरी खिल ओ झप्पी ओ सपने ओ तेरी सिलाई। मैं बैके हुआ मुंडेरा ते मैं बैके हुआ मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी सोचदा हां। मैं बैके हूं मुंडेरा ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी ते सोचदा हां हूं मैं।

0: ना लिख सा, हूँ मैं ना लिख सा, हूँ सुंदर ना लिख सी, हूँ सुंदर ना लिख सी।
1: दरखास्त करता पी बहन जी सोमर दुआ जी को एक मोहब्बत की कविता उन्होंने आखी अस पेश कर निवेदन है
2: दो नज़मा पेश करें दी भैया
0: जी स्वागत
2: एक तरन्नम विच
0: जी
2: तिलस्मी खावा विच तेरे होमर दा एहसास रिया
1: बहुत बढ़िया
2: तिलस्मी खावा विच तेरे होमर दा एहसास रिया मैं हर बारी अपना होकर भी अपना ना रिया मैं हर बारी अपना होकर भी अपना ना रिया मेरी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मेरी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मैं सब दे विच भी तन्हा ही रिया
0: क्या बात
2: मैं सब दे विच तन्हा ही रिया हिक कुर्सी ता कुछ किताबा हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे एक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे कुछ नाल चाह दी चुस्कियां दा वी रिया गुमा हाई शजर को मेडे होमर दा गुमा हाई शजर को मेडे होमर दा मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया हवामा दी तस्वीर कैनी होंदी
0: सही
2: हवामा दी तस्वीर कैनी होंदी उस दा वजूद हर सांसा विच दिखया मेरी बेबाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मैं सब दे विच भी तन्हा ही रिया मैं सब दे विच तन्हा ही रिया
0: बहु खूब जी बहु खूब हवामा दा कोई तस्वीर नहीं होंदी क्या बात
1: बहुत
2: लेकिन हर सांसा विच
0: एहसास रहना ही पैंदा
1: है बहुत वधिया जी
0: बहुत वधिया
1: अगली तुहाडी
2: एक तरन्नम विच मोहब्बत
0: जी
2: तसागिए हो नजर विच साडे

ਇਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚਟ ਚਟ ਜੀਵੇ ਇਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚਟ ਚਟ ਜੀਵੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨ

देश पंजाब मजलिस लेके आज थोड़ी सेवा च एक बार फिर आशा हाजिर आज देश मजलिस च थोड़े लिए सिलसिले वार प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। हुन तो थोड़ी देर बाद आज दी गल होगी, आज दी गल तो फौरन बाद कथा लोक सिलसिला पेश किया जाएगा। कथा लोक तो बाद सरकार वालों चलाए जा रहे घट गिनती की भलाई लिए प्रधानमंत्री का नवा 15 अनुखाती प्रोग्राम है। इस तहत एक विस्तारित विश्लेषण पेश किया जाएगा। इस तो बाद तुहाड़ा फरमाशी तांदा प्रोग्राम नजराना थोड़ी नजर किया जाएगा। तो देश पंजाब मजलिस का आखिरी सिलसिला तमन्ना थोड़ी नजर करांगे 6:25।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
0: जी, मैं जीवन ज्योत, ज्योत कहते वैसे सारे, मैं फाइन आर्ट्स डिप्लोमा
1: जी। अच्छा ठीक है।
2: मम्मी उन्होंने गल तो पूरी करन दियो जी, फाइन आर्ट्स तुसी
0: डिप्लोमा कीता जी।
2: दैट्स ग्रेट जी। मेरा नाम कविता है
0: जी, पहचानता।
2: ए मेरे मम्मी ने मेरे बारे बहुत फिक्र करते रहते ने।
1: कम ऑन।
2: वैसे मेरा सब कुछ यही ने, मेरे टीचर भी, मेरे हेल्पर भी। वैसे तुसी बुरा ना मनना इन्हां दी गल
0: दा जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: हां जी जरूर।
0: बहुत सुरीले हो तुसी।
2: अच्छा तुसी सुनिया मैनू
0: जी? अक्सर अक्सर सुनदा। बहुत वड्डा फैन है तुहाडा। तुहानू किते जाण दी जल्दी तां नहीं?
2: नहीं नहीं, मैनू कोई जल्दी नहीं।
1: कविता आपा बेटा
2: मम्मी नू होती है, क्या काम करना है, ओ काम करना है, इत्थे जाना है, उत्थे जाना है। वैसे भी मैं जल्दी करके करना भी की है।
1: जो तेरा दिल कर रहा है बेटा, थके तो बैठ जाने हां।
2: जी मम्मा, वैसे थानू कोई जल्दी ते नहीं ना कि ते मैं थोड़ा वक्त
0: चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो थोड़े नाल मिल के, एक्चुअली कविता जी मैंने म्यूजिक नाल दीवानगी दी हद तक, मैं पागलपन दी हद तक तैयार है। पर मैं आप पता की करता, पेंटिंग, स्केचिंग, लैंडस्केप्स, ऐसा ना कुछ।
2: अच्छा तो मतलब तुसी भी कलाकार हो? काश मैं तो फाइन आर्ट देख सकती।
0: कविता जी प्लीज
2: चलो छोड़ो। हाँ बैठते हैं, लेट्स हैव कॉफी। कविता इधर आ बेटा तू। हाँ ठीक है। हाँ जी मम्मा, थैंक यू। की नाम दसिया तुसी अपना?
0: ज्योत।
2: हाँ ज्योत। ज्योत जी थोड़ी गल सुन के मेनू इंज लग्या कि जिवें मेरी अखा ना होण दा थोड़ा नुकसान होया।
0: की मतलब? मैं समझ नहीं।
2: देखो ना तुसी अपनी पेंटिंग, स्केचेस, लैंडस्केप दिखांदी ते मैं तारीफ कर दी। कदरदान तो तुसी गवाह ही लिया। हरे कलाकार तारीफ तो भुखा हुंदा है ना मामा?
0: बिल्कुल सही किया तुसी। तारीफ की इच्छा इंसान की वड्डी कमजोरी हुंदी। मेरे तो खास करके।
1: कविता दी परफॉर्मेंस तो बाद जो तारीफ ते तारियां दा शोर उच्चा हुंदा है ना, तो मैं ते चेहरे ते एक अजीब चमक देखदी हां। बहुत ही सोहनी।
2: पर किन्नी कमाल दी गल है ना मामा, मैं उस वक्त शीशे च अपनी चेहरे की चमक देख नहीं सकती।
3: एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर प्लीज, थिंक ऑफिस प्लीज।
0: श्योर। वैसे आंटी डॉक्टर ने की किया?
1: डॉक्टर्स तो पूरी गारंटी देंदे ने बेटा, पर साड़ी सोसाइटी च हाई डोनेशन का जज्बा ही नहीं है लोगों च।
0: एक्चुअली आंटी मुझे लगता है कि साडे लोग बहुत वहमी ने, इस करके ये गल को ज्यादा जोर नहीं पड़ सके।
2: तुसी सही कह रहे हो ज्योत जी, असी लोग तो बस पर लोग सुधारण पे ज्यादा जोर देने हैं। ये वाला लोग भावे जिन्ना मर्जी खराब चल रहे हो।
1: देखो ना रोजाना किनिया मौत होंदिया ने, पर उन्हों का शरीर अग दी जां मिट्टी दी पेंट चढ़ जांदा है बस।
2: पर मम्मी आप जिहो जी हाँ ठीक आ, अपने स्वार्थ लिए किसी दानी सज्जन दे मरण दी अरदास करिए।
0: वैसे ऑपरेशन का खर्चा किन्ना कु होगा?
1: ऐही कोई लगभग।
2: पैसे दी चिंता तुसी ना करो, पैसा तो है, नहीं होएगा तो मिल जाएगा, पर असल मुद्दा तो सही डोनर मिलन दा है। डॉक्टर्स कई हैगे ने।

मैं किस कुमार चाचा मेरा वजन है ही नहीं, मैनू ये हवा दे चौंके किस पास ले जा रहे ने, अजीब जी हालत है। कविता, हाँ कविता, एक सुरीली कविता जो सब मंत्र मुगत कर देंदी सी। आप रंगां दे पिन भेद ते आप आपदे रंगां नूं वेख ना सकदे, पता नहीं मैं उहनूं चंगा लगा या नहीं, पर उह मैनूं बहुत चंगी लगी। उस मम्मी दे दिल च वी मेरे प्रति विश्वास जिहा पैदा हो गया। उह खिंचदी नहीं सी, सगों मेरे नाल लोकां नूं जागृत करन च साथ दिंदी। असीं कई लोकां को जाणदे मरन तों बाद उहनां दे ऑर्गन डोनेशन दी गल करदे, उहनूं प्रेरदे, कई मन जाते, कोई बुरा जा मूह बना लेंगे, कई लगता कि असं उन्होंने मरण की तोहफा मांग रहे हैं, पर कई पॉजिटिव सोचते कहते साड़िया अखा किडनीज साडा दिल साढ़े मरण तो बाद भी जिंदा रहेगा। इस दौरान मैं कविता कई डॉक्टर्स में दिखाया, पर कविता किसी भी कीमत पर अखा मुल खरीदने तैयार ना हुई। उसके कोई दबाव नहीं पाना चाहता, शायद कोई दबाव पा ही नहीं सकता।

0: जाग रही है बेटा?
1: हाँ मम्मा, जाग ही रही हूँ। मम्मा फोन देखियो किधर, देखो जो जोधा हुआ है ना, क्या दिन हो गई है।
0: अच्छा कह रही। हेलो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी हाँ जी जी कदो हुई अद्धी रात नू। ठीक है ठीक है कोई गल नहीं, असी हुणे आए। जी हाँ असी हुणे आए।
1: की होया मम्मा?
0: की कहंदे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहंदे कि कोई फ्रेश केस आया है, चल जल्दी कर आपां हुणे जाना है, छेती उठ मैं तैयारी कर ला।
1: मम्मा आज जोत ने चंगा नहीं किया, मैं एवं ही हसते हसते उदे तो बर्थडे गिफ्ट की फरमाइश की कीती, वो ऐसा दौड़िया कि मुड़ के ही नहीं आया, ना कोई फोन किया। आप भी पता नहीं कितने है, आ जाए सही हूं, मैं भी नहीं बोलना उदे नाल।
0: ओहो बेटा बेगाने बेगाने ही होंगे ने, तू कितनी बार तो समझाया, तो छड़ पड़ा नहीं तो ना सही, उठ जल्दी कर आप चलिए देर हो रही है।
1: जी मम्मा।

0: Congratulations, Dr. Sharma. You are a miracle. तुसी बड़ा खुदा का करिश्मा हो बस।
1: जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नरेश। आज मैं पेशेंट की पट्टी खुलवाई उसको कंप्लीट विजन मिलते ही मैं थोड़े वाल दौड़िया।
0: रियली? अच्छा डॉक्टर साहब मैं सुनिया वो पेशेंट गांधी बहुत सुना है
1: पर डॉक्टर उस पेशेंट नु चुप रहने की इंस्ट्रक्शन है।
0: ओ नो नो
1: नो फरमाइश डॉक्टर। पर उस पेशेंट दी अपनी फरमाइश बड़ी कमाल दी सी।
0: अच्छा
1: अखा दी रोशनी वापस आने तो बाद वो कोई स्केचेस कोई लैंडस्केप कोई पेंटिंग्स देखना चाहती।
0: ओहो डैम इट ए इहो जे पेशेंट जड़े ने ना वो अक्सर सुखी हो जाते हैं।

मेरे बोलो

0: ちょっかいちょっかいちょっかいママどうちょっかいちょっかいちょっかいママどうママちょっかいしゃべって
1: पेंटिंग्स च रंग भर रही है तो मैं पूरी तसल्ली बना जा रहा हूं।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन राही सहायता। इस फाउंडेशन राही विशेष तौर दे वित्तीय रूप विच कमजोर परिवारां दीआं लड़कियां दी सिख्या नूं उत्साहित करन लई बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप अते विद्यक संस्थावां दे बुनियादी ढांचे नूं सुधारन लई ग्रांटां दित्तियां जांदियां ने। आर्थिक गतिविधियां अते रोजगार यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अते एम्पलॉयमेंट गरीबां लई स्वै रोजगार अते दिहाड़ी रोजगार दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अते शहरी आजीविका मिशन वर्गियां योजनावां विच घट गिणती भाईचारियां दे गरीब लोकां लई फंडां दा इक निश्चित हिस्सा रख्या जांदा है। इस नाल पेंडू अते शहरी खेतरां दे गरीब परिवारां नूं स्वय सहायता समूह बनाउण अते रोजगार दे नवे साधन लब्भण विच मदद मिलदी है। तकनीकी सिखलाई राही हुनर विकास घट गिनती नौजवानां नूं रोजगार योग बनाउण लई देश दे पछड़े इलाकियां विच नवे उद्योगिक सिखलाई संस्थान अते पॉलीटेक्निक खोले जांदे ने। इस तों इलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अते सीखो और कमाओ वर्गे प्रोग्रामां तहत नौजवानां नूं आधुनिक उद्योगां दी लोड़ अनुसार हुनर सिखलाई दित्ती जांदी है। अगे आ जांदा जी आर्थिक गतिविधियां लई बैंक कर्जा। राष्ट्रीय घट गिनती विकास अते वित्त निगम अते व्यापारक बैंकां दी प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग तहत घट गिनतियां दे कारोबारियां दस्तकारां अते छोटे व्यापारियां नूं सस्तियां व्याज दरां ते कर्जे मुहैया करवाए जांदे ने। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राही भी छोटे कारोबार शुरू करन लई वित्तीय सहायता दित्ती जांदी है। दसवां नुक्ता है जी राज अते केंद्री सरकारी नौकरियां विच भर्ती। केंद्र अते राज सरकारां दे वख-वख विभागां जनतक खेतर दे अदारियां बैंकां अते रेलवे आदि दीआं भर्तियां विच घट गिणती उम्मीदवारां दी हिस्सेदारी वधाउण लई विशेष यतन कीते जांदे ने। इस लई दो मुकाबले दीआं परीख्यावां जिवें UPSC SSC आदि दी तैयारी वास्ते मुफ्त कोचिंग स्कीमां दी वी चलाईआं जांदीआं ने। जी जीवन स्थितियां विच सुधार। ग्यारवां नुक्ता ग्रामीण रिहायशी योजना विच बराबर हिस्सा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण PMAYG दे तहत गरीबी रेखा तों हेठां रह रहे बेघरे परिवारां नूं पक्के मकान बनाउण लई सहायता दित्ती जांदी है। इस योजना दे कुल टीचां विचों इक निश्चित फीसदी पेंडू घट गिणती गरीबां लई रखवा रख्या जांदा है। बारवां नुक्ता घट गिणती वसो वाले स्लम खेतरां दा विकास। शहरी खेतरां विच जिथे घट गिणती भाईचारियां दी आबादी झुग्गी झोंपड़ियां स्लम्स विच रहिंदी है उत्थे बुनियादी सहूलतां जिवें कि पक्कियां सड़कां स्ट्रीट लाइटां कम्यूनिटी हॉल अते सफाई दे प्रबंधां नूं बेहतर बनाउण लई विशेष शहरी विकास फंड खर्च कीते जांदे ने। तेरा नंबर ते नुक्ता आउंदा जी साफ पीण वाला पानी अते सैनिटेशन। जल जीवन मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम दे तहत घट गिणतियां दी बहुगिणती वाले पिंडां अते कस्बियां विच हर घर तक पाइप राही साफ पीण वाला पानी पहुंचाउणा सरकार दी विशेष तरजीह हुंदी है। संप्रदायिक सद्भावना अते सुरक्षा। संप्रदायिक घटनावां दी रोकथाम देश विच किसी भी थां ते संप्रदायिक तणा जां दंगियां नूं रोकण लई जिला प्रशासन अते पुलिस नूं विशेष तौर ते जवाबदेह बनाया जांदा है। संवेदनशील इलाकियां दी निगरानी पुलिस फोर्स दा आधुनिकीकरण अते वख-वख भाईचारियां विचाले अमन कमेटियां दा गठन इस नुक्ते दा अहम हिस्सा ने। आखरी अते पंद्रवां नुक्ता संप्रदायिक अपराधां लई सजा अते पीड़तां दा मुड़ वसीबा। जे देश विच कोई संप्रदायिक हिंसा हुंदी है तां अपराधियां नूं सख्त सजावां दवाउण लई फास्ट ट्रैक अदालतां राही मुकदमे चलाउण दी व्यवस्था है। इस दे नाल ही दंगा पीड़ित परिवारां नूं तुरंत वित्तीय सहायता डॉक्टरी सहूलतां अते उनां दे मुड़ वसीबे लई ढुकवे कदम चुके जांदे ने। प्रोग्राम दी निगरानी अते लागू करन दी गल किसी भी वड्डे प्रोग्राम दी सफलता उस दे लागू करन ते निर्भर करदी है। इस 15 नुकाती प्रोग्राम दी निगरानी लई तीन

प्रणाली बनाई गई है। पहली है केंद्रीय पद्धर, राज पद्धर, तीसरी जिला पद्धर। केंद्र पद्धर विच घट गिणती मामलिया दे मंत्रालय की अगुवाई हेठ एक उच्च पद्धरी कमेटी समय समय से वख वख मंत्रालय तो रिपोर्टा लेंदी है ते प्रगति की समीक्षा करती है। मुख सकत्र दी प्रधानगी हेठ राज पद्धरी कमेटी हर सूबे विच इस योजना की प्रगति नूं वेखदी है। जिला पद्धर की गल करिए जिला मजिस्ट्रेट यूनियन डीएम जां डिप्टी कमिश्नर डीसी की अगवाई हेठ जिला पद्धरी कमेटी ए यकीनी बनाउंदी है कि जमीनी पद्धर ते लोकां नूं स्कीमां दा लाभ मिल रहा है जां नहीं। हाल ही दे दो सालां विच सरकार ने सैचुरेशन अप्रोच अपनाई है जिसका मतलब है बिना किसी भेदभाव दे हर योग लाभपात्री तक सरकारी योजनावां दा लाभ 100% पहुंचाया जावे। इस ही घट गिणतियां दी भलाई लई प्रधानमंत्री दा नवा पद्धरानुकाती प्रोग्राम। समें हुण अगे चलदे हां, पेश है तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम नजराना।

और सतिंदर सरताज की आवाज है जो बिल्कुल हर गीत दे बोल दे नाल रूह तक पहुंच जाती है ते साडे अपने रूह की आवाज बन जाती है। ते असी चाहते हैं कि रूहां वाला गीत असी अक्सर बहुत वारी सुनते हैं। इन्हां दी आवाज च एक होर गीत है सोहना जिहा सिफत, ओह सानू सुना दिते जाए। सो लो जी ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਤਿੰਜਲ ਭਾਟੀਆ, ਨਵਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਪੱਪੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

0: सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
1: Hello and a very warm welcome.

0: से 190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है, और यही प्रेशर उनको यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज्यादा प्रेशर तेज खेलने के चक्कर में आप विकेट गंवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है। अगर वो वेस्टइंडीज जीतते मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। यही मुझे लग रहा था प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते।
1: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी, विथ होनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फिबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहम, अनबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन। आशा कैसे देखती है ऑस्ट्रेलियन साइड को?
2: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस्ड टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए। पर अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी। अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज, उसके ऊपर डी डॉटिंग के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा, और जो कैप्टन है उनको तो बहुत मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदार है, अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो।
3: राकेश, सिंस आशा जस्ट नाउ मेंशन दैट वेस्ट इंडीज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 ऑफ द मेन प्लेयर्स, 1 कैप्टन हैरी मैथ्यूज, 2nd वी हैव डीएंड्रा डॉटन, एंड 3rd ऑफकोर्स वी हैव स्टेफनी टेलर। Majority of them have not even been able to perform throughout the season pretty well, but they are still the big names. How much of the load will be resting on their shoulders today to shine and prove nothing? Prove something for the team, definitely.
4: It becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you. So, and they have only 2 individuals of cross 100. So, there are only 2 guys who have scored over 100 runs. One of them happens to cross 150 as well. When you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor, so this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they come very hard at you. Very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game and they have an off day. History has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. And that's why they have such a fantastic record. 6 times they have already had 2 hat-tricks of wickets in the same tournament or in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that influenced the Aussies kepa was the fact that the way they beat India. They chased down a pretty challenging score, and with that, so it seems to be quite influenced by that decision.
1: जी बिल्कुल, और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, तो आप हमें फोन कीजिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342108585। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने 5 मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस। वहीं वेस्ट इंडीज ने आशा पहले 3 मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम 2 मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो आ रहे हैं, तो 2 लॉसेस के बाद यहां आ रहे हैं। कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे?
2: मुझे जहां तक लगता है उनको ऐसे बोलूं तो अपनी उनको कहीं के लिए उनको कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैंपियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज ने एक बार इसको ले रखा है चैंपियनशिप को, तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है, अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे।
3: Yes, Amit, I think we have a caller with us on the line. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? Swagat hai aapka hamare karyakram mein. Bataye kya puchna chahte hain?
0: Namaskar.
4: Namaskar ji.
3: Hamare sare panelists aapko namaskar kar rahe hain. Bataye kya puchna chahte hain aaj aap call karne ke liye?
1: अच्छा शुक्रिया, कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
0: देखिए स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है, जिस हिसाब से क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है, 20 ओवर में आपको पता कुछ भी, लेकिन ये जो अब वेस्टइंडीज के लिए टारगेट है

0: वेस्ट इंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है तो 150 170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला तो 180 रन का टारगेट होगा। लेकिन देखिए सेमीफाइनल ही होते हैं, आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेशर गेम है आपको पता एक गलती और आप टूर्नामेंट से
1: बाहर। जी दोनों ही सेमीफाइनल कैनिंगटन ओवल में होने हैं और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में।
0: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है
1: जी,
0: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्टइंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था, तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी दोनों सेमीफाइनल में हारे।
1: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है यहां पर कितना स्कोर बन सकता है वेस्टइंडीज का?
2: मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है मैं उसको वेस्टइंडीज की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है, ऑन पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना, अगर वो लोग निशाने पर हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ, उसको होना चाहिए 180 अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन फैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए मैं आईपीएल के यार्डस्टिक से या मेन्स क्रिकेट के यार्डस्टिक से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। वुमेन्स क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ लेट्स बी फेयर,
1: प्रैग्मैटिक क्रिकेट की अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160।
3: राइट, और एक श्रोता हमारे साथ हमें थे।
4: हेलो
5: हेलो,
1: नमस्कार जी।
5: नमस्कार सर,
1: अपना नाम बताइए।
5: हम अमिषेक कुमार बोल रहे हैं नालंदा जिला बिहार से।
1: जी क्या पूछना चाहेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है।
5: जी बोल रही सर, 140-145 के बीच का टारगेट मिलेगा पर ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीतने के लिए। सर
1: फिर जीतेगा कौन?
5: ऑस्ट्रेलिया जीतेगा सर, एक तरफा मैच चला जाएगा सर, इतना मजबूत टीम है सर वो।
1: आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती?
5: अच्छी लगती तो सर दो मैच हार गया हुआ अभी इंग्लैंड से और आयरलैंड टीम से हुआ, छोटा छोटा फॉर्मेट में सर टारेटर बैटिंग नहीं कर पाया, भारत हारा सर, धीमा बैटिंग करने की वजह भारत हार गया।
1: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए।
3: जी काफी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में।
1: तो आशा को लगता है वुमेन्स क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब।
3: हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जवान खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है कोई भी वर्ल्ड कप हो रहा है, बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रही है, सबके नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
1: मैं बता दूँ 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन आशा रावत।
3: थैंक यू आपके पास आते हैं रवि क्विकली, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं काफी स्ट्रांग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज की मैंने बात करी और सीजन देखिए टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर, खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्टइंडीज की बोलिंग की स्ट्रेंथ रही उनकी स्पिन है, 71.4 ओवर्स उन्होंने सिर्फ स्पिन के पलवाए हैं इकलौती ऐसी टीम, और सबसे ज्यादा विकेट्स भी जो वेस्टइंडीज ने ली है सीजन के अंदर वो स्पिनर्स की उन्होंने लिए 22 विकेट्स। क्या आपको लगता है आज वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ कमाल कर पाएंगे?
0: पॉजिटिव रहना चाहिए और खासकर 20 ओवर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने अभी देखा आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा रहा है, 20 ओवर्स में दो प्लेयर सही होते हैं, दो प्लेयर अगर 50-60 रन बना देते हैं तो मैच वो 150 रन तक टारगेट अपने आप पहुंच जाता है। तो यहां पे एक डे की बात होती है, देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, अच्छी फॉर्म में चल रही है, नो डाउट फेवरेट्स हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरा तक होते भी आए।
1: जी थोड़ा बोलिंग बताइए ऑस्ट्रेलिया की, हमें सोफी मोलिनी को पता है उन्होंने 8 विकेट चटकाई है, और जैसे किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, निकोला कैरी, किस तरह की वैरायटी है इनके पास?
2: बहुत वैरायटी है, देखिए अगर आपको पेस चाहिए, स्विंग बोलिंग है आपके पास, स्पिन ऑप्शन है आपके पास, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में आपको बहुत कुछ लेना चाहिए। अगर जिस दिन एक बॉलर चल गया बैटिंग में, हम कहते हैं दो बोलर आपको एक टीम बहुत है,
1: पर अलाना किंग को अंतिम 11 में ना रखना, ताइला मेघरा
2: इज बिकॉज आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आप उसको छेड़ेंगे नहीं। जिस टीम ने इंडिया को हराया और आप सडनली आप किसी को विदाउट रीजन अगर आप किसी को ड्रॉप करते तो सोचिए मैं यहीं पे हम दोनों अभी कुछ और बात कर रहे होते कि क्या जरूरत थी। देखिए आप रिपेयर तब करते हैं जब डैमेज हुआ हो, जब डैमेज नहीं हुआ हो तो आप अपने घर को रिपेयर करने नहीं जाते, तो ये उनका घर अच्छा एसेट है सब कुछ, तो आप उसमें क्यों चेंजेस लाएंगे? पॉपुलर डिमांड पे तो आप यू नो चेंजेस नहीं करते हैं।
3: पॉइंट 12 मिनट आशा मैं आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगी कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑलरेडी हेवी फेवरेट्स के तौर पर उतर रही है तो सेमीफाइनल के अंदर, अगर वेस्ट इंडीज उनको हराना चाहता है आज तो किस तरह की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज वेस्ट इंडीज को अपनानी चाहिए, ना सिर्फ अपनी बैटिंग में बल्कि बाद में जब वो अपने स्कोर को डिपेंड करने के लिए उतरेंगे भी?
6: सबसे पहले तो

0: शेमन कैपेबल है, डी डॉटिन है और मेन जो कैप्टन है, तो इन बहुत दामोदार आज मतलब इनको करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो आप देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है।
1: तो अगर राकेश हम इस वेन्यू की बात करें, थोड़ा आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए कैनिंगटन ओवल के बारे में, और यहाँ जो दर्शक आ जाएंगे वहां पर मैच देखने, वो इंग्लैंड तो सेकंड सेमीफाइनल में है, आज किसको सपोर्ट कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करेंगे,
2: ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी होम टीम खेल रही है, होम टीम का फाइनल मुकाबला स्ट्रॉन्गर टीम से खेलना, वीकर ऑफ द टू टीम,
1: सो दे वुड सपोर्ट वेस्ट इंडीज।
2: एडवांटेज है फिर ये वेस्ट इंडीज के पास क्राउड सपोर्ट चाहे जो भी हो, उनको एक चीज करनी है, अगर आज वो रियली जीतना है तो मेरे ख्याल से उनका जो माइंडसेट होगा, उनका माइंडसेट ये हो सकता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अटैकिंग में खेलना पड़ेगा, आप डिफेंसिव मोड पर नहीं जा सकते। उन्होंने इंडिया का मैच देखा, इंडिया का डिफेंसिव माइंडसेट ने उस दिन इंडिया को मैच हारा।
1: आपको लगता है ऋषभ घोष को पहले खेलने के लिए चाहिए था इंडिया मैच?
2: अब वो तो इफ सिंपल्स वाली बात है, ऋषभ घोष ने जब ऊपर आके खेले हैं पहले दूसरे मैच में, और आपको याद है पाकिस्तान जो खेले हैं कमाल खेले हैं, लेकिन उसके बाद हमने वो रूप उनका देखा नहीं, तो वो तो एक दिन की बात है कि वो होता है कि नहीं। लेकिन यहां अगर हम वेस्टइंडीज की बात कर रहे हैं, उनको पहली बॉल से एक तो अटैक करना है, कैचेस पकड़ने, वुमेन्स क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ट्रैकिंग में जितना पकड़ते हैं उतना वो फील्ड में नहीं पकड़ते।
1: इंडिया में क्रिकेट बहुत छोड़े हैं,
2: मैं वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जो पकड़ गया, जैसे पाकिस्तान की अगर आप फील्डिंग देखते हैं कैचिंग सुपर थी उनकी, कुछ नहीं छोड़ा उस दिन उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया। वुमेन्स क्रिकेट इज वेरी वेरी इनकन्सिस्टेंट, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया करे, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री से अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और जो प्रेजेंट 11 लोग जो खेल रहे हैं वो एक उस मेंटल स्पेस में है, तो वो तैयार है, इंडिया को हरा के आ रहे हैं और एक उस टीम से खेले जो अपने पिछले दो मैच हारी हुई है,
0: राइट एंड उस इंडिया को, जहां पर हम बता दें अपने श्रोताओं को भी कि उस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन बोलर्स आउट देयर, वर एबल टू एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट द ऑस्ट्रेलियंस टू नॉट वेरी फैमिलियर स्पेस ऑन गोइंग ऑल आउट इन द पावर प्ले। इस एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, हमें बताया जाए सर, श्रोता जोड़े में सवाल को भी आगे ले जाऊंगी, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग मैडम, अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ मैडम।
0: अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताए क्या पूछना चाहते हैं?
3: पहले तो आपको टीम मोटिवेशन प्रसारण लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारी पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हमारे इतने लॉयल श्रोता है और आप हमारी इस बात के लिए सराहना कर रहे हैं, शुक्रिया। बताए क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम को ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आज के मैच में।
0: जी, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। वेल, द वेस्ट इंडियन टीम नीड्स टू बी माइंडफुल एंड केयरफुल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम। रवि आपके पास आती हूँ। राकेश उस समय एक पॉइंट रख रहे थे, विच वॉज अ गुड पॉइंट, कि वेस्ट इंडीज को अगर आज जीतना है तो अटैक मोड पे खेलना पड़ेगा। जब हम अटैक मोड की यहाँ पर बात करते हैं, वेल 20 ओवर गेम है, मैं आपका नजरिया या पर्सपेक्टिव चाहूंगी, क्योंकि अटैक मोड पे खेलने में कई बार होता है कि विकेट गिरते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आप पार्टनरशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो ऑल आउट, मारते रहना है, मारते मारते भलाई आपके विकेट गिर जाए। कौन सी रणनीति को आप सपोर्ट करते हैं जब हम बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट के एंगल से?
4: देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली बॉल से मारने चलते हैं, 20 ओवर तक मारते चले जाएं, ये क्रिकेट कभी नहीं होती। और पावर प्ले इंडिया अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप ये देखिए जब 170 रन बनाए, आज हमें लग रहा है कि वो रन कम रहे आपको, लेकिन बता कि 9 ओवर में 100 रन बनाए, 9 ओवर में 100 रन, ये हर रोज नहीं बनते। 10 रन की एवरेज से ऊपर चेस कर रहे थे वो लोग, 10 रन की एवरेज तो कहीं भी चेस करना मुश्किल होता, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट में डिपेंड करता है आपकी बॉलिंग कैसी है, आपने जो वीकनेस थी आपकी बॉलिंग में थी, आपकी बॉलर सेट नहीं थी। अगर बॉलिंग ठीक ठाक करेंगे 170 रन कम नहीं होते हैं चेस करने के लिए, मतलब पहले उनके 4-5 विकेट कैसे गिरे थे, और खासकर दोनों जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, इन वजह से मैच जीत गए। बाकी ये है कि आपको 6 ओवर तक आपको डेफिनेट होता है कि आप 40-50 रन का टारगेट रखिए, विकेट लूज नहीं करिए, उसके बाद अगले 6-7 ओवर में फिर आप 60-70 रन का टारगेट, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप पहले 2-3 विकेट निकल गए तो आपको जो 180 रन टारगेट वो 100 रन का टारगेट
1: होगा। जैसे हमने देखा इंडिया मैच में जिनीमा खेल रही थी, लेकिन वो रिटायर्ड हट हुई ताकि रिक्शा आए, क्या आपको लगता है वेस्ट इंडीज जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव खेलने से नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट है, क्या हम देख सकते हैं कि भले टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी धीमा खेल रहा है तो कप्तान कहेगा कि आप आ जाइए और दूसरे व्यक्ति को भेज दे?
2: देखिए, वो डिपेंड करता है उस वक्त टीम के लिए थिंक टाइम पर वो क्या सोच रही है, ये कोई ये आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप उसको एक्सरसाइज करें ये जरूरी नहीं है।

0: लेकिन जब मैं कहता हूँ अटैकिंग दिस थिंग में ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद करके बल्ला घुमाना है, मेरा मतलब ये है कि आपको सिंक, आपको डॉट बॉल सिंक छोड़नी है, डॉट बॉल क्राइम है, आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, एक ही बल्लेबाज को अटैक करने का मौका ना दें आप, उसको बॉलर को प्लान करने ना दें आप चेंज करते रहिए, वो होता है कि आप उनको सेटल नहीं होने दे रहे, ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल्ड रखेंगे आप शुरू से, यू हैव टू कीप देम यू नो इन सॉर्ट ऑफ इन नॉट्स में आपको बांध के रखना पड़ेगा उनको कि ये हो क्या रहा है।
1: अच्छा कैसे क्रिकेट बदला है, अब राकेश आपको एक डॉट बॉल खेलने से भी मना कर रहे हैं।
0: नहीं मैंने कहा डॉट बॉल कम से कम,
2: ये टी ट्वेंटी आ गई ना, तब से तो डॉट बॉल मतलब जिसने डॉट बॉल खेली क्राइम है,
0: नहीं पता हूँ
2: टेस्ट स्ट्राइक रेट डॉट बॉल बहुत हैवी फोकस पाया जाते हैं स्ट्राइक रेट भी खासतौर से
1: सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है, एक डॉट बॉल पे फील्ड लगता है।
2: गुड पॉइंट अमिन रेलवे, इस बात को जारी रखते हैं आगे आशा, बिकॉज अच्छी बात होती है, डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के अगर हम टी ट्वेंटी देखते हैं वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है फर्स्ट बॉल्स हिट करते हैं, नया प्लेयर्स अभिषेक शर्मा वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट बॉल्स हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं, मेल क्रिकेट की बात करें, फीमेल की अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स है, दूसरी तरफ रवि कहते हैं कि फर्स्ट बॉल की हिटिंग अटैक विकेट अटैक मोड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफकोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह की अप्रोच से टी ट्वेंटी को अप्रोच करें।
3: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं, जो भी वो डिपेंड तो सिचुएशन में करते हैं सबसे पहले, फिर ऑब्वियसली टी ट्वेंटी खेल रहे हैं तो आपको लॉफ्ट के लिए सब कुछ चीज करनी ही पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ता है आपका गेम, कब आपको अगर आपको लग रहा है कि सिंगल से बन रहे हैं रन तो आप सिंगल करेंगे, जब आपको लग रहा है कि नहीं है
1: आशा आज ऐसा नहीं है कि इंडियन एंगल नहीं है, अभी दोनों टीमें बाहर आ रही है, एम्पायर आ रहे हैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव में है, वहां पर हमारे जो अंपायर हैं मैच रेफरी,
3: अच्छा वो
2: राइट
3: ये हमारे साथ हमारी सीनियर प्लेयर रही है रेलवे से खेली जो मैं तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर है,
1: थोड़ा उनके बारे में बताइए,
3: ये लक्ष्मी ये बहुत अच्छी स्विंग में बॉल थी, बहुत अच्छा बॉल करते थे, मतलब उनके साथ मैंने ज्यादा नहीं खेला है, पर जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा था तब उनके साथ मैंने एक इंटर रेलवे खेला है अपने नॉर्दर्न से और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में से,
1: राकेश पूरा एक इकोसिस्टम ग्रो करता है जब वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता है, खिलाड़ी के साथ साथ चाहे मैच ऑफिशियल्स हों सारे अवसर मिलते हैं,
0: बिल्कुल देखिए याद आ रहा था जब हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप वुमेन्स का 1997 में आई थिंक, मैं जिस हफ्ते टूर्नामेंट शुरू होना था उस टाइम उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन WCA उनके पास होटल बुक करने को या उनको एडवांस देने के पैसे नहीं थे, सो दे वेंट टू हीरो एंड उन्होंने कहा कि अंकल हमको कुछ तो पैसे दे दीजिए, तो पवन मंजाल उनके जो डैड हुआ करते थे उन्होंने कहा बेटा इनको कुछ पैसे दे दो, तो जो सेक्रेटरी वो थे उनको भी पता नहीं लगा क्या गया है, एक 50 लाख का चेक दे दिया गया था, अकाउंट बंद किया गया था, उनके बेटा पहले आप होटल बुक करो, एक वो दिन है और एक आज का दिन है, WPL आ गया, वुमेन्स क्रिकेट के वुमेन क्रिकेटर्स को वो पहचान रहे हैं, और ये जो चेंजेस मैंने देखे हैं मैंने एक जमाने से मैंने देखा है, यू नो शांता रंगास्वामी के टाइम पे जो हम सुना करते थे दाना एडिल जी, उसके बाद एक न्यू जनरेशन क्या है, यू नो 90s में अगर आप देखें लेट 90s में ज्योति देसाई कैप्टन, इंडियन टीम वॉज डूइंग वेल, एयर इंडिया की टीम अच्छी हुआ करती थी, ये सब अब आप देखिए आप लोकल टीम्स या स्टेट टीम भूल गए, अब आप WPL की टीम्स को याद रखिए, सो पूरा जैसे आपने कहा इकोसिस्टम चेंज हुआ है वो तब से हुआ है जब से BCCI आई और जब से जैसे आए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इक्वल पे, आई थिंक दैट वॉज ह्यूज मूव, उससे जो इंडियन क्रिकेटर्स को फायदा हुआ है उसका फायदा अपन अब मिला।
2: Right, and just to take this point forward, we're talking of ecosystem over here. The whole spirit of the game, that the visuals that are coming out from the stadium right now, well, surprisingly, and the most beautiful thing is, हमारे सारे listeners के लिए आपको बताएं कि सिर्फ Australian support नहीं आया है, huge amount of West Indian support भी आज देखने को मिला। रवि, क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि बहुत खूबसूरत टीम है जब आपके सामने एक ऐसी दिग्गज टीम हो जो हैवी फेवरेट्स हो, लेकिन सपोर्ट के नाम पे आज इतना ज्यादा वेस्ट इंडियन सपोर्ट और क्राउड टर्न आउट हुआ है टू सपोर्ट देयर फेवरेट्स ऑल्सो,
1: गेम को सपोर्ट करना भी चाहिए, अपनी टीम को सब सपोर्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें फेवरेट से खेल रहा है कोई भी खेल रहे हैं, आयरलैंड की टीम ने आपने देखा कैसे सब उनका आए और कैसे इंडिया को कैसे हरा के गए, कौन टीम है उनको सपोर्ट करना चाहिए और अब बाकी आप टीम देखते हैं कि मैच कैसा रिजल्ट
0: जी आशा, जब ये फ्लैग्स लेआउट करते हैं गूजबम्स आते हैं जब राजकान होता है तो
3: बहुत ज्यादा आते हैं,
0: क्या
3: फ्लैग्स मतलब ये बोल नहीं सकते, बयान नहीं होती ये चीजें, ये बस आपका जिस जज्बे से आप खेलते हैं ना इंडिया के लिए बस वही जज्बा रहता है।
1: आशा को जब इंडिया कैप मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ तब क्या याद है,

0: वो यादें क्या है ना कि उस समय मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा ऐसा चाव नहीं था कि मतलब क्या होता है, मतलब खेला रिप्रेजेंट करा, उसके बाद धीरे धीरे लगा यार किस मुकाम में हम, हमने इंडिया खेला है, उस समय ऐसा लगता था अच्छा खेला ठीक है गुड
1: जी। चलिए अंतिम सवाल आप सबसे राकेश, आज कितने रन बन सकते हैं वेस्ट इंडीज के और कौन जीत रहा है, आज क्या कुछ हो सकता है?
2: तो ऑलरेडी कह रहा है कि 150-160 मैक्सिमम, 8 रन एवन एवरेज में लेके चल रहा हूँ, एंड ऑस्ट्रेलिया
1: विल विन। रवि जी
3: लगता तो ऐसे ही है कि 140-150 बनाएंगे, अगर 180 तक बनाते हैं तो एक मैच अच्छा हो सकता है।
1: आशा जी
0: मेरा भी है 160-165 तो बनना ही चाहिए, अगर अच्छा एक मैच देखने को मिले।
1: और बीच वाला जो मैच है राकेश उसे हम कहते हैं फ्री हिट 20, आपको लगता है नोबॉल होंगे कुछ फ्री हिट्स भी मिलेंगे? जब फ्री हिट होती है तो बल्लेबाज क्या सोचता है, क्योंकि आप तो राइट हैंडेड टॉप बैटर है,
0: तो मुझे सब सोचते हैं ऑडियंस सोचते हैं वही बैटिंग नहीं सोचते।
1: उसमें स्टंप हो सकता है क्या फ्री हिट पे?
0: उसमें रन आउट होता है केवल,
1: स्टंप नहीं हो सकता, सिर्फ रन आउट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। पर आप क्या सोचते हैं कि छक्का ही मारे कोई भी बॉल आए?
0: नहीं मतलब उस बॉल में तो सब सिक्स मारने के सोचते हैं ना।
1: चलिए जब फ्री हिट 20 आएगा तो उसमें देखेंगे कितनी नो बॉल हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव आपका और रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। Ball by ball commentary. Let's go across to our commentary team for the live action.
4: Good evening. We have reached the business end of this World Cup. The semi-finals, much awaited action begins at the Oval. The former champions, Australia and West Indies, who had the 2016 win defeating Australia, but it's been Australia who've been champions for a very long time. So it's going to be an intense battle between these two sides. And this morning the temperature at the Oval, it's about 23 degrees Celsius, might reach up to about 27-28, but then when I look at that pitch, really made a statement that it could probably have a variable bounce. The spinners might have some kind of a role to play, and the top surface remains a bit greenish, but underneath that it's going to be a dry surface. And I must say that the team that wins the toss, it was almost a foregone conclusion that they will bowl first, and it's Australia bowling first on this particular ground. And just to say this, that when we look at the two sides here, the Australian team has gone completely unchanged, whereas the West Indies side had one change as far as the spinners are concerned. If you look at the Australian side for the moment right now, Beth Mooney, Georgia Wall, Lynchfield, Elsie Perry, the most experienced cricketer, will be looking forward to seeing her again here. And then Ashley Gardner, Georgia Wareham, Annabel Sutherland, Nicola Carey, Sophie Molyneux, the captain, Lucy Hamilton and Ken Garth. So this is the Australian team, and the West Indies team, if I look at, there's been one change. One of the spinners who was Ashwini Munisar has been replaced by...
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान

0: निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यह टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वीं सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित कलकवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिका और कोलार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला 9 बजे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान बहन भाइयों को राम राम। शाहिद भाई, देखिए विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफी परिवर्तन आया। अब वो समय नहीं रहा जब किसान भाई वही गिनी चुनी खाद्य फसलें लगाते थे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब सारी चीजें जो है ना अपडेटेड हो गई हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हो गई हैं, और बड़ी चीज है कि उनके साथ साथ पैनल योजनाएं भी बड़ी अद्यतन हो गई हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब किसान भाई अदल बदल कर नई नई फसलें लगा रहे हैं, साथ ही वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। और भाई अब कृषि ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया, यानी एग्री स्टार्टअप कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों के लिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है, और यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। और भाई देखिए सबसे बड़ी बात, इसका उपयोग कृषि उपकरणों, डेयरी, पोल्ट्री और खाद्य प्रसंस्करण में भी किया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो देखिए मुद्रा लोन के तहत लोन की श्रेणियां और राशियों की अगर बात करें तो इसे 3 श्रेणियों में इसको

0: बांटा गया। सिसु लोन की बात करें तो 50,000 तक का स्टार्टअप किसान है जो शुरुआती चरण है उसके लिए, और किशोर लोन जो 50,000 एक रुपए से ऊपर 5 लाख तक का जो व्यवसाय के विस्तार के लिए, और तरुण लोन की अगर बात करें तो 5 लाख से 10 लाख तक जो स्थापित हो चुके व्यवसाय के लिए यह योजना चलाई गई है। और देखिये खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, मसाले अचार बेकरी उत्पादन और पशुपालन और डेयरी की बात करते हैं, मुर्गी पालन मछली पालन मधुमक्खी पालन, और साथ ही देखिए भाई कृषि सेवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी किराए पर देना एग्री क्लिनिक आदि के लिए भी ये योजना लागू की गई है।
1: इतना नहीं समीर भाई, कृषि से जुड़ी और भी कोई कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, उससे जुड़ी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। और जो तीन श्रेणी आपने बताई, शिशु किशोर और जो है कि प्रौढ़ ना, तो उस श्रेणी में जो है कि आप प्रोजेक्ट के लिए इस मुद्रा योजना से जो है कि ले सकते हैं लोन।
0: और देखिए यदि मुद्रा लोन से आप लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भाई अगर जो कागजों की बात करें या कागजी कार्रवाई की बात करें तो देखिए पहचान पत्र का होना आवश्यक है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, साथ ही पते के परिणाम के लिए पिछले 3 महीने का बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट आपके होनी चाहिए। और साथ ही देखिए एग्री स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस यदि लागू हो तो वो भी होना चाहिए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवसाय के विस्तृत जानकारी लागत और लाभ का अनुमान आपको देना होगा, साथ ही जो पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको देनी होगी। तो यदि आप इस के तहत लोन लेना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो भाई ये सभी कार्रवाई आपको पूरी करनी पड़ेगी और बड़ी आसानी से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो ये तो रही भाई बात, और भी बातचीत भाइयों से करेंगे शाहिद भाई, लेकिन अब बात करते हैं मनोरंजन की, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिनेश गिरी के गाइस उपदेश से।

0: शायद भाई ये तो उपदेश सुना दे इस गिरी से। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफी परिवर्तन आया। पहले क्या था शायद भाई, किसानों को अक्सर मौसम की जानकारी, फसलों की कीमतों और विशेषज्ञों की सलाह जैसी बुनियादी जानकारी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और इतना ही नहीं,
1: बहुत दूर दराज तक कई बार यात्रा करनी पड़ती थी, लोगों से जानकारियां लेनी पड़ती थी। लेकिन अब तो सब
0: सबसे बड़ी बात जो है ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना पड़ता था। लेकिन किसान सुविधा नामक एक नया मोबाइल ऐप सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। और इस ऐप के द्वारा देखिए मौसम की जानकारी, यानी किसान भाई अपने वर्तमान दिन और आने वाले 5 दिनों तक के मौसम की पूर्वानुमान

0: देख सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ
0: बात करें मंडी भाव की तो देश भर की विभिन्न मंडियों में फसलों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कृषि सलाह की बात करें तो फसल की सुरक्षा और बेहतर जो उपजाऊ के लिए कृषि जो विशेषज्ञ हैं भाई उनकी सलाह और सुझाव ले सकते हैं। साथ ही देखिए भाई कृषि सलाह की बात करें तो फसल की सुरक्षा और जो बेहतर जो उत्पादन है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं देखिए सरकारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही हैं विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इस ऐप के द्वारा ले सकते हैं। और साथ ही देखिए आसपास मौजूदा खाद बीज कीटनाशक निकटतम मिट्टी प्रशिक्षण जो प्रयोगशालाओं और पशु चिकित्सालयों तक की जानकारी इस ऐप के द्वारा ली जा सकती है। और इस ऐप की शायद भाई एक खासियत और ये है कि स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
1: जी हाँ यही सबसे बड़ी चीज है। और एक बड़ी चीज जो रह गई भाई वो ये है कि हमारे जो पशुपालन से जुड़े हुए सीमांत किसान हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां इस ऐप पे मौजूद हैं।
0: बिल्कुल तो देखिए भाई इस ऐप की मदद से आप काफी जो फायदा उठा सकते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुभाष चंद्र लुसाना से सुन लेते हैं एक और उपदेश।

0: साहिद भाई, ये तो उपदेश सुना सुभाष चंद्र लुसाना से। और देखिए, अगर मौसम की बात करें तो भाई देखिए, आने वाले जो समय में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही हल्की बारिश या मध्य बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है। और भाई देखिये, जुलाई का महीना शुरू हो गया है, जिन महीनों कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा, तो जिन किसान भाइयों ने मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की जो बुआई करना चाहते हैं और भाई बुआई ना किए तो वो पहले सप्ताह तक भाई ये कर लें। साथ ही मौसमी सब्जियों की अगर बात करें तो जुलाई के महीने में बरसाती जो सब्जियां हैं उनसे काफी मुनाफा जो कमाया जा सकता है। और भाई बेल वाली सब्जियों की अगर बात करें तो लौकी, तुरई, करेला, कद्दू और खीरा लगा सकते हैं। साथ ही भाई अन्य सब्जियों में भिंडी, बैंगन, टमाटर, मूली और अगेती, फूलगोभी भी लगा सकते हैं। साथ ही भाई देखिए, जो फसलों में खरपतवार रोकने के लिए निराई गुड़ाई करते रहे, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह भी ले। और साथ ही वही देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं वो जो समय समय पर जाकर अपने खेतों का ध्यान रखें। और बीज का हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि जब बीज आप लो तो उपचारित बीज ले, अगर उपचारित ना हो तो उसको उपचारित अवश्य कर ले। और अब भाई बारी है कल के कार्यक्रमों के बारे में, तो कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकांजनी, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार जिसमें चर्चा करेंगे वन महोत्सव सप्ताह के बारे में, और साथ ही जानकारी देंगे महिलाओं में होने वाले गर्भाशय कैंसर के लक्षण, उपचार और उसके बारे में। और अगर योजना की बात करें तो योजना की जानकारी देंगे आयुष्मान भारत के बारे में। और भाई ये तो हमारा आज का कार्यक्रम था, आपको कैसा लगा इसके लिए आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजे। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 1100001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं शायद भाई, मेल एक बार बता दो।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@gmail.com।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, लोग ग्राम संसार कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

श्रोताओं, जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ आज का गजल और कव्वाली से सजाए कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्रों का वितरण आज से प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ 29 जुलाई तक दिल्ली के सभी 13 जिलों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हर घर में जाएंगे। वे सभी मौजूदा मतदाताओं को सत्यापन और मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2-2 प्रतियां वितरित करेंगे।
1: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा

0: देने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अपना गणना प्रपत्र सही जानकारी के साथ भरकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अपने बीएलओ को जमा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद होती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि कल से दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लागू होने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30,000 रूपये तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है। इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दो पहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की पहली जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रूपये तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना को शुरू कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ट्रस्ट संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के जरिए सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाओं को अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक का अनुदान दिया जा सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि ये संस्थाएं मानवीय सेवा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम और शीतकालीन राहत कार्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीवर लाइन बिछाने के विकास कार्यों की शुरुआत भी की। श्री विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक व्यापक और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जच्चा बच्चा देखभाल और बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए नए प्रकार के मुफ्त टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी खाली पड़ी जमीनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली परिवहन निगम सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली खाली भूमि का विस्तृत आकलन किया गया। दिल्ली के शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अतिरिक्त स्वच्छता संसाधनों को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
2: शहदरा उत्तर और शहदरा दक्षिण क्षेत्र के लिए कुल 76 आधुनिक स्वच्छता वाहनों और उपकरणों को स्वच्छता अभियान में शामिल किया गया है। इनमें 52 स्वच्छता वाहन शहदरा उत्तरी और 24 वाहन शहदरा दक्षिणी क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 24 टिपर ट्रक्स, 10 हुक लोडर और 28

0: बैटरी रिक्शा भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और वित्तीय सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित यह बेड़ा दिल्ली की सफाई व्यवस्था को नई गति देगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने शाहदरा दक्षिण क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास परियोजना और आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश भी दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र DRIC का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना दिल्ली रिज की अनूठी पारिस्थितिकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए की गई है।
2: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गोयल ने कहा कि यह केंद्र उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो दिल्ली रिज के इतिहास और विरासत के बारे में जानना चाहते हैं। यह केंद्र मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। सोमवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन ये केंद्र बंद रहेगा। रेल निगम ने बताया कि जो आगंतुक मेट्रो से नहीं आ रहे हैं वे इस केंद्र को देखने के लिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर से 11 रुपए का प्रवेश टिकट खरीद सकते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
1: नई दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित एक रेस्तरां में आज आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना दोपहर लगभग 3:40 पर प्राप्त हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि बचाव कार्य के लिए दमकल की 7 गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
3: मौके पर जब फायर सर्विस के लोग आए तो ये पाया गया कि किचन के अंदर उनकी चिमनी और उसके अंदर जमा जो ऑयल होता है उसके अंदर फायर थी और अब जो है आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया। पूरी घटना के अंदर कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी हम खाली बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा रहे हैं।
1: पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम ने यह रिपोर्ट जारी की। यह अध्ययन ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र, स्थानीय जवाबदेही और समुदाय केंद्रित विकास के एक जीवंत संस्थान के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए साक्ष्य आधारित एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव राज विवेक भारद्वाज ने कहा कि पिछले दशक में देश के ग्रामीण हिस्सों में सड़क संपर्क, जल और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है।
4: पिछले दशक में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। गांव में जैसे पानी की समस्या थी, हर घर में हर नल में जल समस्या थी, बिजली की, सड़कों की 98% गांव में आज की तारीख में संपर्क है। बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज IL-BS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि IL-BS जैसे संस्थान देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
5: IL-BS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है। पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उन सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि

0: मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 विदेशी और 1 भारतीय नागरिक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 71 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि वो अब मादक पदार्थ के स्रोत, वित्तीय लेन देन और अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व, संवाद और जनभागीदारी की मजबूत नींव पर आधारित है। श्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र संवाद, सहमति और उत्तरदायित्व की सशक्त परम्परा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षाविद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में श्री वर्मा ने सार्वजनिक जीवन में सेवा के उच्च मानदंड स्थापित किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्री वर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री वर्मा ने दिल्ली में भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष बहन को निरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेजवन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रोताओं, कितना सुंदर वो एहसास होता है ना, जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, हमें खुद से मिल पा रही हो, एकांत सा वो समा हो, आसमान में चांद हो और सपनों से सजे कई सारे सितारे हों। तो चलिए ऐसे ही किसी सफर की ओर आगे बढ़ते चलते हैं। अभिजीत की आवाज में अभी आपने सुना तेरे बिना फिल्म से लिया ये गीत। आइए अब आपको सुनाते हैं कयामत फिल्म से लिया गीत। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की।

का जादू ही कुछ ऐसा होता है, पैर जमीन पर नहीं और ख्वाबों पर किसी तरह का पहरा नहीं, बस चुपके से कोई आता है और दिलों की अदला बदली करके ले जाता है। कोई भी कहिए, ये जो प्रेम है, ये जो प्यार का रंग है, ये इंद्रधनुषी रंग में हमें रंग जाता है। ना कोई पहरा और ना ही किसी तरह का कोई नियंत्रण रह जाता है। श्रोताओं, आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को और आपको सुनवाते हैं मासूम फिल्म से लिया गीत। आवाज है साधना सरगम और साथियों की।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम गीत मालिका, और आइए अब आपको सुनवाते हैं खिलाड़ी फिल्म से लिया गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और अभिजीत की।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में अभी आपने सुना साजन फिल्म का ये गीत और श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीडीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी

0: ऑपरेशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा हुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के

0: पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। गुरुप्रे भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पख्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू चंद भैरव फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रूपये से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for inter-departmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker

एक फिल्मकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे पीनाज मसानी के गाए चंद गीत और गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। शब के 9:45 हुए हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंजबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादले ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने की खातिर 1,100 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदायशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूद पर तबादले ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंजबाती तरीकेकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मजमू हुकूमत के तरीकेकार को इख्तियार किए जाने और महकमा जाती सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जाम मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गतिशक्ति को एक मौसर प्लेटफार्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूद से मुताबिकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से

द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मुआशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाए। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबाइल यूनिवर्सिटी के पहले जलसा तकसीम इस्नाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए। इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों की बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमद और रफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकल हमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस फाइबर ऑप्टिकल केबल को भी मंजूरी दे दी है। आज दिल्ली में झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतालिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निपटना सभी मुल्कों की मुश्तरक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकेकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेशन प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मौजूद पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तिशना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तिशना को आज तक के लिए मंजूरी दी है। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। आज हुल बगावत के शुजात मंदो, सिद्धो कान्हो, चांद भेरो और फूलो झानो को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनक्द किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकटिया और बोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और गैर मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत अलामत है जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस सदारती हुक्म को कलदम करार दे दिया है जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीक की कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि

0: बस तो फिर दावत हो जाए बलमा नादान साहब।
1: ना जी वही अर्ज कर रहा हूँ जनाब, मैंने सदर मोहतरम झुनझुन झुंझानवी साहब से मशवरा किया है और तय पाया है कि आज आपकी बातें सुनी जाएंगी, जिसकी बात पसंद आए उसे फंड का चौथा हिस्सा दे दिया जाए।
2: क्या उमदा बात सोची आपने बाबा, मैं कुर्बान।
1: और एक तिहाई सब मेम्बरान में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा।
3: ये बात तो पसंद आई है, हमारे मतलब की है, मगर बाकी आधा।
1: अरे भाई बाकी आधा फंड महफिल का माकूल तरीन शख्स ले ले। अब वो शख्स कौन होगा इसका फैसला आप सब लोग करेंगे।
3: भाई सुनिए सुनिए, मेरे ख्याल में माकूलियत का अंदाजा इस बात से किया जाए कि वो शख्स कैसा है और कैसी बातें करता है।
2: और साहब मेरे ख्याल से हर शख्स को कुछ सुनाने का मौका दिया जाए, उसकी सुनाई हुई चीज से उसके माकूल होने का पता चल जाएगा।
3: बस तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं मुफक्किर भी हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है।
4: क्यों अजीबा, आय हाय, तुम कौन से माकूल शख्स हो जिस बुलक्कर को अपनी बीवी का नाम याद ना रहता हो, वो सवाल क्या खाक करेगा। अब सईदा को अजीबा बना दिया।
5: कोई बात नहीं खफ्ती साहब, आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का जो शख्स सही जवाब देगा वही माकूल समझा जाएगा।
1: और भाई बच्चों मुफक्किर साहब आपको इजाजत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल क्या है?
3: पहला सवाल ये है, सुनिए गौर से, पहला सवाल ये है कि बताइए चांदी का डॉलर किस धातु का होता है?
2: चांदी का।
3: रेडियो पर 9 बजे की खबरें किस वक्त आती है?
1: 9 बजे की। 9 बजे,
3: गुड वेरी गुड। बताइए दिल्ली की जर्द और नीली बसों का रंग कौन सा होता है?
4: नीला और जर्द, क्यों ठीक है ना।
3: बस अच्छा बताइए कि पेरिस का एफिल टावर किस शहर में वाक़ा
2: है? पेरिस में, पेरिस में।
3: बहुत अच्छे। और दिल्ली का कुतुब मीनार किस शहर में है?
2: अरे दिल्ली में है, इतना तो मैं भी जानता हूँ।
3: वाह वाह वाह, सभी लोग होशियार हैं
4: और माकूल भी। लिहाजा सेक्टी साहब बाकी आधा फंड किसको मिलेगा?
1: अरे भाई पूरा डाल लेंगे, यही तरीका हो सकता।
5: अब ये कैसे हो सकता है, जब आप सबकी सुन ले तब सदर झुनझुन झंझानवी फैसला करेंगे। हाँ
2: ठीक है ठीक है, आप अपनी सुनाइए। हाँ
5: जरूर सुनाता हूँ, जरूर सुनाता हूँ जनाब। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम टाका खयाती मलमली है। और चूंकि हमारा मुल्क आजाद है और हम आजाद हैं, लिहाजा हमारी शायरी को भी रदीफ काफिये की बंदिश से आजाद होना चाहिए।
2: अरे आगे तो बोलिए
5: जनाब, आगे बोलना नहीं सुना रहा है। मैं एक आजाद नज़्म सुनाना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। आर्ज करता हूँ, आसमां काला है और इसमें सितारे हैं जड़े।
2: सितारे हैं जड़े,
5: जी हाँ, आसमां काला है और इसमें सितारे हैं जड़े। इस तरह जैसे सियाह कोट में हो दूर तलक, खूबसूरत से चमकदार से बटनों की कतार। आसमां काला है एक कोटे सिया की मानिंद।
2: कोटे सिया,
5: जी हाँ, आसमां काला है एक कोटे सिया की मानिंद, वो ख्यालात की मखमल से फिसल जाता है।
2: क्या फिसलन है?
5: जी हाँ, इतनी सूरत से कि जैसे कोई सीने की मशीन थान लट्ठे का सीए मिनटों सिकंडों तर्क रफ्तारी से चलती हुई कोई खैची, एक लम्हे में कई सूट कतरती जाए। अर्ज किया है कि हिजर की रात हुई जाती है इतनी लंबी, हिजर की रात हुई जाती है इतनी लंबी, मैं हूँ हैरान कि आखिर इसे नापू
1: कैसे,
2: कैसे
1: नापे,
2: कैसे
5: गज से, मीटर से, या फिर कौन से पैमाने से।

0: लिखता है और रोज लिखता है।
1: खत लिखता है,
0: इन खतों में बार बार रकम का तकाजा करता है कि मुझे इतनी रकम भेज दीजिए, फलां चीज लेनी है, फलां को रकम देनी है।
2: फिर उससे क्या मतलब?
0: मतलब तो कुछ नहीं, मगर मैं उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गया। क्यों जमीला, तुम्हें याद आए ना कि मैंने उसे जवाब में क्या लिखा था?
1: हाय अल्लाह, पहले ये तय कर लीजिए कि मैं जमीला हूँ, रहीसा हूँ, फरीदा हूँ, अनीसा हूँ, अजीबा हूँ या सईदा हूँ।
0: मुझे इतनी सारी बीवियों के नाम याद नहीं रहते, हमेशा भूल जाता।
1: ओफो, बात हो रही थी खत के जवाब की।
3: जी हाँ।
0: अब मैं भूल गया, क्या आपने भी मुझे कोई खत लिखा था?
4: मिस्टर, अरे क्या बकवास है, मेरी बीवी आपको क्यों खत लिखेगी? जरा सोच समझ के बात कीजिए।
0: माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं जरा पटरी से उतर गया।
2: अजी अब आगे भी तो बोलिए, आपने अपने जख्मी को जवाब में क्या लिखा था?
0: हाँ, अब याद आया। तो दोस्तों और बीवियों, मेरा मतलब है दूसरों की बीवियों। हुआ यूं कि मैंने अपने लड़के को फिजूल खर्ची की बुराइयों पर एक तवील खत भेजा। उस खत में मैंने किफायत शुआरी की खूबियों पर रोशनी डाली थी और फिजूल खर्ची को बहुत बुरा बताया था। बहुत ही लंबा था खत वो।
2: अच्छा।
0: लंबा।
2: यानी कि आप इस सिरे से लिखते जाते होंगे, दूसरा सिरा पकड़ के वो पढ़ता जाता होगा।
0: बीच में रुक में मत दिया कीजिए।
5: सर, रुक में तो अभी थोड़ी देर बाद खाए जाएंगे। प्लेटों और चमचों की आवाज आ रही
4: है। आप खामोश रहे भैया, खामोश रहे, उन्हें भी बोलने दे।
0: मैं क्या कह रहा था
4: जी?
2: आप जनाब लोगों में खा रहे थे, मेरा मतलब खत सुना रहे थे।
0: खत खत खत, तो मैंने वो खत लिखकर डाल दिया
2: जी,
0: और उस नालायक को टका भी नहीं भेजा।
2: अरे आपके पास टका होगा ही नहीं, भेज कैसे देते? आजकल टके मिलते ही नहीं, ऐसे शख्स भी नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? हाँ,
0: अजी होना क्या था, वो नालायक मेरा भी बाप निकला। एक हफ्ते बाद उसका खत आया जिसमें ये लिखा था कि मैं उसे 10-15 खत और लिखूं।
2: मतलब इतने सारे खतों की जरूरत क्यों पड़ गई?
0: उस गधे ने मेरा पहला तवील खत एक पब्लिशर को 200 रुपए में फरोख्त कर दिया।
1: यानी 200 रुपए में बेच दिया?
0: जी हाँ, उसने लिखा कि एक पब्लिशर ऐसे 10 खतों की एक किताब छाप लेगा, इसलिए और खत भेजिए। क्यों भाई नसीमा बेगम, ठीक है ना?
1: अरे अल्लाह, तौबा है, अब मैं क्या कहूँ आपको, नसीमा को भी ले आइए घर में, बहुत याद आ रही है ना उनकी।
0: माफी चाहता हूँ, जुबान पर लुआब लगा रहता है, फिसल जाती है। तो सेक्रेटरी बलमा बेईमान साहब,
4: वो बलमा नादान, नादान जनाब, दुरुस्त कीजिए।
0: तो भाई नादान साहब, अब फरमाइए, मेरी माकूलियत में आपको कोई शुबा है? दिलवाइए आदाफन।
6: मैं चूंकि अभी आया हूँ इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना, अलबत्ता इतना मालूम हो गया कि जो आदमी माकूल और अकलमंद होगा उसको इनाम दिया जाएगा।
2: इनाम नहीं, आधा फंड।
6: तो फिर जनाब मुझे भी मौका मिलना चाहिए।
4: सुनाइए सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहते हैं? देखते हैं आप कितने अकलमंद और माकूल इंसान हैं। बोलिए उदास कुमार जी।
1: लेकिन ये तो जाती है, मेरे शोहर की बताई हुई बात सबसे अच्छी है।
0: नहीं शरीफा, इन्हें भी सुनाने दो।
1: तौबा अल्लाह, शरीफा नहीं, सईदा सईदा सईदा, समझे आप?
0: सईदा, अब मैं क्या कहूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे नाम याद नहीं रहा करते। आप कहें उदास कुमार साहब।
6: साहिबान, मैं बीमा एजेंट हूँ और बहुत कामयाब बीमा एजेंट हूँ, मेरी कामयाबी ही मेरी माकूलियत की दलील है।
1: अरे साहब सुना बात तो सुनाइए कि कामयाबी कैसे हुई?
6: बात यह है मोहतरमा कि मेरी कामयाबी का राज मेरी गुफ्तगू का पहला जुमला होता है।
2: अरे कौन सा जुमला?
6: मैं बीमा करने के लिए जब भी किसी घर पर जाता हूँ तो पहले घंटी बजाता हूँ।
2: क्या खतरे की घंटी?
6: जी नहीं, दरवाजे की घंटी।
2: अरे बोलते रहिए बोलते रहिए, वो जुमला क्या होता है
6: जनाबे सर?

0: घंटी की आवाज सुनने के बाद जो भी औरत दरवाजा खोलती है तो खैर वो 100 साल की बुढ़िया ही क्यों ना हो, मैं हमेशा उससे एक खास जुमला कहता हूँ।
1: सुनाइए सुनाइए, कौन सा खास जुमला है वो?
0: मैं कहता हूँ, मिस क्या आपकी मम्मी घर पर है?
2: खूब, क्या नुक्ता निकाला है।
0: बस जनाब, मैं उस औरत का बीमा कर लेता हूँ।
3: ठीक है ठीक है, मगर जनाब इस वाक़े से मेरी नज़म अच्छी थी, उसमें माकूलियत थी, हकीकत का इजहार था।
4: ये फैसला तो मुझे करना है या सेक्रेटरी साहब को? आप खामोश रहिए।
5: चलिए चलिए, मैं अभी आया हूँ। मेरा नाम कदीम खां है।
1: आप क्या बेचते हैं?
5: मैं हुजूर वो क्या क्या अर्ज करूँ, म्यूजियम के लिए यानी के अजायब घर के लिए कदीम अशिया जमा करता हूँ।
2: जनाब की सूरत ही से कदामत बरस रही है। कदामत भी और नहुसत भी।
3: अरे साहब, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि ये साहब म्यूजियम में रखे जाने की चीज
5: है। जनाब देखिए जनाब, मैं बहुत काबिल शख्स हूँ जनाब, अपनी काबिलियत के बलबूते पर ही। देखिएगा आप, आधा फंड ले जाऊंगा।
1: हमारा तो काबिलियत का पता तो चले, क्यों बेगम लईका? ओफो, बोलते रहिए, जब सब कुठियाँ खत्म हो जाए तब मुझे याद कर लीजिएगा।
3: तो साहब, आप क्या सुनाना चाहते हैं?
5: आए हजूर, मैं ये सुनाना चाहता हूँ किबला के मेरे पास बड़ी कीमती अशिया मौजूद है।
4: मसलन?
5: जी हाँ, बेहद नायाब, बेहद कदीम।
1: मसलन?
5: जी वो मेरे पास देखिए हजूर, एक बेहतरीन दिमाग मौजूद है। अदावर से हजूर, जो मैंने घर में अदवियात वाले मर्तबान में रखा हुआ है।
3: आपने अपना दिमाग मर्तबान में रख दिया है?
5: जी नहीं हजूर, मैं तो ये बताना चाहता हूँ किबला कि वो दिमाग आज से 2000 साल पहले हजूर मिस्र में पाए जाने वाले एक काले गधे का है।
1: माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
5: अरे हजूर, मेरी माकूलियत की दलील ये है कि सारी दुनिया में ऐसे दिमाग दो अदद है। जी हाँ, मिस्र के काले गधे की ये नस्ल हजूर दुनिया से मिट चुकी है।
1: कहाँ मिटी है साहब? आप सामने जो खड़े हैं।
5: क्या मतलब आपका, क्या मतलब? देखिए मैं कह देता हूँ हजूर, आप कुछ भी कहें। जी हाँ, मगर मेरी माकूलियत यही है हजूर कि सारी दुनिया में काले गधे की इस किस्म के दिमाग हजूर सिर्फ दो जगह
3: है।
5: एक तो है, आप पूछिए कहाँ हजूर, एक तो है होनोलुलु के मेडिकल के अजायब घर में। हाँ। और हजूर दूसरा आपके खादिम के पास।
1: मैं तो पहले ही कह रहा था।
3: आपकी बातों से ही जाहिर है कि आपके पास मिस्र के काले गधे का दिमाग है।
1: आप देखिए, आप फैसला करने दीजिए।
0: दीजिएगा
2: मेरे हक में, मेरी नजम इनसे अच्छी थी, हमें झक मारी थी।
5: देखिए हजूर, देर आयद दुरुस्त आयद, मैं देर में आया था इसलिए मैंने हजूर दुरुस्त बात कही।
0: आज तक मार नहीं खाई, मैं आखिर बीमा एजेंट हूँ, मैंने बेहतरीन और माकूल इंसान होने का सबूत दिया। क्यों मिस साइदा?
6: मैं मिस नहीं, मिसेस हूँ, मिसेस मुफक्किर, और मुझे बीमा भी नहीं करवाना है, पहले ही हो चुका है।
3: मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे ही माकूल समझा जाएगा, देख
4: ले। अरे अरे, मैं इस नर्स की दवा हूँ? अरे भाई, मुझसे भी तो पूछो, मैं सदर हूँ।
1: इतना शोर मचाइए, देखिए आप लोगों को भूख लग रही है ना, इसलिए आप चीख रहे हैं।
2: हाँ, भूख तो लग रही है, जरूर लग रही है।
1: देखिए मोहतरम सदर, जुनजुन जुनजानवी साहब ने ये तय किया है कि जमा शुदा फंड का 1/4 वो खुद लेंगे। वो सदर है ना, इसलिए।
5: चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। और 1/3 यानी वो जो हम सब में बांटा जाना था।
1: हैं जी, वो खाना खा चुकने के बाद आप में मसावी तौर पर तकसीम कर दिया जाएगा।
2: चलो ये भी हुआ, लेकिन वो माकूल इंसान वाला
1: اے جی وہ تو کیا میں آپ سب کو نامعقول نظر آتا ہوں؟
5: ہسیے مت ہسیے مت، یعنی کہ میرا
1: مطلب ہے یعنی کو پہلے کھانے کے کمرے کی جانب ٹیک مارچ کیجیے جناب، ہر بھائی میں تو سیکرٹری ہوں، ہر بھائی سیکرٹری اور صدر بعد میں ہی کھاتے ہیں۔
6: اچھا اچھا آؤ بھائی، بیگم رقیبہ، اللہ رقیبہ نہیں سیدہ سیدہ، جلدی آ جاؤ، خان پر جگہ نہیں رہے گی۔
4: تو آدھا فنڈ تو مجھے دو گے نا؟
1: آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
6: ارے بھائی سیکرٹری صاحب، اے سیکرٹری صاحب، یہ کعبے تو خالی ہیں۔
7: اجی کھانے کی دیر کہاں ہے؟
6: ارے بھائی یہ کیا مذاق ہے، کھانا کی دیر ہے؟
1: میرے معزز ممبران، ارے بھائی آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ محفل یارہ کا معقول ترین شخص کون ہے؟
7: بتائیے بتائیے،
1: یہ خاکسار یعنی بلما نادان۔ جی میں نے آدھا فنڈ پہلے ہی لے لیا ہے،
4: یہ کیا حرکت ہے؟
1: اور دوسری بات یہ کہ چوتھائی اور ایک تہائی فنڈ سرے سے تائی نہیں، آدھے فنڈ کو آپ پورا کہہ لیجئے اور یا آدھا وہ سب ساک سار نے لے لیا ہے۔
6: بلما نادان نہیں، بلما بےمان،
1: اور یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ اپریل کا مہینہ ہے، اندر نہ تو دیگ ہے نہ کھانا، آپ سب کو صرف معمولی سا اپریل پھول بنایا گیا، بس میں تو چلا، اب خالی دیگ میں چمچا ہلاتے رہیے۔
8: محفل یارہ، ابھی آپ جناب سراج انور کا تحریر کردہ یہ ڈرامہ سن رہے تھے۔ ترتیب و پیشکش پریم وہرا کی تھی۔ حصہ لینے والے فنکار تھے ایس بی ایل گوئل، بی آر ناگر، جیمنی کمار، وریندر، سپنا سینی، رام مینی، کملا کماری چوپڑا، ستیش مہاجن، رئیس مرزا اور ارون ماتھر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیشہ خدمت ہے فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ تامل ارشاد پروگرام کے سبھی سامعین کو نعیم کا پرخلوص آداب۔ تم سے نہ کٹ سکے گا آندھیوں کا یہ سفر، تم سے نہ کٹ سکے گا آندھیوں کا یہ سفر، اب شام ہو رہی ہے میرا ہاتھ تھام لو۔
9: تو بھی آ جا کہ آ گئی رت

थे दीपक सेन, सौम्या सेन और मनोज सेन सिटी सेंटर खंडवा से। ये फरमाइश है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। और अब शामिल हो रहे हैं मेल के जरिए तमिल इशाद प्रोग्राम में कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, मुरादपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन साथ में उनके संजीव जैन। और ये फरमाइशी मेल मौसूल है करनाल से और हमारे सामे हैं बलविंदर सिंह सोढ़ी साहब। और अगला ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हो गया, इसको साइडलाइन करना पड़ेगा। आसेगा मदा से करणजीत पुनकर और इसी नकमे को सुनना चाहते थे मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल कर्नाटक के गुलबर्गा से। और ये फरमाइश है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिर नासिर साजिद शाहिद की। और आप हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार सिंह। और आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। ये नगमा है कल्याण जी आनंद जी की है मौसीकी। और जहां तक फिल्म का सवाल है तो वह है बिरजू उस्ताद। तो आइए पहले नगमा सुनते हैं, उसके बाद आपके फरमाइशी मेल शामिल किए जाएंगे।

फैमिली शॉट प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। छलिया फिल्म का नगमा है, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ है, कल्याण जी आनंद जी की है मौसीकी। और ये भी जो नगमा बिरजू उस्ताद फिल्म का सुन रहे थे, इसे भी कमर जलालाबादी ने ही लिखा था। और अब फरमाइशें शामिल कर लेते हैं जनाब जल्दी जल्दी। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है छत्रपति संभाजी

नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजे, राशि राजेश भी हैं, और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, मैनू कटीला दिल्ली से शामिल हुए हैं, कमल बालूजा, मधु बालूजा और साथ में सागर बालूजा, भोपाल से हैं चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शिका दर्शित, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, छिपा कलोनी खंडवा से सुनने के मंतजर है मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री। ये फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित आहूजा की। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बबलू शेख सभी शेख वजीर और उनके कुछ और साथी। गाड़गे नगर वियतमाल महाराष्ट्र से फरमाइश की है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश ने। अगला नगमा आपकी नजर पे करते हैं, आप में भाटापारा छत्तीसगढ़ के हमारे सामाईन बचकमल डॉक्टर बसंत प्रगु और मोतीलाल यादव। ये फरमाइशी मेल मिला है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुनील सामग, अंजलि सुनील का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं दादा बाबू रोड गेटी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साहिबा नवाज, साथ में हैं हसन नवाज, और गांव नाईवाला हनुमानगढ़ से हैं वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। ये फरमाइशी मेल मौसूलवास सलोनी चौरसिया सुबह चौरसिया पूजा पिंकी चौरसिया का सदबाड़ा यूपी से, और आप हैं वसीम अकम सालिया खातून गुड़िया खातून पटना बिहार से, पंजाब राम टेके यशोर राम टेके शव्य राम टेके सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं। और अगला फरमाइशी मेल मिला है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर राही, सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुग्गू का, किशन सबकाल, अक्षय सबकाल, विशाल सबकाल के साथ सोनिया विशाल सबकाल, दरअसल पूरा नाम है इनका, शास्त्री नगर बीट शहर से हैं, और आप हैं आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से, और चंडीगढ़ सिटी से फरमाइश की है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। और ये फरमाइशी मेल मौसूल है कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला, अश्वनी आनंद और मनवित रमेश का। अगला मेल है विट्ठल जाधव, अनसुया जाधव, पवनराज जाधव का, ऑरेंज सिटी नागपुर से आपकी फरमाइश है। बरगद बेल हुबली कर्नाटक से हैं फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी। छोटे बलिया करजत मुंबई से फरमाइश किए अहमद भाई फूल वाले, नूर आयशा अहमद, इमरान अहमद और अहले खाना ने, और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी और महेंद्र मोदी, ठाकुर साहेब बिहारी बाबू रामगढ़ कैंट से हैं। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू और राजेश जैन, सुरेखा जैन, शुभम अक्षय सेन की फरमाइश है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, और सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, साथ में है कल्पित चौहान। तो आइए सुनते हैं ये नगमा।

आमिर शाद प्रोग्राम की अगली पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है बेदर्द जमाना क्या जाने, कल्याण जी आनंद जी की है मौसीकी। सुनने के मुंतजिर हैं आप तमाम सामीन। नाम शामिल कर लेते हैं जनाब। नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, साथ में सुरेश शर्मा, मंडी हरजीराम मलोट पंजाब से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। राहुल मनवर, सरला मनवर, साथ में उनके बेबी प्रियांशी हैं, शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, आकुट से आपकी फरमाइश है। और अगला मेल मिला है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा का। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु पाकुर झारखंड से हैं। पोषण बंछोर, चंद किरण और छाया बंछोर हैं पहारा जिला दुर्ग से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं जींद हरियाणा निम्नाबाद से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, लवप्रीत और उनके बहुत सारे साथी। अनंत भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत हैं मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से। और विजय सुरलकर, रत्नमाला कुमकुम गुड़िया की फरमाइश है मोटाला महाराष्ट्र से। आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक और साथ में गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव से आपकी फरमाइश हमें मिली है। बागपत यूपी से सुनना चाहते हैं स्नातक को संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। कवर कॉलोनी बड़वा से खरगोन से एम प्रवीण शिरमाली, मीना शिरमाली, मध्य प्रदेश से मिला है ये ईमेल। और शोभापुर गांव बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और एक नहीं चार पांच नकमों की फरमाइश लेकर भेजिए। किशोरनगर अमरावती से हिरमन शिंडे, शीला देवी शिंडे। और अगला ईमेल है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल का जामानिया गाजीपुर से। और टोरोवाल नवा शहर पंजाब से सुनना चाहते हैं तामिल शाद प्रोग्राम का अगला नगमा, बेबी वामिका, वाणी थांडी और डॉक्टर प्रियम थांडी। पश्चिम थोक गंज डनवार से फरमाइश की मास्टर लीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनवर हुसैन अंसारी और नईम रजा सिद्दीकी ने। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं राम रतन टॉकीज, कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर। और बांदा यूपी से फरमाइश है फई मंसूरी अदी, फातिमा मंसूरी की जानिब से। और आप हैं आगा खान, आगा बेगम, निदा खान, बेबी अमल खान, खान मंजिल गंज डंडवारा से। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी। और पंचकुला सेक्टर 9 से फरमाइश किए आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग ने। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं राज पैलेस मोहनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा सावन भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका की फरमाइश है पटियाला पंजाब से। तो आइए सुनते हैं जनाब प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं पासपोर्ट फिल्म का दोगाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में और इसकी फरमाइशें हम बाद में शामिल करेंगे। आइए पहले सुनते हैं ये नगमा।

जी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुलगीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर काम मिले नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मुसावी और सबकी शमूलियत वाले मुआशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसा तकसीम इस्नाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटका और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतालिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरून मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रूपये थी जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपए मालियत की हो गई है। भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन इस्तेहसाल के तौर तरीकों धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकेकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस सदारती हुक्म को कलदम करार दे दिया है जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीक की कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आयन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है। अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पक्तिया और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों और बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक यह हमला अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है और अक्वामे मुत्तहिदा के ऐलामिये समेत बैन अल-अक़वामी कानून से इन्हिराफ है। फीफा आलमी कप में मराकश और पैरागुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकश ने सनसनीखेज तौर पर मैच 1-1 से बराबरी के बाद नेदरलैंड्स को 2-3 गोल से हरा दिया। अमरीका के बॉस्टन में पेनल्टी शूटआउट में पैरागुए से 3-4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरानकुन तौर पर

0: टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कल देर रात अमरीका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज रात अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। एक दूसरे मुकाबले में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंजबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने में भी तबादले ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में ताउन करें। दिल्ली झारखंड मेघालय कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा और टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से जारी है। इसके साथ ही बरसगीर की खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद।

आवाज तो जनाब आप पहचान ही गए होंगे रफी साहब की, इस आवाज को कौन नहीं पहचानता। ऐसे ही चंद खूबसूरत नगमे आप सुनते रहेंगे तामिलीशात प्रोग्राम में। हमारे वो सामीन जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे, अगर आप भी अपनी फरमाइश का कोई नगमा तामिलीशात प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए आप हमें अपनी फरमाइश इरसाल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है urdu service cst@gmail.com और उससे पहले लिखिए प्रोग्राम तामिले इरशाद। पता एक बार फिर बता देते हैं ईमेल का, urdu service cst@gmail.com। और इससे पहले हमने आपको एक नगमा सुनवाया था ब्रेक पे जाने से पहले, पासपोर्ट फिल्म का तो गाना था। तो जनाब दोनों नगमों की मिली जुली फरमाइश शामिल कर लेते हैं। फिरासत हुसैन अलकमर जहां शिफा सिमरन है गंज डंडवारा गणेशपुर से। तेलंगाना जवाब से फरमाइश की शेख अल्लाह बख्श बेगम राबे शेख शेख रहीम मुन्ना ने। और आप हैं गंगाधर यमेकर प्रमोद यमेकर प्रदीप यमेकर मेन बाजार कुंडलवाड़ी से। और अगला ईमेल मौसूल है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूद शाहिन हसन नाजिया इब्राहिम का। और आप हैं रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा और अहले खाना। ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ नई बस्ती गंज डंडवा से मोहम्मद यासीन हाशमी नजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ हाशमी और अहले खाना का। और इसी नगमे से महसूस हो रहे थे इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार माहिर अजीम और निशा अजीम। और आप रजाक मोहम्मद शमीम बेगम और इमरान खान इसी नगमे को सुनना चाहते थे। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल। अगला ईमेल मौसूल हुआ चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना डॉक्टर अदीबा का। और आप हैं नाज मंजिल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अक्रम और साथ में रुबीना वसीम। और ये फरमाइश मिली है उन दोस्तों की जो हो गए हैं शामिल तो इनको करते हैं साइड लाइन और वरना तो सेल्फ गोल हो जाएगा। रामगंज खंडवा से हैं विजय मोहबिया कविता मोहबिया और पेंटर बाबू डॉक्टर गजानन कुमार पद्मावती। और मधुरा की फरमाइश थी अकोला महाराष्ट्र से। और अब शामिल करते हैं अगले नगमे की फरमाइशें। और ये अगला नगमा जो है लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में है। सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का नगमा है कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में है जनाब ये नगमा। और इस नगमे को किसने लिखा है भरत व्यास साहब ने, तो फरमाइशें भी शामिल कर लेते हैं। ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल और ये फरमाइश मिली है प्रेम सिंह जोड़ा करणवीर करण दीपंदर वरिंदर कुछ इस तरह से मिला के नाम है करणवीर हाउस भूचो कैचे बटिंडा से हैं ये पंजाब से। और अगले मिले है नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जाधव नीता जाधव सुनल प्रसाद जाधव का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सदर बाजार कुरवली से अनिल कुमार वर्मा मायदेवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति लच्छनपुर से हैं। और अगला ईमेल मिला है बुल्लाना वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शोभा ताई मानकर और श्लोक कुमार और साथ में कुछ और साथी भी हैं संजय साहू साथ में कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। सुजाता भी हैं शशांक भी हैं पोटिया कला दुर्ग से आपकी फरमाइश अगले नगमे के लिए। जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश की रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा नाजिमा बेगम सिद्दीकी और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी ने। बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से सुनने के मुतमन्नी इस नगमे को शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास साथ में हैं युवती देवदास और जब्बार मोहम्मद नजीब खान मंजू अशफ खानजीपीर उदयपुर से। अगला ईमेल शामिल करते हैं कोटवा नारायण बापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय उषा राय साथ में अमित कुमार राय और साईनगर आरवी महाराष्ट्र से फरमाइश की नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शनी मिर्गे डॉक्टर प्रियंका काल पांडे ने। और ये ईमेल है अमीर खुसरो रोड गंज डंडवारा से भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीर रोशन और बेगम शबनम अनवार का। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा और उसके बाद काफी फरमाइशें भी वो भी शामिल की जाएंगी।

और इसे सुनिए केएल परदेसी का लिखा नगमा, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, ऐसे ही जज्बातें हमारे भी आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल, दिल से दिल का रिश्ता है जनाब आपका और हमारा, और इस नगमे को सुनना चाहते हैं आखिरी दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और अहले खाना। और अगला ईमेल मौसूल हुआ है अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे का, पंधर कावड़ा से आपकी फरमाइश है। और रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, देवाश्री, किशनगंज बिहार से, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ। दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर का राहड़गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, तीन चौदह छत्तीसगढ़ पुरानी भिलाई से हैं, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, साथ में शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, मंगल जनागल रही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल हैं, श्री गंगानगर राजस्थान के पतरोड़ा एमडी से, और ये फरमाइशी मेल रघुवी नगर दिल्ली से मिला है, जफर मौजम शेख, पलक तबस्सुम शेख, बेबी अलिस्बा है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं जुम्मा नगर खंडवा के बच्चे अल्तमश सबीना और मुदस्सर, चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव की फरमाइश मिली है सागर एमपी से। और अगला ईमेल है कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका सुशांत नायक, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, आशीष गौड़, आवास विकास कॉलोनी कासगंज से। और ये फरमाइश ईमेल दिल्ली से मिला है मुल्तानी डांडा पहाड़गंज से, अनिल मोहन, उषा मोहन और मधु नायक का। इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बिल्लू निषाद, जेल रोड रायगढ़ से, बल्लू दरअसल इनका नाम है, गौरीनगर इंदौर से हैं, सुनने के ख्वाहिशमंद आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले। अगला ईमेल हिना सावरी, अजल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम का है, बिशनपुर गेटी झारखंड से मौसूल हुआ है, और ये फरमाइश ईमेल

बेनीपट्टी मधुबन बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और निवेश कुमार का और उनके कुछ और साथी भी हैं। गुरमीत सिंह मित्ता साहब हैं साउथ एक्सटेंशन, जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं तमिल शाद प्रोग्राम। इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा बिशनपुर गेडी झारखंड से शामिल हुए और कस्बा बिलराम यूपी से हैं इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम और कुछ और साथी, ये नए नाम है, खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको। और मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, कंचन खर्चे और अहले खाना। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा की फरमाइश भी है और आप हैं उषा चंदन, पांडु चंदन, प्रथमेश चंदन, कुम्हार गली कोलगांव से। तो आइए नाफा सुनते हैं और जैसे जैसे वक्त मिलेगा आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे। एक ईमेल और नजर आया सामने, पहले इसको भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये वो साहब है जिनकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं और अगर मेडिकल टर्म में कहें तो टैकीकार्डिया हो जाता है। शाहजहांपुर से नई सड़क के राजावत कॉम्प्लेक्स से मनमोहन राजावत, राजमधु राजावत और राशि रक्षित बरसवीले तस्करा, हमने बस यूं ही कह दिया जनाब मजाक में, बुरा ना मानिएगा।

और आप ये नफा भी सुनते रहिए, नाम भी शामिल कर लेते हैं। रेलवे रोड गंजी टंडवा से नजमा बेगम नाज, मोहम्मद कलीम जख्मी, बेबी फातिमा गाजी, सल्लर पहलगाम से फरमाइश की है मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन ने, और मनोज जेठवा, साथ में है हर्षा जेठवा, बुराव के नगर श्रीरामपुर से इनकी फरमाइश मिली है, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, विनोदपुरी और कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से राजू माठे, गजानन सालूकर और सुरेश भिसे पाटिल हैं, बुलडाना महाराष्ट्र के आसल गांव बाजार से, गणेशपुर गंज टंडवारा एटर से शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख, बेबी मुस्कान और बड़े रैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, त्रिभुवन नाथ मालवीय और अहले खाना, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और ये फरमाइश मिली है गांधीराम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी की, और अशोक कुमार शाही, संतोष शाही राजश्री हैं व्यास कॉलोनी बीकानेर से, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश लंबाड़े, वैष्णवी हर्षल लंबाड़े और जाह्नवी का, सामरानगर अमरावती महाराष्ट्र से फरमाइश की रेखा संगर, संजय संगर ने, और आप हैं अब्दुल गफूर डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी से, जॉन डिकास्टो, रोजी डिकास्टो, विलिस की फरमाइश जनकपुरी सहारनपुरी से मिली है, और दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब, रघुवीर नगर दिल्ली से हैं। अगला में रिपीट हुआ, इसको भी साइडलाइन करते थे जनाब, गांव फरासी सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, साथ में पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान ताड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नहावकर।

0: खुदा की कसम।
1: लेकिन खुदा की कसम आप भी हमसे नाराज हो जाएंगे अगर आपके नाम शामिल ना किए तो। नगमा भी सुनवाएंगे लेकिन पहले नाम शामिल कर लेते हैं। एक झलक थी नगमे की। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से फरमाइश की रेखा बसंत कुमार सिन्हा ने, साथ में अजय कुमार गुप्ता और बेबी अनिष्का अगन का तनुश्री ने, और आप हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुल्ला निजामाबाद तेलंगाना से, आदर्श नगर मलोट से फरमाइश की राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा ने, और प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा, आशीष कोटेचा जंक्शन प्लॉट राजकोट से हैं, और कस्बा बिलराम गेट, ये तो हम अभी कुछ देर पहले शामिल कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं ना। सोमदत्त, गुरमंत कौर, मनु है ज्योति रानी के साथ नाभा पटियाला पंजाब से, और संजय डाबेराव, संजीव माफ कीजिएगा, के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबेराव है विदर्भ आकोट से, और ये फरमाइश मिली है गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी सीता की, और मधुसूदन भट्ट, आरती और जैस्मीन है जयराज प्लॉट राजकोट से, उस्मान शेख फौजी, साहिराबानो करिश्मा है परसोगा लातूर से, और ये फरमाइश मिली है एम वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी के पुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से हैं, और कस्बा गरवाल मंडी बागपत यूपी से हैं, आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान, और ये फरमाइशी में मिला है छन्नू लाल श्रीवास, साथ में अनिता श्रीवास, पुष्पा श्रीवास और अंजू योगिता श्रीवास। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ से आपने फरमाइश हमें की है, और सुशांत प्रिया, मास्टर निवेश कुमार हैं लड्डू कुमारी के साथ में, टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, और ये फरमाइश मिली है महाराष्ट्र के अकोला से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले की। तो नगमा सुनिए, बीच बीच में थोड़े से नाम भी शामिल कर लेंगे जनाब।

और यह फरमाइश मेल मिला है तिरुपति नगर नामदूरा महाराष्ट्र से आत्माराम वाशिमकर कपिल वाशिमकर का बड़ा करौनी घरौंदा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान कांतारानी और गुंजन और शिव प्रसाद देवदा ये पहले हम शामिल कर चुके थे नाम हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोर्ड के नंदा बोर्ड के और साथ में उत्तम जमधाड़े बीर शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे संगीता घटे साथ में साक्षी घटे और सिमला छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव माया यादव कोमल यादव विजय महोपिया पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से हैं और वरुण जोलका से महेंद्र सरकटे विजय सरकटे साथ में मिलिंद सरकटे और ये फरमाइश मौसूल हुई है बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर धीमान अभिनीत जो कि मुख्तसर पंजाब से हैं और ये फरमाइशी ईमेल भोपुर मड़ियाहू जौनपुर से मिला है इरशाद अहमद अंसारी कामरान इरशाद अदरा तबस्सुम का और बाबू भाई भारती देवी हैं जवाहर नगर उदयपुर से और ये फरमाइशी ईमेल निजामा तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई और शेख चांद फारूक और अहले खाना बबलेश पवार डैनी पवार मास्टर मनीष गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं और निशा सलमानी नौशा सलमानी बेबी आलिया धनौरी तेलीवाला से हैं सुरेश मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से और मजहर अली अंसारी रजे बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी अस्तुपुरा जिला मऊ से हैं बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया झज्जर हरियाणा से और जगदीश धाकड़ नायमा युवराज धाकड़ शिवांगी आपने हिंगड़ी आलोट से फरमाइश है मेरे साल की फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा और ये फरमाइशी ईमेल कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता मास्टर रुद्र गुप्ता का है राजनगर कांति निकेतन बिहार से और मास्टर एस के पाटिल मीनारानी पाटिल प्रियंका अजय पाटिल हैं ज्ञानेश्वर मंत्री

0: नांदेड़ से, और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोले, प्रियंका पंचोले, साथ में संप्रीत और एलेफाना, धर्मागर पार्क मंगल बेटा महाराज से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, साथ में नदीम पटेल, और पुरानी बागपत से इलियास, मुस्कान कुरेशी, और भारत भूषण साहब के साथ में अंजु श्रीवास्तव व्हाइट फील्ड बंगलुरु से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न, गौरव सिंह की फरमाइश महोबा बुंदेलखंड से मौसू हुए
1: प्यार में हो रहे हैं सितम।
0: मॉडल टाउन करना से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और मीनाक्षी तिवारी, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से हैं, और ये है इस प्रोग्राम का आखिरी ईमेल, सब्जी मंडी बुलडाना से शब्बीर हुसैन, मुज्जू बाबा और शहजाद हुसैन, और ये थी ताबलीशात प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे प्रोग्राम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता पर चर्चा। भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
4: हाल के पश्चिम एशिया संकट ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि भू राजनीतिक घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा बाजारों को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कमाल ये रहा कि अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की और उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता को बनाए रखा। आज हम ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी से भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति पर चर्चा करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि किन उपायों की बदौलत देश इस चुनौतीपूर्ण दौर का सफलतापूर्वक सामना कर पाया और भविष्य के लिए हम किन रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद, शुक्रिया।
4: तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तनेजा साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरतों का 80% ऊर्जा जो है, तेल है, गैस है, वो आयात करता है। पूरी तरीके से हम 80% के लिए आयात पर निर्भर हैं, और पश्चिम एशिया जो है भारत के कच्चे तेल के आयात का एक प्रमुख स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। हालांकि हम अभी रूस से भी ले रहे हैं, बाकी दूसरे देशों से भी ले रहे हैं, लेकिन हाल के संकट को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतनी गंभीर चुनौती क्यों माना गया, जबकि हम काफी कुछ डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं।
5: देखिए, भारत में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेल की अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी तेल की अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो ईंधन का प्रयोग जो होता है, ऊर्जा का प्रयोग जो होता है, वो कहीं ना कहीं वो तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले से आती है। पूरी दुनिया की यही स्थिति है। हालांकि काफी जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी फोकस है, बहुत उसमें दुनिया में काम हो रहा है, भारत में तो बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है, भारत तो काफी हद तक उसका जो सौर ऊर्जा का जो क्रांति है उसका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हमारे देश में बड़ी आबादी है, तो हमको जितने भी तरह की ईंधन चाहिए, हमको चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा है जैसे तेल है, गैस है, कोयला, हमको वो भी भारी मात्रा में चाहिए, और दूसरी तरफ जो नवीन ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हमको वो भी चाहिए। अब चूंकि हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी काफी हद तक पारंपरिक ऊर्जा पे चलने वाली अर्थव्यवस्था है, उसमें भी खासतौर से तेल का, जैसे आपने जिक्र किया, हम लगभग अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करते हैं, 8%। हालांकि इसमें वो हिस्सा शामिल है जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं, उससे पेट्रोल डीजल वगैरह बना के उसका फिर निर्यात करते हैं, वो एक अच्छा जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, हमको उससे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है, और हम चूंकि रिफाइनिंग के एक सुपर पावर है तो वो भी हम करते हैं। जब हम 88% तेल आयात की बात करते हैं, उसमें वो हिस्सा शामिल होता है जो कच्चा तेल आयात होता है, और उसको हम उसमें कुछ हिस्सा उसका पेट्रोल डीजल बना करके, ATF बना करके, टर्बाइन फ्यूल बना के निर्यात कर देते हैं, और 56% जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, वो हम आयात करते हैं, LPG हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा के उपकरण वगैरह है वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, यूरेनियम भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हमारी आयात पर निर्भरता काफी है, और चूंकि हम एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लगभग 7% हमारा GDP ग्रोथ है औसतन, तो ऐसे में बिना ऊर्जा के वो नहीं होता, हमारी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हम ऊर्जा के जो है कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ भारी आयातक भी है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति के अंदर जो है जो

0: और पश्चिम एशिया के जो हालात बने, अभी तक पारंपरिक रूप से वहां से ज्यादा इसलिए तेल मंगाते रहते थे और गैस भी, क्योंकि हमारे बहुत नजदीक है, समुद्री जहाज से वहां से लाने में मात्र 5 से 7 दिन लगते हैं, तो जहाज का भाड़ा कम होता है, इंश्योरेंस की कीमत कम होती है और उन पश्चिम एशिया के तमाम देश है उनसे हमारे बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध भी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसलिए युद्ध जो ये हुआ और इसने, जैसे देखिए तेल के बारे में तो खासतौर से कहा जाता है कि वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है, तो तेल और गैस दोनों के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये युद्ध हुआ, लेकिन इससे ये उम्मीद किसी भी देश ने नहीं करी थी कि युद्ध जो इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, निर्यात होता है, उसको जो है वेपनाइज कर दिया जाएगा या उसको बंद कर दिया जाएगा। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना भारत ने ना किसी देश ने सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और उससे पूरी दुनिया में बेचैनी आई। चूंकि हम भारी आयातक हैं, हमारे लिए भी बहुत सारी परेशानियां पैदा हुई।
1: इन अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में न तो ईंधन की बहुत भारी कमी कहीं देखी गई और न ही खरीदारों के बीच इस तरह की कोई घबराहट भी देखी गई। इस स्थिरता को बनाए रखने में भारत सरकार के कौन कौन से कदम रहे और किन्हें आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप ये देखते हैं, हम दुनिया के, जैसे मैंने पहले कहा कि तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं, दूसरे सबसे बड़े हम आयातक हैं, रोजाना प्रतिदिन हम 58 लाख बैरल तेल जो है उसकी खपत करते हैं, आप अंदाज लगाइए 58 लाख बैरल, और उसमें से 52 लाख बैरल हमको आयात करना पड़ता है, और काफी बड़ी मात्रा में ये तेल उस इलाके से आता था जिसको हम पश्चिम एशिया या खाड़ी के देश बोलते हैं। और जब वहां युद्ध शुरू हुआ तो तमाम जो वो सप्लाई थी पूरी दुनिया के लिए 20% कम हो गई, लेकिन भारत के लिए तो कई मामलों में 50% से ज्यादा जो डिस्ट्रप्शन हो गया सप्लाई का। तो ऐसे हालात के अंदर जो अगर आप देखते हैं, तो जिस तरीके से हमारे भारत सरकार ने और भारत सरकार में जो भी हमारे नीति निर्माता हैं या सरकार को चलाने वाले हैं, और उसमें भी खासतौर से जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे दूतावास हैं, और इस साथ साथ जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तेल की, इंडियन ऑयल हो गई, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, इन सब लोगों ने जिस हिसाब से आपस में कोऑर्डिनेट होकर के एक टीम बनकर के जो क्राइसिस मैनेजमेंट किया, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। मैं एनर्जी सेक्टर पूरी दुनिया का देखता हूँ, लगभग हर देश पे को मैं ट्रैक करता हूँ, एक लंबे समय से करता हूँ, पर मुझे लगता है 2 महीने अगर आप देखते हैं, जो युद्ध शुरू हुआ था 2 महीने, तो भारत का जो उपभोक्ता है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और भारत का इंडस्ट्रियल उपभोक्ता उसमें शामिल है, जिस हिसाब से उसको शील्ड किया गया, बचा के रखा गया, लेकिन उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं, जिस हिसाब से हमने मैनेज किया कि एक तरफ तो जो खाड़ी के देशों से लगभग जो तेल गैस का आना ठप हो गया, हमने अन्य देशों में जाकर के लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना गए, ब्राजील गए, गुयाना गए, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, अंगोला, नाइजीरिया, इजिप्ट, ओमान, इन देशों से लाना शुरू किया, और उसमें हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारी उन लोगों की बड़ी बड़ी भूमिका थी, और हमारे मंत्रीगण खुद उन लोगों ने फोन उठा करके बातचीत करी, अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करी, कई जगह तो हमारे विदेश मंत्री स्वयं गए, जैसे यूनाइटेड एमिरेट्स, इसके अलावा कतर, तो उसमें हमारे और मंत्री लोग गए, तेल मंत्रालय से लोग गए, तो हमने और अमेरिका से जो क्योंकि भारी मात्रा में वहां से हमने इम्पोर्ट किया, तो रियल टाइम पे हमारे यहाँ पॉलिसी जो है उसमें कदम उठाए गए, रियल टाइम बेसिस पे बिना किसी ईगो के ये देखा गया कि कहां से भी तेल उपलब्ध है उसको लेके आओ। एक बात की भारत ने इसलिए पक्का करने के लिए कि आम उपभोक्ता को, खासतौर से गरीब उपभोक्ता को कोई दिक्कत ना हो कुकिंग गैस में या पेट्रोल में या डीजल में, भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश से दुनिया में जहां भी तेल मिलता है उसको खरीदो, यहां तक भी कह दिया गया था कि अगर महंगा मिलता है तो महंगा लो लेकिन उसको लेके आओ, तेल उपलब्ध कराओ। तो हमारी कंपनियों ने दुनिया भर में जाकर के कई दफे ऐसा भी हुआ तेल बड़े महंगे दाम पे मिला लेकिन उसके बावजूद आम उपभोक्ता को बर्डन पास ऑन नहीं करा गया, सरकार ने उन कंपनियों ने उसको एब्जॉर्ब किया और ये पक्का किया कि सारे देश के अंदर तेल उपलब्ध हो। हमारे पड़ोस के देशों में जिसमें पाकिस्तान जैसे देश शामिल है, वहां पर 2-2 दिन लोगों को लाइन में लगना पड़ा पेट्रोल लेने के लिए और कुकिंग गैस लेने के लिए, भारत में आम उपभोक्ता ने इस तरह की कोई तकलीफ नहीं देखी। थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ इलाकों में कुकिंग गैस एलपीजी को हुई थी, जिसमें भारत सरकार ने हमारे रिफाइनर्स को कहा कि जो तेल का और चीजों का उत्पादन आप कम करिए लेकिन एलपीजी का उत्पादन बढ़ाइए, उसका नतीजा हुआ धीरे धीरे जो जहां भी शॉर्टेजेस थी, कमी आई थी, उसको तुरंत उसकी भरपाई कर दी गई। दुनिया भर की सरकारों को मैंने देखा इन क्राइसिस के मोमेंट पे, और ये दुनिया का, वर्ल्ड का, इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक था, झटका था, 70 के दशक में भी इतना बड़ा झटका नहीं था, सबसे बड़ा। लेकिन भारत ने, जिस तरीके से भारत सरकार ने और भारत की कंपनियों ने और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने और हमारे डिप्लोमेट्स ने जिस तरीके से इस पर रियल टाइम बेसिस पर काम किया और आम उपभोक्ता, खासतौर से गरीब उपभोक्ता, देश की अर्थव्यवस्था, देश का रुपया डॉलर के अगेंस्ट, उस सब के लिए काम किया और उसको शील्ड किया, बहुत ही काबिले तारीफ है।
1: बिल्कुल। और तनेजा साहब, साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि संकट के दौरान

0: भारत के पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार जो है वो उपलब्ध था, और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और सरकार ने लोगों को सांत्वना दी थी, भरोसा दिलाया था, ये बफर स्टॉक का कितना महत्व है और कितना दिन का भारत के पास बफर स्टॉक होता है?
1: देखिए, हमने अपने देश में इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एसपीआरस, वो हमने जो आमतौर से जमीन के नीचे बनाए जाते हैं और उसमें तेल भर के रखा जाता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन स्थिति आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई परेशानी नहीं हो, तो हमने 25 दिन का तो वो बना रखा है। इसके अलावा 25 दिन का जो है हमारे जो जगह जगह जो टैंक फार्म्स हैं उनको बोलते हैं कॉमर्शियल रिजर्व्स, वो हमारे पास थे, तो 50 दिन का तेल हमारे पास रिजर्व में था और वो आज भी बरकरार है, और उसको जब जब हमने कंज्यूम किया उसको तुरंत भर दिया गया फिर बाद में। और अब इसके बाद जो अब युद्ध हुआ है उसके बाद अब तैयारी है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं इनको कम से कम 3 महीने का बना दिया जाए, और लेकिन अब जो रिजर्व बनाने की बात हो रही है उसमें खाली पेट्रोल डीजल की नहीं या खाली कच्चे तेल की नहीं, अब जो एलपीजी है उसकी भी बात हो रही है कि उसके भी रिजर्व, और एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है का प्रयोग सीएनजी की तरह से होता है, या घर में जो गैस आती है पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोलते हैं पीएनजी, उसकी तरह होता है पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, तो उस पर भी अब जो है काफी काम हो रहा है।
0: और आप बात कर रहे थे एसपीआरस की, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी सामरिक पेट्रोलियम भंडार, ये देश में कहां कहां पर हैं?
1: देखिए, अभी हमने 4 जगह बना रखे हैं और अभी ये है कि इसको उन्हीं को वहां भी एक्सपेंड किया जा रहा है, और अब 3 जगह और जो है उस पर काम चल रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें काफी भारी मात्रा में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि जो ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं थोड़ा सा पहाड़ी है और समंदर के नजदीक है, जिससे कि आसानी से समुद्री जहाज से वहां तेल लेके आया जा सके, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे एक तरीके से अंदर जो आप आम भाषा में बोलो तो जैसे गुफाएं बना दी जाती हैं, वो गुफाएं बना करके उनमें कच्चा तेल भर दिया जाता है, उसमें एक ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद उसमें भर दिया जाता है। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि जो तेल के कुएं हैं जहां से तेल आपने निकाला है वहां जो जगह खाली होती है, क्योंकि वहां से तेल तो निकल गया तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उसमें भी तेल को कच्चे तेल को भर के इस एक तरीके से स्टोरेज बना के रखा जा सकता है। अमेरिका ये काम बहुत ज्यादा करता है, भारत में भी इसके बारे में भी अब काफी काम हो रहा है, क्योंकि हम दुनिया के अंदर जो है आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल की कीमत होती है वो जो ड्राइव करती है वो डिमांड ड्राइव करती है, यानी मांग, और वो जो डिमांड में इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो भारत से आ रही है। भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर तेल के बाजार का बिल्कुल सितारा है, और भारत में जो जिस हिसाब से भारत में विकास हो रहा है, तेल की मांग बढ़ रही है, उस हिस्से पूरी दुनिया की जो तेल की अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर करती है, हमारे लिए एक अवसर भी है। इसीलिए आपने देखा कि कोई देश ये नहीं चाहता था, तेल निर्यातक देश कोई भी आज भारत से संबंध नहीं खराब करना चाहता, सब भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता भारत पे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि हम दुनिया की जो वर्ल्ड की जो ऑयल इकोनॉमी है आज उसको अगर डिमांड को कोई ड्राइव कर रहा है तो वो भारत है। पहले चीन होता था, उससे पहले अमेरिका होता था, लेकिन आज भारत है।
0: बिल्कुल। और आपने तनेजा साहब तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसीज की भी बात की, ये जब आपदा चल रही थी पश्चिम एशिया में संकट चल रहा था, इसमें ओएमसीज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और कैसे सभी चीजों को मैनेज किया?
1: हमारा बहुत बड़ा देश है और देश में कई इलाके, आपको शायद ही कोई इलाका होगा जहां पे आपको पेट्रोल और डीजल ना मिलता हो, यहां तक भी लोग कहते हैं कि कई दफे ऐसा हो सकता है आपको पानी ना मिले लेकिन वहां तेल आपको मिल जाएगा, इतनी बढ़िया काम हमारी कंपनियां ये करती हैं। और इन्हीं को मैंडेट है कि पूरी दुनिया में आप जाइए, चूंकि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, इनको मैंडेट है पूरे विश्व में जाइए, तेल खरीदिए, उसको जहां से लेकर के आइए, हमारी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करिए, और उसके बाद पूरा जितना विशाल देश है उसका वितरण हिसाब से करिए कि हर जगह पेट्रोल डीजल और एलपीजी उपलब्ध हो। ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन चुनौती इनके सामने आ रही थी युद्ध के दौरान कि कच्चा तेल महंगा मिल रहा था, कच्चा तेल के जो निर्यातक थे वो कुछ ऐसे देश जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, उनकी तरफ ज्यादा झुकाव उनका कभी कभी बीच में होता था, कभी कभी ज्यादा कीमत भी मान ली जाती थी, लेकिन उस सब कठिनाइयों को नेविगेट करते हुए हमारी कंपनियां वहां से लेकर के आई। और दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस भारी मात्रा में हम तेल आयात करते हैं या कंज्यूम करते हैं और उसको हैंडल करने के लिए इस कंपनी को चाहिए, इसीलिए सरकार शुरू में नहीं चाहती थी और ये कंपनियां भी शायद ना चाहती थी, लेकिन जब इनके तेल जो बाहर से ले रहे थे वो बहुत महंगा आ रहा था, खासतौर से अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, तब इन कंपनियों को लगा कि 2 महीने इन्होंने दाम नहीं बढ़ाया था लेकिन इनको जो है 7.5 रूपये प्रति लीटर 4 अलग अलग किस्तों में दाम बढ़ाना पड़ गया, और वो इसलिए बढ़ाना पड़ गया क्योंकि जो कच्चा तेल आ रहा था वो बहुत महंगा पड़ रहा था। और दूसरी तरफ सरकार भी ये समझती है, ये वो कंपनियां थी जिनके ऊपर मैंडेट है, जिम्मेदारी है, ये पूरी दुनिया से तेल, तो इनकी फिजिकल या फाइनेंशियल हेल्थ को बचा के रखना, तो फाइनेंशियल हेल्थ इनकी दुरुस्त रहे, पुख्ता रहे, जिससे ये अपना काम पूरी दुनिया तेल लाने का करते रहे।

0: समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटी फ्रेडिश पर हमारी नशियात जारी है। बज्म मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी इस प्रोग्राम में लीजिए। अब सुनिए पंडित दीनानाथ मिश्र का गाया राग सरस्वती में ख्याल।

0: बज्म मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे पंडित दीनानाथ मिश्र का गाया राग सरस्वती में ख्याल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12 बजे चाहते हैं अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से आलमी खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने खित्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत का इरादा किया। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियों को बेहतर सहूलत फराहम करने की खातिर गैर मुल्की अतियात के इंजेबाती कानून 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का आगाज किया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर उसकी इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया है। उसने अकवामे मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से सूरत हाल पर करीबी नजर रखने को कहा है। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेशकियां से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत के दौरान सदर पेजेशकियां ने मगरबी एशिया के हालिया वाकयात और आइंदा इकदाम के बारे में बताया। वजीर आजम ने मुफाहमत का इस्तकबाल किया और सभी मामलात का तस्फिया मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए किए जाने के भारत के मौकफ का इरादा किया। जनाब मोदी ने खित्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने और तिजारत और आजादाना आमदोरफ्त की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत का भी इरादा किया। भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। कल नई दिल्ली में इंसानी वसायल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकेकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेंट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तेसना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तेसना को जून की 30 तारीख तक मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आरजी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्को है कि इस रियायत से उन सनतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती है। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। कल वडोदरा में दरक्षा गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुदकफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया है। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कगीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर काम मिले नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए

हुए हैं और सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतालिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस सदारती हुक्म को कल अदम करार दे दिया है जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करना था। अदालत ने इस साल की तौसीख के अमेरिका में पैदा होने वाला वक्त तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आईन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सयाही मुकामात के डिजिटल वसीले से फरोग को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मुकामात की शान और शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासिर कुन अंदाज में पेश किया जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने कल नई दिल्ली में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ईओआईसी कार्ड का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये दोनों अकदाम शहरी खिदमत में बेहतरी लाएंगी और एफसीआरए पोर्टल के जरिए अतियात वसूल करने वालों को दरपेश दुश्वारियां का इजाला करेंगे। वजीर दाखिला ने मुतला किया कि ओसीआई निजाम में इब्तदाई दुश्वारियों को नए निजाम के जरिए हल कर लिया गया है और इस अकदाम से 50 लाख से ज्यादा कार्ड रखने वालों को बड़ी सहूलत हासिल होगी। अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पक्तिया, पाक्तिका और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों व बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की इलाकाई सालिमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है और अक़वामे मुत्तहिदा के आलामिये समेत बैन अल-अक़वामी कानून से इन्हराफ है। जुनूब मगरबी मानसून के आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान शुमाली बहीरे अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। IMD ने जुलाई के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मामूल से कम बारिश की भी पेशगोई की है। ताहम मुल्क के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी, मशरकी वस्ती और मशरकी जजीरा नुमा खित्ते के कुछ हिस्सों में मामूल और मामूल से ज्यादा बारिश होने की भी उम्मीद है। फीफा आलमी कप में मराकश और पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकश ने सनसनीखेज तौर पर मैच 1-1 से बराबरी के बाद नीदरलैंड्स को 2-3 गोल से हरा दिया। अमेरिका के बोस्टन में पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 3-4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरानकुन तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कल देर रात अमेरिका के हॉस्टन में जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेशकियां

0: टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने खित्ते में देर पा अमन को यकीनी बनाने की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत का इरादा किया। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत की पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियों को बेहतर सहूलत फराहम करने की खातिर गैर मुल्की अतियात के इंजेबाती कानून 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का आगाज किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: बीएम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिक मौसीकी में लीजिए अब सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान और हमनवाओं का शहनाई पर बजाया राग छाया नट।

0: अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तनवीर से खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियां से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने खित्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत का इरादा किया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियों को बेहतर सहूलत फराहम करने की खातिर गैर मुल्की अतियात के इंजिबाती कानून 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का आगाज किया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर उसकी इलाकाई सालिमियत की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया है। उसने अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से सूरत हाल पर करीबी नजर रखने को कहा है। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेश्किया से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत के दौरान सदर पेजेश्किया ने मगरबी एशिया के हालिया वाकयात और आइंदा अकदामात के बारे में बताया। वजीर आजम ने मफाहमत का इस्तकबाल किया और सभी मामलात का तस्फिया मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए किए जाने के भारत के मौकफ का इरादा किया। जनाब मोदी ने खित्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने और तिजारत और आजादाना आमदोरफ्त की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत का भी इरादा किया। भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकत दारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। कल नई दिल्ली में इंसानी वसायल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन इस्तेसाल के तौर तरीकों धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अजम की अक्कासी ई माइग्रेंट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तेसना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तेसना को जून की 30 तारीख तक मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आरजी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह अकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फेहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तमक्को है कि इस रियायत से उन सनअतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमोटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। कल वडोदरा में दरक्षा गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रूपये थी जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रूपये मालियत की हो गई है। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कगीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर काम मिले नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिलावर रुकावट निफाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए हैं और सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतालिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फार्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर

0: कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और इतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फेहरिस्त 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस सदारती हुक्म को कल अदम करार दे दिया है जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीख की है कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आईन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सियाहती मुकामात के डिजिटल वसीले से फरोग को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब गजेंद्र शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मुकामात की शान शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासिर कुन अंदाज में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखला जनाब अमित शाह ने कल नई दिल्ली में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ईओसीआई कार्ड का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये दोनों इकदाम शहरी खिदमात में बेहतरी लाएंगी और एफसीआरए पोर्टल के जरिए अतियात वसूल करने वालों को दरपेश दुश्वारियों का इजाला करेंगे। वजीर दाखला ने मुत्तला किया कि ओसीआई निजाम में इब्तदाई दुश्वारियों को नए निजाम के जरिए हल कर लिया गया है और इस इकदाम से 50 लाख से ज्यादा कार्ड रखने वालों को बड़ी सहूलत हासिल होगी। एफसीआरए 2.0 पोर्टल के तहत दरखास्तों तजदीदकारी का अमल सालाना रिटर्न और दीगर खिदमात को मुकम्मल तौर से डिजिटल निजाम के तहत कर दिया गया है। अकवामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पतकिया पख्तीटा और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों व बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की इलाकाई सालिमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं और अक्वामे मुत्तहिदा के आलामिये समेत बैन अल-अक़वामी कानून से इनहराफ है। जुनूब मगरबी मानसून के आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान शुमाली बहीरे अरब गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दमन व दीव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में मराकश और पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकश ने सनसनीखेज तौर पर मैच 1-1 से बराबरी के बाद नीदरलैंड्स को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अमेरिका के बोस्टन में पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 3 के मुकाबले 4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरानकुन तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेशकियां से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने खित्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने की खातिर मुसलसल कोशिशों की जरूरत का इरादा किया। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था और वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियों को बेहतर सहूलत फराहम करने की खातिर गैर मुल्की अतियात के इंजबाती कानून 2.0 पोर्टल का इफ्तिताह किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTF रेडियो पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का 1 बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इफ्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8 रूपये 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रूपये 50 पैसे से घटकर 7 रूपये 50 पैसे कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसका 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अभी भी एक प्रयोग है, जिसका प्रभाव अगले वर्ष तक स्पष्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों में एथेनॉल आवंटन के बारे में तेल विपणन कंपनियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संबंधी कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अटॉर्नी जनरल के बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नॉर्वे ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अगले दौर में जगह बना ली है। नॉर्वे के लिए एंटोनियो नूसा ने 39वीं और एरलिंग हालंद ने 86वीं मिनट में गोल किया और टीम को जीत दिलाई। इस तरह नॉर्वे राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में सफल रहा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi yesterday. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the PM stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The 29th National E-Governance Conference will be held in Jaipur from today. The two-day conference will take place at the Rajasthan International Center and is being jointly organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology, and the Government of Rajasthan. The theme of this year's conference is Viksit Bharat 2047, AI-enabled, data-driven and secure digital governance. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma will inaugurate the event. An exhibition will also be inaugurated, while several digital governance initiatives and innovations of the Rajasthan government will be launched. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with PM Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. Centre has revised the export levy rates on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight starting today. According to a notification issued by the Ministry of Finance, under the revised rates, the export levy on petrol has been fixed at 4 rupees per litre. The levy on diesel will now be 8 rupees and 50 paise, down from 14 rupees. The ministry stated that the special additional excise duty on exports of aviation turbine fuel will be reduced from 12 rupees and 50 paise to 7 rupees and 50 paise. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Vishakhapatnam. Union Minister for Development of the Northeast Region, Jyotiraditya Sindhya, has reviewed the evolving flood situation across the region following incessant rainfall. In a social media post, Mr. Sindhya said he took stock of the ground situation, including ongoing rescue, relief and restoration efforts, and assured every possible government support to safeguard lives and restore normalcy at the earliest. He also spoke to Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang, and Manipur Chief Minister Yamnam Khemchand Singh. In the FIFA World Cup, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. In another round of 32 matches, France will take on Sweden at 2:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का यह आर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुनहरे।

आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम गीत बहार, और अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म कोहिनूर के इस खूबसूरत गीत में। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की ही आवाज फिल्म कश्मीर की गली से, ये गीत सुनते हैं।

मोहन कल्याणपुरी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म रूप सुंदरी से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। पुराने हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध

करा दिए गए हैं। कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेशकेशन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेशकेशन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान के अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित की हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रूपये से घटकर 8 रूपये 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रूपये 50 पैसे से घटाकर 7 रूपये 50 पैसे कर दिया गया है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लोकधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी विजया मेहता ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई भाषा, नया नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। आयरलैंड से 2020 श्रृंखला 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम इस श्रृंखला में उतरेगी। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 से फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने कल वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहाड़।

0: सपनों से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपनों की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
2: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: हम इसी प्रोग्राम के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देशभर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह तैयार है और अभी चल रहे कार्य बिना किसी रिकॉर्ड के जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो

प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता का हिस्सा है और इससे भारत और थाईलैंड के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी मजबूत हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बारिश से इस क्षेत्र में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बचाव, राहत और पुनर्वास सहित जमीनी स्थिति का जायजा लिया और लोगों के जीवन की रक्षा तथा सामान्य स्थिति जल्द बहाल करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे ने अमरीका के टेक्सस में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 4 बजे हैं।

0: सैनिक का प्राधिकरण कार्यक्रम योजना अब सर्वबंध होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं पूर्ण कुन्नम रामचंद्रन। संगीत दिया है स्वाति त्रिंगाल ने। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है कुझल मनम के जी रामचंद्र कृष्णन ने। आपने प्रस्तुत किया है राग मध्यमति जो आदिताल में निबद्ध है। तो लीजिए सुनिए पूर्ण कुन्नम रामचंद्रन का गाया राग मध्यमति।

पर्यटन के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे पूर्ण कन्नम रामचंद्रन का गाया राग मध्यमती जो आदिताल में निबद्ध था।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक्त 1948 के आषाढ़ मास की दसवीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई 2026। सुबह की 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। तो कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन के बारे में। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनेगा कार्यक्रम स्वर रंगनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अशोक कुमार चौरसिया का शहनाई वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग रामकली। उसके 10 मिनट पर सुनेगा वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। 6:40 का समय रहेगा चिंतन का, जिसमें आज आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के विचार। 6:45 पर रामचरित मानस से पाठ प्रसारित किया जाएगा। आज होगा बालकांड का भाग 103।

अच्छा, उसके बचपन में प्रश्न एग्जाम संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार साहित किए जाएंगे। साथ दूसरे 10 मिनट पर संगीतिका की अंतर्गत आज आप सुनिएगा रीता स्वामी चौधरी का गाये भजन। 7:30 बजे गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार 45 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरंगंगा प्रसारित होगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगे शुभम कुमार। आप प्रस्तुत करेंगे राग नट भैरव। नमस्कार 15 मिनट पर सुनेगा साइंस मैगजीन। 9:30 बजे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनाया जाएगा। ये प्रस्तुत करेंगे इंद्रप्रीत कौर। 10:10 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपकी पसंद का समय रहेगा। उसके 10 मिनट पर सुनेगा सबरस। 11:30 बजे आप सुनेंगे हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसके अंतर्गत आज राजपाल सिंह के गायन सुनेगा। आप प्रस्तुत करेंगे राग बसंत मुखरी। 12:10 पर सुनेगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी सोनाली रक्षित। 11:10 पर सुनिएगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी सलामी। 2:30 बजे सुनिएगा एक ही कलाकार कार्यक्रम। आज प्रकाशित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: जपिया तपिया जला नाम जपिया वंड शकिया दे चलाई ते गवाही देठ के आन डेठ कीता ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जेकर सुतक मनिए सत सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके।